मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये नचीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं,

0: इसी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
2: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के 4th दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर

0: 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और ईश्वर का नया आशीर्वाद लेकर आती है। और जब इस सवेरे की शुरुआत प्रभु के सिमरन और शुरू के संगम से हो तो पूरा दिन ही सकारात्मकता से भर जाता है। तो आइए अपने चित्त को शांत करें, मन को एकाग्र करें और भक्ति की इस अविरल धारा में डुबकी लगाएं। श्रोताओं, संस्कृति और परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य या आराधना की शुरुआत विघ्नहर्ता बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के नमन से की जाती है। वे ही हमारे दुखों को हरने वाले और जीवन में रिद्धि सिद्धि लाने वाले हैं। तो आइए वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं प्रथम पूज्य गणपति बप्पा के चरणों में वंदना अर्पित करके।

गणपति बप्पा के पावन चरणों में नमन के बाद अब मन को ले चलते हैं गोकुल की गलियों और यमुना के पावन तट की ओर, जहां मुरलीधर की बंसी की धुन सुनते ही मन की सारी व्याकुलता मिट जाती है और चित्त में केवल प्रेम और भक्ति का संचार होता है। आइए सुनते हैं वचन अनुराधा पौड़।

है जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ता है। गुरु की महिमा और प्रभु का शुक्राना अदा करने के लिए शब्द की वाणी से बेहतर और क्या हो सकता है। आइए सुनते हैं ये शब्द पंकज उदास की आवाज में।

श्रोताओं, मालिक तो एक ही है, उस तक पहुंचने की राहें भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन मंजिल सिर्फ और सिर्फ उल्फत, अमन और रूहानी सुकून है।

वंदना कार्यक्रम के अंत में आइए एक बार फिर से भगवान गणेश की भक्ति में लीन होते हैं। जब पूरा वातावरण गणपति बप्पा की जय जयकार से गूंज उठता है तो मन श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। प्रस्तुत है ये भजन महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, उम्मीद है इन पावन भजनों और भक्तिमय सुरों ने आपके मन को असीम शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान की होगी। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आज का आपका दिन सुखमय, शांत और मंगलकारी रहे। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे

पढ़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बाण है। वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा, तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड। कलाकार थे रविंद्र साठे और संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: चिंतन करना मनुष्य की प्रकृति है। अपने जन्म के उपरांत सभी प्रकार के ज्ञान उत्पादन के साथ साथ ही मनुष्य चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मस्तिष्क की सुषुप्तावस्था, अचेतावस्था या समाधि की अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाओं में मनुष्य चिंतन करता है। यह चिंतन दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जब नकारात्मक चिंतन बहुत अधिक होने लगता है तो व्यक्ति के विचार, कल्पनाएं और भाव किसी संभावित चुनौतियों का सामना करने की योजना में लग जाते हैं। इसी को चिंता कहते हैं। चिंता की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ये चुनौतियां वास्तविक के बजाय काल्पनिक होने लगती हैं, जिसकी कोई सीमा

0: उत्पन्न नहीं होती और व्यक्ति लगातार भयग्रस्त रहने लगता है और कभी कभी वह अवसाद की स्थिति में चला जाता है। उसके लिए अनिश्चितताओं से भरे वातावरण का सामना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि पिताजी को कभी कैंसर हो गया तो क्या होगा। आजकल पैसे और स्वास्थ्य की चिंता सर्वाधिक महसूस की जाती है। ये चिंताएं अपने आप में एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे व्यक्तियों का चयन, कार्यशैली, नींद, खानपान, नित्य कर्म, स्वास्थ्य और व्यवहार प्रभावित होने लगते हैं। अनेक बार तो व्यक्ति को निरर्थक चिंतित रहने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि किसी समय कोई समस्या उपस्थित ना भी हो तो व्यक्ति आदतन यही सोचकर चिंतित हो जाता है कि फिलहाल कोई समस्या क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निकट भविष्य में एक साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। चिंतित रहने के इस अभ्यास पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। आज के परिवेश में ये संभव नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए, किंतु चिंता से भय मुक्त होना बहुत जरूरी है। यह अभ्यास के माध्यम से ही किया जा सकता है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान में इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है, किंतु अभी तक इसकी कोई एक सर्वमान्य परिष्कृत औषधि बनी हो ऐसा प्रकाश में नहीं आया है। कुछ समय के लिए चिंता मुक्त होने के लिए नींद की दवा ले लेना अथवा नशे का शिकार हो जाना कोई उपचार नहीं होता। अंततः चिंता को दूर करने के लिए अपने अभ्यास को ही ठीक करना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम उपचार निर्विवाद रूप से योग एवं प्राणायाम है। चिंता को हम सकारात्मक रूप में देखने और उसका उपयोग करने का प्रयास करें तो एक नियंत्रित मात्रा में चिंता व्यक्ति के लिए लाभकारी भी साबित होती है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का आत्मानुशासन अपनाया जा सकता है, जो चिंतित रहने की प्रवृत्ति पर विराम लगा सकता है। इसका एक उपाय यह है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में एक चिंतन समय का निर्धारण कर ले, जैसे प्रातः 6 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय में व्यक्ति खाली बैठकर केवल चिंतन ही करे और किसी अन्य कार्य में संलिप्त न हो। इस चिंतन समय के अलावा किसी अन्य समय में यदि कोई समस्या उपस्थित हो तो उस पर तत्काल विचार करने के बजाय उसे चिंतन समय तक टाल दें और चिंतन समय में ही उस पर विचार करें। इससे व्यक्ति को हमेशा चिंतित रहने के अभ्यास से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा किसी समस्या को लेकर यदि हम अपने आप से कुछ प्रश्न करें तो उससे भी निरर्थक चिंतित रहने के स्वभाव में सुधार हो सकता है। जैसे क्या समस्या ऐसी है जिसका वास्तव में सामना करना ही है अथवा ये एक कल्पना या शंका मात्र है। यदि ये एक कल्पना या शंका मात्र है तो क्या इसकी कोई पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है, और यदि पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है तो उस तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी अपने से कुछ प्रश्न करना भी चिंता मुक्त करने में मदद करता है। जैसे मन में आई दुश्चिंता किस आधार पर है, क्या एक खास स्थिति पर अधिक सकारात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है, जिसका डर है वही बात होने की संभावना कितनी है, यदि ऐसा होता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कोई विचार मुझे किस प्रकार सहायता और किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मेरे किसी मित्र के सामने ऐसी कोई समस्या उपस्थित हो तो मैं उसे क्या सुझाव दूंगा, आदि आदि। निष्कर्ष यह है कि चिंता को चिता मत बनने दीजिए, अपितु अपने आप को संवारने, सावधान रखने और दूरदृष्टि के लिए इसका उपयोग करें। दिनचर्या में योग, प्राणायाम व ध्यान को स्थान दें। जीवन को बोझ या समस्या न बनने दें, अपितु सार्थक बनाएं और आनंद से जिए।
1: अभी आपने सुना चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत गिरीश कुमार का काव्य पाठ।
2: वर्तमान आधुनिक समाज में टूटते रिश्तों को अभिव्यक्त करता एक गीत आपके सामने प्रस्तुत है।

श्रम से नाता टूट गया, श्रम से नाता टूट गया। और अब प्रस्तुत है पुरानी यादों को ताजी करती हुई एक कविता, जब जब आई याद तुम्हारी, गाए गीत मिलन के, हृदय से पीड़ा उपजी है सावन बने नयन के, सूख रही है सब फुलवारी, सूखा मंदिर का बागीचा, मेघा तो रिमझिम बरसे, बस नेह की बरखा ने ना सींचा। और याद तो होगा बाग का पीपल, गांव की सब गलियां गलियारे, अब वे तब के खेल कहाँ हैं, बदल गए सारे के सारे। और फागुन की वे मादक रातें, खेत बने वासंती दुल्हन, रात रात भर चांद निहारे, निंदिया की बैरी एक बिरहन। और गांव भी अब वे गांव कहाँ हैं, कहाँ हैं अब वो अल्लड़ मस्ती, टुकड़े टुकड़े होता आंगन, बेगानी सी लगती बस्ती। और टीवी की है रोगी लगती, चौपालों की रौनक मस्ती, खुद गर्जी बिकती है महंगी, प्यार मोहब्बत की दर सस्ती। और अंतिम बन देखेगा कविता का, कि सड़कों में तब्दील हो गई गांवों की निर्जन पगडंडी, सड़कों में तब्दील हो गई गांवों की निर्जन पगडंडी, रूखी सूखी गर्म हो गई मंद समीरन ठंडी ठंडी, रूखी सूखी गर्म हो गई मंद समीरन ठंडी ठंडी। और एक बरसात के मौसम में एक प्रेमी और प्रेमिका का संवाद की अभिव्यक्ति करता हुआ ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है, कि बात बात में बात बढ़ी, स्वप्न स्वप्न में रात, बात बात में बात बढ़ी, स्वप्न स्वप्न में रात, कणकण तपती जेठ दोपहरी, तब आती बरसात। और रिमझिम सावन घिरी घटाएं, भीगे तरु और पात, पल प्रत्येक विरह में बीता, काटे कटी न रात, पल प्रत्येक विरह में बीता, काटे कटी न रात। और रह रह पुरवा चित अकुलाए, धानी चुनरी रूठी जाए, छम छम पायल सुद बिसराए, मन पर बीती कही न जाए, छम छम पायल सुद बिसराए, मन पर बीती कही न जाए। और अगला बन देखेगा, खिल खिल बूटे नयन उठाएं, भंवरे मीठी धुन में गाएं,

सब रंग घोले, नीम की छैया झूले झूले, पल पल रूठे कुछ ना बोले, प्रेम प्रीत के रंग सब घोले। और अंतिम बंद देखिएगा गीत का कि जब जब दूर पपीहा बोले, बाग में रसिया झूला झूले, जब जब दूर पपीहा बोले, बाग में रसिया झूला झूले, पिया पिया सुन मनवा डोले, बैठे संग संग मिसरी भोले। जब जब दूर पपीहा बोले, बाग में रसिया झूला झूले, पिया पिया सुन मनवा डोले, बैठे संग संग मिश्री घोले। और एक गीत आपके सामने और प्रस्तुत है, ये भी बरसात के मौसम को ही अभिव्यक्त करता है। ये विरह का गीत है और जो सजनी है वो अपने सजना को याद करती है कि

चमके बिजुरिया कजरा रे बदरा शोरे करें। और अंतिम बंद देखिएगा, शिखरों

0: या कजरा रे बदरा शोरे करें।
1: अभी आपने सुना काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत गिरीश कुमार का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसका

0: कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है, बच्चे नाखून क्यों खाते हैं।
1: नाखून प्राणियों की पशुता के प्रतीक हैं। मानव नाखून काटकर अपनी पशुता पर अंकुश लगाता रहता है, जबकि पशु अपने नाखून नहीं काट पाते, इसलिए वे पशु के पशु ही बने रहते हैं। नाखूनों को बढ़ने न देकर उन्हें काटते रहना बुराई को हटाना है, यह अच्छा काम है। इसलिए विश्व की सभी सभ्य जातियां अपने नाखून काटती हैं। लेकिन अपने नाखून काटने की यह क्रिया यदि अनजाने और अनुचित ढंग से होने लगे तो फिर यह रोग की निशानी मानी जाती है। ऐसा प्राय होता है कि विशेषतः 5 से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे अपने नाखून अपने दांतों से काटते हैं। वैसे यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। बच्चों में दांतों से नाखून काटने की आदत के पीछे उनका चिंता और तनाव में रहना है। जो बच्चे माता पिता से अलग रहते हैं उनमें भी नाखून काटने की आदत प्राय पाई जाती है। टूटते परिवार, माता पिता की आपस में कलह, माँ बाप का बच्चों के प्रति कठोर व्यवहार, माँ बाप का शराबी होना आदि कारणों से बच्चे का संवेदनशील मन तनाव में आ जाता है और नाखून काटने की आदत का कारण बनता है। यह भी देखा गया है कि यह समस्या लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। हमारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, इनके कारण हमें किसी न किसी तनाव में रहते हैं। ये मानसिक तनाव कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा। हम समझदार लोग तमाम तरीकों से इन तनावों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं और इस कार्य में सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह वयस्क लोग अनेक कारणों से तनावग्रस्त होते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी होते हैं। वयस्क लोग तो कह सुनकर दवाओं, योग पद्धतियों या मन चिकित्सकों के पास जाकर उनकी सलाह से अपने तनाव पर काबू पा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे हैं। पहले तो वे अमूमन तनाव के कारणों को समझ ही नहीं पाते और यदि जान भी जाएं तो किसी से कुछ कहना सुनना या चिकित्सकों, योगियों आदि से परामर्श लेना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। लिहाजा अपने मन के तनावों की अभिव्यक्ति वे अपने दांतों से नाखून काट काट कर करते हैं। एक तरह से यह प्राकृतिक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अपने अंदर उठने वाले विद्रोहों पर वे दांतों से नाखून काट काट कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अनजाने में ही वे अपने अंदर उमड़ने घुमड़ने वाले विद्रोहों को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रायः देखा गया है कि अभिभावक बच्चों को नाखून काटने की आदत छुड़ाने के लिए उन्हें डांटते डपटते हैं, लेकिन डांटने डपटने से यह समस्या और बढ़ जाती है। क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विकार है और इसके कारण प्राय रोगी के अपने घर परिवार और परिवेश में ही होते हैं, इसलिए इस रोग की प्रमुख औषधि भी घर परिवार और परिवेश से ही मिल सकती है। सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों और कब से नाखून चबा रहा है। प्राय आप पाएंगे कि किसी खास समय पर घर परिवार में कुछ विशेष समस्याएं आई हैं, उनसे परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ है, बच्चे के अपने परिवेश और साथियों द्वारा भी उसमें तनाव के बीज बोए गए हैं। जब आप यह पता लगाकर रोग का असली कारण पता कर लें, फिर उसके उपचार की बात सोचनी चाहिए। बच्चे के तनाव के कारण को दूर करने के लिए उसे परिवार में ऐसा स्नेह भरा माहौल दीजिए जो उसके अंदर के अनजाने अज्ञात विद्रोह को शांत करने में सहायक हो। बच्चे को स्नेह भरा माहौल देना, उसके मन से भय और आशंका की भावना दूर करना, उसमें आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करना तथा अपने बड़ों के प्रति सम्मान तथा छोटों के प्रति स्नेह पैदा करने की निरंतर कोशिश करना, यह एक घरेलू मन चिकित्सा होगी।
0: बच्चे नाखून क्यों खाते हैं, इस विषय पर अभी आपने सुनी जानकारी। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये जानकारी, जिसका विषय है तिलहनी फसलों की देखभाल।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तिलहनी फसलों की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों, अगर हम अगस्त महीने की बात करते हैं या खरीफ के मौसम की बात करते हैं, तो

0: खरीफ के मौसम में सोयाबीन, मूंगफली और तिल जैसी खरीफ की फसलें हम लेते हैं, और जिन बहन भाइयों ने ये फसल ले रखी हैं तो इनमें फूल आने, दाना भरने या पैगिंग यानी कि फलिया बनने की अवस्था होती है। और इस समय हमें ध्यान ये रखना होता है कि खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी, साथ ही निकाई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण और कीट व रोगों से बचाव की मुख्य आवश्यकता होती है। तो ये ऐसी मुख्य बातें हैं कि जिसमें हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है, और जो हमारे तिलहनी फसलें हैं जैसे कि सोयाबीन है, मूंगफली है या तिल है, तो इनकी हमें अच्छे तरीके से देखभाल करनी है और इन तिलहनी फसलों से हमें बढ़िया उत्पादन लेना है। तो आइए बात करते हैं किसान भाइयों की, हमें किस तरीके से इन तिलहनी फसलों की देखभाल करनी है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि बरसात का मौसम है, और अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है यानी कि हमारे खेत में ज़्यादा पानी हो जाता है, तो भारी बारिश होने पर खेतों में अतिरिक्त पानी नहीं रुकने दें, क्योंकि जल भराव से जड़ें सड़ सकती हैं। तो इसलिए अतिरिक्त पानी की निकासी करना बहुत ही आवश्यक है, अपने खेत से फालतू पानी को निकालना बहुत ही आवश्यक है। और कई बार हम देखते हैं कि बरसात के बीच में गैप आ जाता है, यानी कि भैया काफ़ी समय तक बारिश नहीं होती है और सूखे जैसा मौसम हो जाता है। तो अगर ऐसा मौसम हो रहा है या बीच में ऐसा गैप आ जाता है यानी कि कई दिन तक बारिश नहीं होती है और हमारी फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अगस्त में अगर बारिश ना हो और सूखा जैसा हो, तो फूल और दाना बनते समय हमें यह ध्यान रखना है कि खेत में हल्की नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हमारे खेत में हमें ऐसा लगता है कि नमी हल्की है, तो हम हल्की सिंचाई भी खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ये जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है या तिल है, इनसे बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हमें खेत को साफ और स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है, और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निकाई गुड़ाई करके जो खरपतवार है या घास फूस है उसको हम निकाल सकते हैं और अपने खेत में हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये हमें काम करने हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हमारी फसल में कुछ कीट और बीमारियां भी लगती हैं, तो अपनी तिलहनी फसल को कीट और बीमारियों से बचाना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं कि जो हमारी तिलहनी फसल है उनमें इस समय कौन कौन से कीट बीमारी लग सकती हैं। तो सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस समय पीला मोजेक रोग लगता है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से उड़द में पीला मोजेक रोग लगता है, उसी तरीके से सोयाबीन में भी लगता है, और ये भी सफ़ेद तितली के माध्यम से ही लगता है। और हम देखते हैं कि जो सफ़ेद तितली होती है वो क्या काम करती है कि पत्तियों से वो रस चूस लेती है और हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इस तितली के प्रकोप यानी कि इल्ली के प्रकोप पर हमें नज़र रखनी है, और अगर हमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, खेत में हमें तितली दिखाई देती है, तो हम इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास या अन्य रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कीटनाशक का इस्तेमाल करके हम अपनी सोयाबीन की फसल से पीला मोजेक रोग जो बीमारी है, इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, मूंगफली की अगर हम बात करें तो इस समय पौधों के आसपास हल्की मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि हल्की मिट्टी चढ़ना बहुत ही आवश्यक है ताकि पैगिंग यानी कि फली का विकास अच्छा हो सके और जो हमारी फलियां हैं वो अच्छी बन सकें, तो मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जैसे ही हमें लगता है कि बारिश नहीं होती है और हमारी मिट्टी में नमी हल्की कम हो जाती है यानी कि पानी भराव की स्थिति कम हो जाती है, तो ऐसे में हम आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही जो है थोड़ा मुश्किल होता है, परेशानी भी होती है, तो मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम खेत में आराम से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो मिट्टी हम जो है जैसे ही समय मिलता है तो किसान भाई हमारे मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, और अगस्त के महीने में यानी कि बरसात के मौसम में अगर हम सोयाबीन, मूंगफली और तिल जैसी फसल से बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर भारी बारिश हमारे आसपास हो जाती है या खेत में हो जाती है, तो जो अतिरिक्त तो पानी है किसान भाइयों, उसके निकालने की व्यवस्था हमें करनी है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: तिलहनी फसलों की देखभाल, इस विषय में अभी आपने सुनी जानकारी। कार्यक्रम था खेती की बातें, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

दिल्ली केंद्र से। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे कानून की बात और सुबह 9:15 पर होगा जिले की हलचल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंदौली और ललितपुर जिले की हलचल। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीत संगीत और मनोरंजन से भरपूर और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे अब से कुछ देर बाद 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनेंगे सुबह 9:25 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रागनी, कलाकार होंगे राजकुमार और साथी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त रहेगा पूर्वाहन 11:30 पर। उस्ताद आजाद अली खान का सरोद वादन प्रसारित होगा 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में। घर संसार कार्यक्रम में अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे क्रम महारा घर आंगन भोर से सांझ तक के अंतर्गत अविता रानी से अंजना की बातचीत। दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे उमा जोशी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में शाम 5:00 आपको दी जाएगी जानकारी हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में।

कृषि जगत कार्यक्रम रहेगा शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वेश कुमार, संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से नरेश पाल सिंह की बातचीत, जिसका विषय होगा सर्दियों में फूलों की बुआई। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर जेरिन के थॉमस की वार्ता का विषय होगा मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 60 वर्ष से

0: अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें एक निर्णय 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। जल्दी ही इनके लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 88,000 से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इस निःशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा।
1: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित है, अब तो 8 लेन। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH-34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
0: मंत्रिपरिषद ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके अंतर्गत देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता पिता अपनी संपत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले MBBS के छात्रों का स्टाइपेंड 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 4,000 इंटर्न चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता को सराहनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। UPI से लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

0: मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अगले 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
1: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजे, हम भी अपने यहाँ। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों, 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
1: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: बूथ लेवल ऑफिसर भारत के लोकतंत्र की आधारशिला, हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए भी।
0: प्रदेश भर में आज ईद ए मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। ये हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बौछारे पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।
3: सूरज के साथ साथ।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आप सभी का स्वागत है। बरसात का यह मौसम चारों तरफ अपने साथ गजब के रंग समेटे हुए है। पेड़ों के खूबसूरत हरियाली, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष, ये मौसम हमें सिखाता है कि कुदरत के तमाम रंगों को देखना कितना सुकून देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इन खूबसूरत बारिश और प्रकृति के इन रंगों को देखने से महरूम हो। बारिश जैसे बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर देती है, ठीक वैसे ही हमारे कुछ फैसले किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी और सतरंगी रंग भर सकते हैं। और इन्हीं फैसलों में से एक संकल्प है नेत्रदान का। हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी की दुनिया को जगमगा सकती हैं, किसी को ये खूबसूरत कायनात देखने का मौका दे सकती हैं। श्रोताओं, इन दिनों चल रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य मकसद लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और समाज में फैले भ्रम को दूर करना है, ताकि कॉर्नियल दृष्टिहीनता से जूझ रहे लोगों की जिंदगी में फिर से उजाला लाया जा सके। सामान्य नेत्रदान में कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान कर सकता है। इस प्रक्रिया में मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर डॉक्टर आंख के एक हिस्से को निकालते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया अगर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। कॉर्निया को आंख की पुतली भी कहा जा सकता है, जिसे रोशनी अंदर जाती है और हम देख पाते हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भारत सरकार ने 1986 में शुरू किया था। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। नेत्रदान करने के लिए आप किसी भी प्रतिष्ठित आई बैंक जैसे एम्स या फिर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन संकल्प पर पत्र भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको एक डोनर कार्ड मिलता है। ये फॉर्म भरने के बाद अपने परिजनों को जरूर बताएं कि आपने नेत्रदान करने का फैसला लिया है और डोनर कार्ड प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद नेत्रदान की अनुमति और प्रक्रिया उन्हीं को पूरी करानी होती है। मृत्यु के बाद परिवार वाले किसी के पास के किसी पंजीकृत आई बैंक या हेल्पलाइन नंबर 1919 पर कॉल करके नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। जी हाँ, हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा, 1919। सामान्य हम अपनी आंखों के जरिए इस दुनिया में फिर से जिंदा रह सकते हैं। हमारे जाने के बाद हमारी आंखों से कोई इस खूबसूरत नीले आसमान को देखेगा, बारिश की बूंदों को महसूस करेगा और कुदरत के इन रंगों में अपनी जिंदगी को समेटेगा। नेत्रदान महादान होने के साथ साथ किसी को जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने की एक छोटी सी कोशिश है। तो आज ही अपने परिवार से बात करिए और इस रोशनी के सफर का हिस्सा बनिए।

समयन जैसे सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है, ठीक वैसे ही दुनिया में कुछ ऐसी निस्वार्थ आत्माएं हैं जिनकी एक झलक से हमारी सारी थकान छुमंतर हो जाती है। बात चाहे वफादारी की हो या बिना शर्त प्यार की, इनके आगे हर लफ्ज छोटा पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं उस चार पैरों वाले वफादार दोस्त की जो हमारे घर में रहते हुए घर की धड़कन बन जाता है। हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय श्वान दिवस मनाया जाता है। श्वान यानी कुत्ता। इस दिन की शुरुआत साल 2004 में पशु चिकित्सा अधिकार कार्यकर्ता कोलिन पेज ने की थी। इस दिन महज 10 साल की उम्र में कोलिन पेज ने अपने परिवार के पहले कुत्ते शीलते को

0: गोद लिया था, इसलिए ये दिन 26 अगस्त को मनाया जाता है। कुत्ते हमारे घर की रखवाली ही नहीं करते बल्कि पुलिस, मिलिट्री, सर्च और रेस्क्यू टीमों में अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता से लाखों लोगों की जान बचाते हैं। मेडिकल साइंस भी मानती है कि कुत्ते पालने से हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और हम खुश रहते हैं। इस दिन का मकसद लोगों को स्ट्रीट डॉग्स या जो कुत्ते हमारे आसपास घूमते हैं उनको गोद लेने और जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के प्रति जागरूक करना है। इंटरनेशनल डॉग डे के इस खास मौके पर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं, नियत और देखभाल से जताया जाता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आज महिला समानता दिवस है। यह दिन हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में अमेरिका से हुई जब अमेरिकी संविधान ने 19वें संशोधन के जरिए महिलाओं को पहली बार मतदान करने का कानूनी अधिकार दिया था। 1973 में इस दिन को आधिकारिक तौर से मनाने की घोषणा हुई। लेकिन आज ये दिन सिर्फ एक देश या एक वोट देने का अधिकार तक सीमित नहीं है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के समान अधिकारों, उनकी आज़ादी और समाज में उनकी बराबरी की भागीदारी का प्रतीक बन चुका है। इस दिन दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिस और मीडिया में कई तरह की प्रतियोगिताएं, सेमिनार्स, वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और वेतन में बराबर का हक दिलाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं और जागरूकता फैलाई जाती है। समानता का मतलब केवल अधिकार देना नहीं होता बल्कि उस सोच को बदलना है जो किसी के सपने को लिंग के तराजू में तौलती है। आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की बेटियां भी आसमान छू रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, सीमा पर सुरक्षा का मोर्चा हो, इसरो का अंतरिक्ष मिशन हो या गांव की चौपाल हो, हर जगह महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन असली समानता तब आएगी जब हर घर में बेटी की उड़ान को वही पंख मिलेंगे जो बेटों को मिलते हैं, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तभी हमारा देश समृद्ध होगा। सभी को महिला समानता दिवस की हार्दिक बधाई।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए, रुख करते हैं तिथि विशेष क्रम की ओर। देखते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों मायने रखता है। 26 अगस्त 1843 को अमेरिका के चार्ल्स थर्वर ने दिव्यांगों के लिए पहला टाइपराइटर बनाया था। इस मशीन का आविष्कार हाथ से ठीक से ना लिख पाने वाले व्यक्तियों की मदद के लिए किया गया था। आज के दिन 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इनका नाम अग्नेस बोंझा बोयाजिजुल है। मदर टेरेसा गरीब और बीमार लोगों के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा और करुणा के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 26 अगस्त

को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में आज के दिन ब्रिटेन के अस्पताल में 62 वर्षीय आर्थर कार्नहिल को दुनिया का पहला बैटरी चालित लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाया गया। 4 घंटे के इस ऑपरेशन में 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व टेरेंस इंग्लिश और जॉन वालवर्क ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स के पास के जल विद्युत संयंत्र से पहली बार 26 अगस्त 1995 को बिजली का उत्पादन किया गया। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का जन्म 1927 में आज ही के दिन पुणे में हुआ था। 2018 में आप वास्तुकला का नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। 2022 में आपको रॉयल गोल्ड मेडल मिला। और अब कार्यक्रम में वक्त है समाचार पत्रों की सुर्खियों का। हिंदुस्तान समाचार पत्र की यह सुर्खी है मुख्य पृष्ठ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मिला युवाओं और महिलाओं को तोहफा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में आजीवन मुफ्त सफर कर सकेंगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को निःशुल्क 25 लाख टैबलेट दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राज्य मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों से MBBS और BDS परीक्षा उत्तीर्ण कर रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को अब हर महीने ₹25,000 इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। दैनिक जागरण से ये खबर है, कल मंगलवार को आखिरी घंटे में खरीदारी और कच्चे तेल की नरमी से बढ़े घरेलू शेयर बाजार। 268 अंक बढ़कर 77,656 के स्तर पर बंद हुआ BSE सेंसेक्स। निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ। दैनिक जागरण के खेल पृष्ठ से यह खबर है, GCT ग्रैंड फिनाले में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर 19-9 की शानदार जीत हासिल करके आसानी से ग्रैंड शतरंज टूर के अंतिम चरण में फाइनल में जगह बनाई। बिजनौर शहर होते हुए हरिद्वार तक विस्तारित होगा गंगा एक्सप्रेसवे। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। ये खबर थी अमर उजाला से।

श्रोताओं, बाहर बादलों ने डेरा जमा लिया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस खुशनुमा मौसम के साथ हमारा सूरज के साथ साथ का ये सफ़र आज यही मुकम्मल होता है। अब अपने चाय के कप को संभालिए और मुझे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में

0: जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा

0: कोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों

0: वासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 crore रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 year डेडलाइन फॉर 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Miladun Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today, Keralites across the globe celebrating Tiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand

0: दुनिया भर में केरला से ताल्लुक रखने वाले लोग थिरु ओनम यानी ओनम के सबसे मुकद्दस दिन को भी मना रहे हैं। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों की मंसूबाबंदी के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कानात तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही इस तरह के मरबूत तरीकों का जायजा लिया जाए और इसके लिए तकनीकी और इक्तसादी इम्कानात को मलहूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील में तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम ने वजारतों रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने रेलवे सड़क और बिजली के शोबों से मुतालिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीटिंग में राबते के निजाम को मजबूत बनाने, सनअती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने और सरकारी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में खासतौर पर मुकर्रर वक्त की पाबंदी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल, जेर इल्तवा मसाइल के हल और प्रोजेक्टों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान वजारतों और रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं और उन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील, फ़आल होने और उसके फवायद की फराहमी में ताखीर का सबब बन सकते हैं। जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फ़आल और पेशगी इकदामात पर मबनी काम के कल्चर को फ़रोग देने पर भी जोर दिया ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल ज़रई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने ज़रई आदादोशुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मस्नूई जहानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर दाखिला मिशाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मुनशियात, नक्सलिज्म और शिमाल मशरकी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक इनके संगीन नतायज नहीं भुगतने पड़ते। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने दाखिली सलामती के चैलेंज वाले इन तीनों महाज पर मौजूद संगीन मसाइल पर काबू पा लिया है और इस कामयाबी का पूरा सहरा रियासती पुलिस फोर्सेज, मरकजी एजेंसियों और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज को जाता है। उन्होंने कहा कि NSSC फोरम को चाहिए कि वो आइंदा 15 से 20 साल के रुझानात का तजिया करे, मुमकिन तौर पर सामने आने वाले मसाइल की निशानदेही करे और पहले ही निमटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करे। जनाब शाह ने मजीद कहा कि 3 नए फौजदारी कवानीन अगले 1 साल के अंदर 100% नाफिज कर दिए जाएंगे। इन कवानीन का मकसद फौजदारी मुकदमात को 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सतह तक निपटाने और सजा की शरह में 25% इजाफा करना है। दिल्ली हुकूमत आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे सपुर्द करेगी। इस स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर माह 2,500 रुपए माली मदद फराहम की जाएगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दिल्ली हुकूमत ने बताया कि अब तक 9,13,000 से ज्यादा खवातीन इस स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जबकि 6,52,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा की जा चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक माली इमदाद अगले महीने की 1 तारीख से खातून मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। दिल्ली के 2026-27 के बजट में इस स्कीम के लिए 5,110 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माली तहफ़ फ़राहम करना,

बंटवारा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़, सुदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। शब्द रचना थी हसन कमल की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचीबापात केंद्र से।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: चंदन का एहसास।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है फिल्म राजकुमार सी। आवाज है लता मंगेशकर की, बोल है शैलेंद्र की और संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आपने सुना दादा फिल्म का गीत। महेंद्र दहलवी की शब्द रचना थी और संगीत था उषा खन्ना का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है पति पत्नी और तवायफ फिल्म से। आवाज़ें हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से ज़िले की हलचल सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए चंदौली और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
2: गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नियंताबाद विकास खंड के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुंडा खुर्द, सुल्तानीपुर, सहजौर और कैली सहित तटीय इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदियों से हो रहे कटान पर चिंता जताई। इस पर जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता बंदी से टेलीफोन पर वार्ता कर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी PDDU नगर को एक विशेष जांच कमेटी गठित कर कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण कराने और रोकथाम की ठोस योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां दुरुस्त कर लें, प्रभावित लोगों के लिए भोजन पेयजल

0: और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित करें। इसके अलावा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा उनके चारे पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी PDDU नगर खंड विकास अधिकारी नियंताबाद समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ की तैयारी को लेकर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी कि
1: नदी के जलस्तर को हम लोग सतत उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पर डे 2 टाइम हमारी रिपोर्ट आती है और लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं कि जलस्तर का किस लेवल तक पहुंचा है। पूरी तरह सचेत है और हमारी तैयारी पूरी है। जितने भी हमारे टेंडर्स होने चाहिए थे वो सब हमने कर लिए हैं। जो भी बाढ़ के दृष्टिगत जन सामान्य को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है उन सभी की टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
0: चंदौली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। राष्ट्रीय गान के उपरांत सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। जनपद में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास हर तरफ देखने को मिला। स्कूली छात्रों व युवाओं की टोली के देशभक्ति नारे से पूरा जनपद गुंजायमान रहा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायालय में जिला जज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में DRM के साथ ही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों एवं शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी दी गई। जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मारुपुर के नदेसर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमर शहीद चंदन राय के घर पर 70 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सूबे के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामना देते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के उद्बोधन का जिक्र करते हुए युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जुड़ जाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा यात्रा का शुभारम्भ कर यात्रा में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में जोश भर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने जनपद के अमर शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विश्व पटल पर मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। विगत दिनों राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने चंदौली के चहनिया विकास खंड में स्थित महालक्ष्मी महरौली देवी धाम के सुंदरीकरण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 192.58 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना में मंदिर परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल व्यवस्था, साइनेज, यात्री बेंच, लैंडस्केपिंग, सोलर सिस्टम, बोरिंग के साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि
2: ये जो 1,92.58 लाख रुपए धन आवंटित हुआ है यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, वो उसमें बहुउद्देशीय हॉल से लेकर सोलर सिस्टम, बेंच की व्यवस्था, सुंदरीकरण और सुलभ प्रसाधन और अन्य कई चीजें इसमें शामिल है। मुझे उम्मीद है कि इस काम को होने के बाद न सिर्फ यहाँ इस गांव वासियों को, न सिर्फ चंदौली के लोगों को, बल्कि जो आसपास के जिले के लोग आते हैं उनको बड़ा ही यहाँ सुविधा मिलेगी, बड़ा ही लाभ मिलेगा।
3: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का।
4: सावन माह में ललितपुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। जिले के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पाली के नीलकंठेश्वर भगवान मंदिर, तालबेहट के हजारिया देव मंदिर, चंडी माता मंदिर और तुमन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। ललितपुर में चाइल्ड हेल्प लाइन की तत्परता से 1.5 साल की बच्ची को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया गया। बच्ची 18 अगस्त को पनारी रोड के पास मिली थी। सूचना पर चाइल्ड हेल्प लाइन PRV पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात बच्ची को परिजनों की तलाश पूरी हुई और उसे सुरक्षित परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया। जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में शहरिया और गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी योजना योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक धरातल पर पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर पात्र बच्चों और गर्भ

0: महिलाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मेहरौनी क्षेत्र में खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बुकिंग कराने वाले किसानों के लिए ई लॉटरी 21 अगस्त को होगी। जिला स्तरीय ई लॉटरी दोपहर 12 बजे विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लिए ई लॉटरी के जरिए लाभार्थी किसानों का चयन होगा। बारिश के बीच शहर में जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन आजादपुरा, तालाबपुरा और लक्ष्मीपुरा समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। नालों पर अतिक्रमण और उनमें गोबर, पॉलीथिन व घरेलू कचरा डाले जाने से जल निकासी बाधित मिली। संबंधित लोगों से अभिलेख मांगे गए। प्रशासन का उद्देश्य जल भराव की समस्या कम करना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। जिलाधिकारी की जानकारी दी।
1: काफी सारे सड़कें मरम्मत हो गई है और इसको युद्ध स्तर पे पूरी सूची बनवा ली गई है कि सड़कें कहाँ कहाँ पे पाइपलाइन बिछने के बाद अभी मेंटेनेंस बाकी है, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। जो बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से जल्दी काम पूरा करा।
0: शिक्षा विभाग को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स और जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से 100% संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मद्देनजर स्कूलों के संपर्क मार्ग, परिसर साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। साथ ही 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं रहने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आपदा के समय प्राथमिक सहायता, आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया। अधिकारियों ने नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल कराने पर जोर दिया। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सैमसंग और वीवो कंपनी के 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करता था और उन्हें बेचने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की जन सुनवाई जारी है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही फॉलो और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ललितपुर में सावन की भक्ति के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हैं। बच्चों की सुरक्षा, पोषण और शिक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक प्रशासन सक्रिय है। वहीं बारिश के दौरान जल भराव की समस्या के समाधान, किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ दिलाने और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई जारी है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आपने सुनी जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी। कलाकार हैं राजकुमार और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है, मैं आप सुन रहे हैं। आज रागिनी कलाकार हैं राजकुमार और साथी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है मैं आज आपने सुनी रागनी, कलाकार थे राजकुमार और साथी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त हुमा परवीन।
0: जी हाँ श्रोताओं, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत, तो उठाइए अपना मोबाइल और लिख भेजिए अपनी फरमाइश हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9457078288 9457078288। तो हुमा जी, किन का मैसेज हमारे पास आया है आज सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल करने के लिए?
1: विवेक, ये मैसेज हमें मिला है नांगलोई दिल्ली से। लिखने वाले हैं मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
1: गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से मैसेज लिख भेजा है एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलाम गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान ने।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जग प्रताप सिंह।
1: ये मैसेज हमें मिला है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। फरमाइश करता है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।
0: इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करता है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर,

0: लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश लिख भेजी है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
0: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर।
1: पाकुड़ झारखंड से मैसेज भेजने वाले हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मैसेज भेजा है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने।
0: आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपकी पसंद कर रहे हैं आपकी नजर।

जब किसी से प्यार।

0: कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है कसम तेरी कसम। अहमद फराज की शब्द रचना को संगीत दिया है ललित सेन ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी।
1: खमहरिया छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजी है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने।
0: फुलोंग निजामाबाद से हैं एम ए वाहिद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
1: पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से फरमाइश करता है मोहम्मद ताहिर और इंद्रिश हिलाल जैन प्लांट देहरादून से।
0: सब्जी मंडी झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया।
1: रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मैसेज लिख भेजा है मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भवन, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और बेगम शबनम अनवार ने।
0: इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की।
1: ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से मैसेज लिख भेजा है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, रघुवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेनू, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गुहार और सुनील पाठक ने।
0: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
1: छटिया पोखर डूमराव से मैसेज लिखने वाले हैं फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, अस्मा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार। बिहार भवन दिल्ली से मैसेज भेजा है सुरित रमेश कुटरिया ने।

0: ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से फरमाइश करता है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह।
1: छत्तीसगढ़ महासमुंद से अली आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, याकूब आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम और चांदनी चौक बिहार से मैसेज भेजने वाले हैं सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू अली जाटव, सोनम अली जाटव।
0: गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से मैसेज भेजने वाले हैं सोपान ताइडे, मोहल कारांगले, जिंगाव विदर्भ से मैसेज भेजा है वसंतराव भोजने, पी एस नावकर्णे।
0: ग्राम नगला उबन नजीबाबाद से हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर, देवा, ओम प्रकाश, छोटी, घनश्याम, शीतल और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है बेगम नाजमा शेख, बेगम रुमा शेख, मोहम्मद आसिफ शेख, बेबी माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम ने।
0: आइए सुनते हैं ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो उठाइए अपना मोबाइल और लिख भेजिए हमें अपनी फरमाइश। हमारा नंबर है 9457-08282849457078888। मैं हूं विवेक प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त हुमा। अब देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। ये मैसेज हमें मिला है संगीता टाकीज शाहगंज आगरा से। फरमाइश करता है, महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमेरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन का।
0: न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित पूर्वी, अनीता, और इसी गीत को सुनना चाहा है मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्तारानी, नंदनी और अंजलि ने।
1: शाही मार्केट सियोहारा जिला बिजनौर से फरमाइश भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अराफात, अदीब और कादिर चौधरी।
0: दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
1: ग्राम मीरापुरम, मीरापुर बेगा पोस्ट, मंडावली तहसील, नजीबा जिला बिजनौर से फरमाइश भेजने वाले हैं कासिम पेंटर, मोहम्मद ओवेस, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद हादी और डॉक्टर बीजे।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिवार।
1: करणवीर हाउस से मैसेज भेजने वाले हैं भूचो कैंचिया, भटिंडा पंजाब से।
0: करणवीर हाउस, माफ कीजिएगा, करणवीर हाउस भुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से फरमाइश की है इस गीत को सुनने के लिए। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिंपू, एकम, दमन और अभिजीत।

0: ने। ग्राम जुरेला थाना शिवाला कला बिजनौर से मैसेज भेजने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निषाद आयशा, शायना महवेश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर ने।
1: सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से हैं प्रकाश बोरेगांवकर, सुषमा बोरेगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद विराज, अंशुमन और ओवी।
0: आकोट से मैसेज भेजने वाले हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और के सजीव डाबेराव।
1: इस गीत को सुनना चाहा है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान और इल्मा खान ने। आइए सुनते हैं ये गीत आशा भोंसले की आवाज में मेरा साया फिल्म से। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये तुम्हारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो लिख भेजिए अपनी फरमाइश। हमारा नंबर है 9457078289457078288। तो हुमा जी, किन का मैसेज हमारे पास इस गाने को सुनने के लिए आया है?
2: ये मैसेज हमें मिला है जेवरा हिसार से। लिखने वाले हैं वृंद भ्या,
1: इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वान्या सिंगरोल ने। जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज। आप हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।
2: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से मैसेज भेजने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार।
1: इसे गीत को सुनना चाहा है गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर ने। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, साईसा सोनवने। और आप हैं गणेश अविकार्ड श्रीरामपुर से, डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार और अर्चना कुमार। ग्राम गधारोना जिला हरिद्वार से हैं मदन गिरी, विमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधुगिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी और रमन गिरी। इनके साथ हैं इनके परिवार के सभी सदस्य।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आप गीत तुम्हारे। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत तो लिख भेजिए हमें 9457078288 पर, व्हाट्सएप पर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म संगम से लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है और संगीत है शंकर जयकिशन का। फरमाइश है आप सभी की।
1: फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से फरमाइश लिख भेजी है। योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया ने।
0: प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पेठर से है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष यादव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव।
1: ये मैसेज हमें मिला है।

0: गांव जाखोद राजस्थान से लिखने वाले हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
1: जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
0: सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका। पुनावले पुणे से मैसेज लिख भेजा है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने ने।
1: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगांवा से हैं हाजी इशाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी।
0: अहमदपुर खैंगाव खंडवा से मैसेज भेजने वाले हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है गांव कैरो, जिला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद और गुरशबद का।
0: धनोरी तेलीवाला से मैसेज लिख भेजा है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने।
1: मारहरा दरवाजा ईटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश करता है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना।
1: आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का।

0: बुढ़ा मिल गया, हाय मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा।
1: गांव मुकाम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से हैं सुधाकर राजे यादव देशमुख, प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख और संचित देशमुख, प्रथमेश शरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख।
2: गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती। चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर और सुमन। ये मैसेज है हमारे पास रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का।
2: जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज भेजने वाले हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसन अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निबान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा का। गुनौर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली।
2: सब्जी मंडी बुलडाना से हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
1: चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा।
2: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल।
1: आप हैं जिला बदायूं ग्राम गनगोला से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहनवाज खान, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान।
2: हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से मैसेज लिखने वाले हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान।
1: एयरपोर्ट नगर वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, सनेना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी।
2: मलियान सरदना मेरठ से मैसेज भेजने वाले हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन और सरदना मेरठ से हैं आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन।
1: ये गीत है फिल्म बेवफा सनम से सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। अताउल्लाह खान की ये रचना है और संगीत है निखिल विनय का।

0: सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना बेवफा सनम फिल्म का गीत। शब्द रचना थी अताउल्ला खान की और संगीत था निखिल बिने का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म गदर 2 से नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर और साहिल की आवाज़ में। सईद कादरी की रचना को संगीत दिया है मिथुन ने। और इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास आप सभी की।
1: शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सक्काल, आशा सक्काल, सोनिया सक्काल, साईराज सक्काल और विशाल सक्काल ने
0: इसी गीत को सुनना चाहा है। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार।

0: मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा।
1: तेलंगाना भोनगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा अजमीन गुड़िया।
0: कवाई बारा राजस्थान से मैसेज लिखने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव।
1: ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।
0: वरवट बकाल बुलढाणा से मैसेज भेजने वाले हैं नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोन जोशी और पायल जोशी। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू की।
0: ये मैसेज हमें मिला है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन का।
1: आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी अलीपुरा नजीबाबाद से मोहम्मद नाजिम, नावेद कलीम और नईमा की।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह के स्वर में, फिल्म का नाम है जिद। इस गीत को लिखा है शकील अजमी ने और संगीत दिया है शारिब तोशी ने।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म जिद में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है MS धोनी। आवाज है परत मुच्छल की। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और धुन तैयार की है अमाल मलिक ने।

0: मलक मुच्छल की आवाज में अभी आपने सुना MS धोनी फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है लोफर, स्वर लता मंगेशकर का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म लोफर में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और साथियों की। गीत को लिखा है इब्राहिम मश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

Let's go.

बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह और नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें?

0: जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
1: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
1: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
1: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी,
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है।

0: बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हलने को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग

0: 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम,
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी,
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद
6: मैम। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली

0: शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी

0: किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
1: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
2: जी हाँ।
1: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
3: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
4: हाँ, उपाय बताइए।
1: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
5: ग्राम सभा?
3: ठीक है।
5: हाँ, ठीक है।
1: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
4: हाँ, तैयार है। ठीक है।
1: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
6: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
7: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
1: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
8: वो कैसे?
4: क्या गड्ढा बनाना है?
9: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
3: फिर इसकी क्या जरूरत है?
8: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
1: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
3: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
9: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
1: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
3: सिंचाई टैंक?
1: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
4: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
0: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आगे

0: दीजिए
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं। श्रोताओं, अब संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का।

अब से थोड़ी ही देर में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर क्रम रहेगा हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक। इसके अंतर्गत अविता रानी से अंजना की बातचीत सुनवाई जाएगी, साथ ही बात की जाएगी महिला समानता दिवस की।

मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजना हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की जानकारी दी जाएगी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी पेश किया जाएगा आज शाम 5:15 पर। क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, कहानी के उस पार, रहस्य सीरीज, बूस्टर्स और साथ ही साथ होगा फिल्म संगीत भी।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा आज शाम 7:32 पर।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:45 पर युगराज सिंह के गाए शब्द सुनवाए जाएंगे। गीत संध्या कार्यक्रम पेश किया जाएगा आज रात्रि 8 बजे। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 8:30 पर।

व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 6 बजकर

55 मिनट पर। विविधा कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर वार्ताकार श्री जैरीन के थॉमस की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय रहेगा मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा।

किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे आज शाम 6:05 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वेश कुमार, जो कि संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से हैं। इनसे नरेश पाल सिंह की बातचीत। विषय रहेगा सर्दियों में फूलों की बुआई। साथ ही बात की जाएगी बरसात में कंपोस्ट खाद बनाते समय सावधानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेजेस पर बेस्ड कार्यक्रम संदेश.com का समय रहेगा आज दिन में 2:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा पेश किया जाएगा आज दोपहर 1:45 पर। इसमें आज हम आपको उमा जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुनवाएंगे। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब पेश है शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आलाप मध्यालय 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर शिरकत कर रहे हैं शफात अहमद खान।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आलाप मध्यालिया तीन तार में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पर शिरकत कर रहे थे शफात अहमद खान। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाज़ में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है किक। आवाज़ें हैं सलमान खान, मेट ब्रदर्स और श्रेया घोषाल की। शब्द रचना है कुमार की और संगीत मेट ब्रदर्स का।

0: सलमान खान, मीत ब्रदर्स और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना किक फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं ये संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।
2: पहले तत नहीं था।
1: और अब आप

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। शब्द रचना है समीर की और धुन हिमेश रेशमिया की।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में अभी आपने सुना दिल मांगे मोर फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म सहर से, स्वर आतिफ असलम का है, गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत रूप कुमार राठौर का।

आतिफ असलम की आवाज़ में अभी आपने सुना जहर फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जोड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed gratitude to India and President Draupadi Murmu for conveying Independence Day greetings to the people of Ukraine. President Murmu yesterday extended her greetings to the people of Ukraine on the occasion of the country's 35th Independence Day. In men's cricket, host Sri Lanka were 108 for 2 against India in the second innings of the Colombo Test when reports last came in. India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the penultimate day 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: दोपहर के 1:10 होने को है, अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने खसूसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्कीम से उत्तर प्रदेश में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त बस सफर मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना तकरीबन 88,438 खवातीन मुसाफिर इस स्कीम से मुस्तफीद होंगी। स्कीम के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त सफर के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से खसूसी स्मार्ट कार्ड हम किए जाएंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ अहिल्याबाई हिम्मत और इज्जत-ए-नफ्स की अलामत हैं, इसलिए हमने इस स्कीम का नाम लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना रखा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर 27, 28 और 29 अगस्त को खवातीन को एक साथी के साथ मुफ्त बस सफर की सहूलत मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा,
3: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखाकर इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं।
2: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में 24 अहम तजावीज को मंजूरी दी गई। एक फैसले में 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर शामिल था। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड पेश करके यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। उनके लिए खसूसी स्मार्ट कार्ड बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हुकूमत का अंदाजा है कि रोजाना 88,000 से ज्यादा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ रियासती काबीना के इजलास में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक तौसी देने की तजवीज भी मंजूर की गई। मीटिंग के बाद वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने कहा कि मुजव्विजा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन के साथ तामीर किया जाएगा, जिसे मुस्तकबिल में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
4: गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित अप टू 8 लेन आज मंत्री परिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाए एवं गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
2: काबीना ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में एक मरबूत मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर कायम करने की तजवीज को भी मंजूरी दी। रियासती हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों के बावकार जिंदगी को यकीनी बनाने और उनके हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए उत्तर प्रदेश वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और बहबूद के उसूल 2014 में अहम तरमीम किया है। इस तरमीम के तहत अब बूढ़े वालिदैन उन बच्चों को आसानी से अपनी जायदाद से बेदखल कर सकेंगे जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनके साथ ज्यादती करते हैं। हिंदुस्तान के डिजिटल अदायगियों के निजाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 साल मुकम्मल हो गए। 2016 में शुरू किया गया UPI ने अपने बेमिसाल पैमाने और काबिल-ए-एतमादी के जरिए आलमी सतह पर पहचान हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने UPI की दिहाई तवील कामयाबी की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने साथी शहरियों से अपने UPI के तजुर्बात शेयर करने की अपील करते हुए

0: कि हर हिंदुस्तानी को यूपीआई की वसी रसाई और तौसी पर फख्र करना चाहिए। यूपीआई के जरिए लेन देन का हुज्म तकरीबन 13,000 गुना बढ़ गया है। नबी करीम मोहम्मद साहब का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी आज मुल्क और रियासत भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ, अमरोहा, पीलीभीत, फरुखाबाद और रियासत के मुख्तलिफ अजला में जलसे मोहम्मदी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। नबी करीम मोहम्मद साहब की सीरत और तालीमात पर मीलाद की महफिलें और सीरत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जा रहा है। इस जुलूस को लेकर लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश का माहौल है। जुलूस मोहम्मदी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस्लामी झंडे और तिरंगा उठाए हुए हैं और नबी करीम की शान में नातें पढ़ी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज जुलूस पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल कर रही हैं। लखनऊ में आज बरोज हफ्ता जुलूस के पुरमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमन कानून बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस की हिफाजत के लिए 57 गजेटेड अफसरान समेत कुल 2,989 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी मकासद के लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 23 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। तरती पार बलिया में दरियाए घाघरा और बदायूं में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब तक 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने आज रियासत में कई मकामात पर गरज चरम के साथ मगरबी इजला में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:16 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारी प्यार भरी राम राम। आज का थारा मनपसंद कार्यक्रम लेके हाजिर है थारी बहना कुमुद। कार्यक्रम में थारा सभी का प्यार भरा स्वागत है। बहनों थारी गैल राम राम तो हो गई म्हारी। ये बूझ लें थारे हाल चाल भी। तो बहना क्या हाल चाल है थारे थारे घर परिवार के? सारे बालक नन्हे बड़े बुजुर्ग सब चौखे तो हैंगे? हाँ बहना, हमें चौकी तरह बेरा हैगा। तुम सब अपने परिवार की ढाली ध्यान रखो हो, अपने ढोर डंगरों का भी। बड़ी होशियार होगी तुम। हाँ आजकल आज के कार्यक्रम में थारे लियो क्या क्या हैगा यो तो बहना ध्यान से सुन के ही पता चलेगा आखिरी लो। हाँ किट्ठी हो गई सारी? तो बहना सुने हैं पहले जरूरी संदेश, फिर शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम।

0: चंदन का एहसास।
1: बहना, थारे मनपसंद कार्यक्रम घर संसार में इस संदेश के बाद सभी बहनों का एक बार फिर स्वागत करे है थारी बहना कुमित। बहना, एक बात बताइए मुझे, साल के 365 दिन हम काम करे हैं और नौकरी वोकरी करती हूँ तो बहना यो काम हो जा दुगना, पर बहना कदी कदा कि हमें सुनने को मिलता होगा अब थक गिरी बोबो, अब जा तनकसान आराम कर ले। और हम जनानियाँ घर के सभी जनों का पूरा ध्यान रखेंगी, बालक ननों को भी देखेंगी, घर की सारी जिम्मेदारी भी निभाएंगी, बड़े बुजुर्गों के भी दवाई दारू देखेंगी, उनका भी ध्यान रखेंगी। और घर के पुरुष जब खेतों पर जा हैं या जो नौकरी करे हैं वो नौकरी पर जा हैं और जब वे लौट के आम है शाम जी को तो हमें क्या लगे अब थक गए होंगे, हम अपनी थकान भूल जाए उनके आगे, और हमारी थकान के बारे में तो शायद ही कोई सोचता होगा। यहाँ तक कि बहन

ना अपनी हारी बीमारी को भी हम जनानियां नजरअंदाज कर दें अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के आगे। पर आज 26 अगस्त का यह दिन बना है हम महिलाएं अपने वजूद को पहचानने, समाज में हमारे काम को पहचान मिले और यो माना जा अक दुनिया जिस आधी आबादी के वह है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो क्या असर होगा समाज का। हाँ भिन्ना, हम आज सप्ताह पहले बात कर रहे हैं महिला समानता दिवस की, जो आज 26 अगस्त को मनाया जा रहा। समानता यानी बराबरी। तो भिन्ना, भले से कानून महिला और पुरुष दोनों को ही बराबरी का दर्जा देवे है, पर असलियत, अरे असलियत तो इससे कोसों दूर हैगी। समाज की सोच में बब्बो अभी बतेरा अंतर हैगा। कहने को तो कह दें कि हम महिलाओं को बराबरी के हक हैंगे, पर भिन्ना कितनी सच्ची हो बात, ये तो तुम भी जानो हो और हमें भी बेरा हैगा। अच्छा भिन्ना, तुम्हें पता ना होगा अब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? तो भिन्ना वो देश था अमेरिका। कहने को तो ये एक विकसित देश हैगा, पर भिन्ना तुम्हें पता ना वहां औरतों को भी वोट देने का हक नहीं था। और तुम्हें यकीन नाने का 50 साल लो भिन्ना। हाँ, इतनी सच्ची सच्ची कहे हैं, इतनी लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में 26 अगस्त 1920 में वोट देने का हक मिला वहां की महिलाओं को। जब इसे अमेरिका में इस दिन को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन भैया, आदमी और औरत की बराबरी का ये मुद्दा अकेले अमेरिका देश का ही थोड़ा ही, अब तो सारी दुनिया का मुद्दा बन गया है वो। इसीलिए यो अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा। भैया, क्या तुम्हें जानकारी है अब भारत के कानून में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हुए? ना जानती? चलो तो नेकी और बूझ बूझ हम बताए दे रहे। आज ध्यान से सुनियो, हमारे देश का कानून हमें क्या क्या अधिकार देवे है बराबरी के। देखो, इनमें पहला अधिकार तो है समान वेतन का अधिकार। मतलब अगर काम एक सा करेंगी तो मेहनताना भी एक जैसा ही पाएंगी। योग नहीं हो सकता कि आदमी और औरत दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाएगा। क्यों भाई, जब काम एक से ले रहे तो पैसे भी एक से ही दो। हाँ, और दूसरा हैगा गरिमा और शालीनता का अधिकार। देखो, यो अधिकार हर महिला को गरिमा से सम्मान से जीने का हक देवे है। अगर किसी वजह से उसे डॉक्टरी जांच वगैरह करवानी पड़े हो तो किसी महिला की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। अकेले डॉक्टर ना ही जाँच कर सकता वहाँ पे, चाहे तो कोई जैसे वो हो, ये क्या कहें, ANM वगैरह हो, या फिर सारे घर की कोई महिला मौजूद हो, ऐसा होनी चाहिए। अकेले डॉक्टर जांच नहीं करने का है। और तीसरा है दफ्तर में या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। अगर किसी महिला की गैल उसके काम करने की जगह पर किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न होता हो तो वो शिकायत दर्ज करा सके है। और बिना अगला अधिकार तो बड़ा ही काम का हैगा बिना, वो है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। भारत के संविधान की धारा 498 के तहत पत्नी या फिर ऐसी औरतें जो बिना शादी करे दूसरे पुरुष के साथ रह रहे हैं, या फिर घर में रहने वाली महिला हो, अगर इनकी गैल किसी भी तरह की घरेलू हिंसा हो रही हो तो वे आवाज़ उठा सके हैं। पति हो या बगैर शादी के साथ रहने वाला पुरुष हो, साथी या फिर रिश्तेदार, इनमें से कोई भी अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकता। और पांचवा अधिकार हैगा भेना, पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार। देखो जी, किसी भी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। मतलब अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार हुई भैना, तो वह अकेले जज के सामने बयान ना जारी वो करने की दर्ज कराने की तो वो अकेले जज के सामने बयान दर्ज करा सके। हाँ, गलती से बोल गई मैं। जरूरी ना है कि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाए उसे देखें, उसे पहचानने। अगर उसे पहचानेंगे तो देखो मान सम्मान की बात हो जाएगी उसके, अयो अच्छी ना होती कि फिर। तो उसको यह अधिकार है कि वो जज के सामने अकेले भी अपना बयान दर्ज करा सके है। और अगला अधिकार हैगा भेना, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। इसके हिसाब से अगर भगवान न करे किसी महिला के साथ

0: बलात्कार जैसा घिनौना काम हो जा तो उसे मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। और भिन्न सातवां अधिकार है कि रात में महिलाओं को गिरफ्तार ना कर सकते। किसी भी महिला को सूरज निकलने से पहले या सूरज छिपने के बाद गिरफ्तार ना कर सकते। अगर उससे उसी के घर में कोई पूछताछ हो भी रही तो उसकी गैल या तो महिला सिपाही हो या उसके अपने परिवार की कोई महिला। आठवां है मौखिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार। इसका मतलब महिला चाहे तो रजिस्ट्री डाक से पुलिस थाने में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके है, जरूरी ना कि उसे वहाँ सामने मौजूद रहना पड़ेगा। और नवा अधिकार है अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। किसी भी महिला को उसके रूप या शरीर के किसी भी अंग को भद्दे तरीके से या अनैतिक ढंग से नहीं दिखाया जा सकता, इसके लिए सजा भी हो सके है। और दसवां अधिकार महिला का पीछा ना कर सकते। भारतीय संविधान की धारा 354D के तहत किसी महिला का पीछा करने, बार बार मना करने के बावजूद बातचीत करने की कोशिश करने या किसी भी दूसरे तरीके जैसे इंटरनेट या ईमेल के जरिए उस पर नज़र रखने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 11वां अधिकार हैगा वो 0 FIR का अधिकार। मतलब अगर किसी महिला के खिलाफ अपराध हो तो वो किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR करा सके है। जरूरी ना है कि उसी थाने में लिखवाई जाए जहाँ पे घटना हो रही, वो कहीं दूर हो जब भी वो रिपोर्ट करवा सके है। तो देखा बहनों, नू तो कानून ने बतेरे सारे हमारे साथ दे रखा है, बतेरे सारे हमारे कानून बने हुए हैं हमारे लिए, लेकिन बहन सही जानकारी ना होती इसलिए इनका पालन भी ना होता। और कानून के साथ साथ भी ना, जब तक हम भी अपने दिमाग से ये महिला पुरुष का फर्क ना मिटाने के, जब लो बराबरी का अधिकार सपना ही बन के रह जाएगा बस। अब वैसे बदलते माहौल के साथ भी ना कुछ बदलाव तो आया है, पर सब कुछ बदलने में अभी बतेरा वक्त लगेगा। तो बहनों ये तो थारे से बात हुई महिला समानता दिवस की। अब बारी आज के खास क्रम की। तो हमें पता तुम बड़ी उतावली हो रही हैं आज, आज कौन सी बहना है हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक वाले क्रम में आई है। तो लो आज सुनते हैं यो हमारा आज का क्रम हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक, जिसमें आज अंजना ने बात करी है ग्राम महावतपुर नजीबाबाद जिला बिजनौर से आई अविता रानी से। तो आओ सुने।
1: हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक। बहनों इस क्रम के अंतर्गत हम आप में से ही किसी श्रोता बहन को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारी श्रोता बहन है अविता रानी और आप हैं ग्राम महावतपुर से। तो अविता जी स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: Yes.
1: तो अविता जी सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं और कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है।
2: मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ईश्वर का नाम लेती हूँ।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में थोड़ा व्यायाम करती हूँ, उसके बाद में एक गिलास गुनगुना पानी लेकर और फिर अपने दिनचर्या की शुरुआत करती हूँ।
1: अच्छा, एक दैनिक दिनचर्या का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है और क्यों जरूरी है?
2: ये हमारे दैनिक दिनचर्या हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इससे हमारे एक तो समय का बचाव होता है।
1: अच्छा।
2: और समय का बचाव के बाद फिर हम जो है जो हमारी जो शारीरिक कार्य हैं वो हम समय से कर पाते हैं।
1: समय से कर पाते हैं। अगर समय से उठ गए तो आप योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को करते चले जाते
2: करते चले
1: अब
2: जाते
1: ये करना है,
2: अब ये करना है, अब वो करना है। तो ये हमारी जो है सारी दिनचर्या जो है सही से हो जाती है, उसमें हमारा थोड़ा सा समय भी बच जाता है।
1: अच्छा।
2: हमें थोड़ा सा आराम करने को भी मिल जाता है।
1: अच्छा, घर में आपके कौन कौन है, संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है?
2: नहीं, हम तो संयुक्त परिवार है
1: जी।
2: हमारी दो मेरी दो बेटियां हैं, दो बेटा है, पति और एक मैं।
1: अच्छा। और दादी बाबा बच्चों
2: के? बाबा जी भी हैं, वे बाबा जी चाचा के पास रहते हैं।
1: अच्छा।
2: बच्चों के चाचा के पास।
1: अच्छा, बच्चों के चाचा के पास रहते हैं। और घर में पशुपालन या खेती बाड़ी होती है?
2: जी होती है।
1: किन किन फसलों को आप बोते हैं और किस तरह से आप खेती बाड़ी को भी संभाल लेती हैं और अपने घर के काम काज भी कर लेती हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो इस समय तो हमारी इस समय तो धानों की बुआई चली है, लगाई है सरबती की। तो लगवा दी है, अब उसकी गुराई चल रही है।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसके बाद फिर जब वो धानों की फसल कट जाएगी तो उसके बाद उसमें पीली सरसों बोएंगे।
1: अच्छा।
2: और उस पीली सरसों के बाद फिर उसमें

0: गन्ना करेंगे,
1: अच्छा
0: फसल भी बदलनी जरूरी होती है,
1: अदल बदल कर अगर
0: अदल
1: हम,
0: बदल कर जरूरी होती है, उसमें खेत सही रहते हैं,
1: हाँ उतनी
0: जमीन
1: जड़ वाली और
0: हाँ
1: थोड़ा गहराई में जो जाती
0: गहराई में
1: हैं,
0: जाती
1: तो हम
0: है,
1: उनको अगर अपने खेतों में बोते हैं तो हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता
0: बढ़ जाती है,
1: बढ़ जाती है और
0: जी
1: बनी रहती है
0: बनी रहती
1: और
0: है,
1: हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो
0: सही
1: जाती
0: होती
1: है।
0: है।
1: अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी खेती बाड़ी भी होती है और इस समय आपने धान की फसल बो रखी है,
0: जी
1: तो धान की फसल के लिए तो पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है,
0: जी
1: तो इस बार पानी सही रहा, सही बारिश हुई
0: बारिश सही हो रही है इस समय तो
1: तो आपके खेतों में पानी भर गया था जो
0: जी,
1: आपने पनीर लगा दिया
0: हाँ
1: था,
0: जी
1: पनीर लग चुका है
0: पनीर
1: आपके।
0: लग चुका है
1: अच्छा,
0: जी,
1: तो जैसे आपने पनीर भी बो दिया है, ये खेती बाड़ी आप खुद देख लेती हैं,
0: खुद देख लेती हूँ
1: आपको जानकारी है खेती
0: वो,
1: बाड़ी
0: हाँ
1: की।
0: मुझे बहुत जानकारी
1: अच्छा, तो जिस समय आप खेतों पर जाती हैं तो घर के कामकाज कैसे संभालती हैं आप?
0: जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ तो
1: हाँ
0: 4 बजे उठ जाती हूँ
1: अच्छा, यानी कि अपनी दिनचर्या में 1 घंटा
0: एक
1: और
0: घंटा और
1: बढ़ोतरी
0: बढ़ा
1: कर,
0: लेती हूँ
1: आए बहुत बढ़िया कि आपको यदि अपने कार्य करने हैं तो उसमें आप फेरबदल कर लेती हैं कि मुझे ये
0: फेरबदल
1: काम
0: करना,
1: करना है, तो
0: ये
1: जल्दी उठ
0: करना
1: गए।
0: है जी
1: अच्छा, जैसे पूरे दिन आप काम काज करती हैं
0: जी
1: तो सुबह तो आपने नाश्ता बना दिया,
0: जी
1: बच्चे पढ़ते हैं आपके,
0: जी हाँ
1: कौन कौन से क्लास में हैं आपके बच्चे?
0: बच्चे तो इस समय तो लड़कियां, तो बड़ी वाली बेटी भी ऐड कर रही है,
1: जी,
0: उसका नंबर सरकारी कॉलेज में धामपुर में आया है,
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
0: और छोटी वाली बेटी MSc कर रही है, वो भी धामपुर से ही कर रही है, लेकिन वो
1: हाँ
0: टीचिंग कराने जाती है
1: अच्छा,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपके आपने बताया कि आपके दो दो लड़के भी हैं,
0: जी
1: तो क्या आप लड़का लड़की में भेदभाव करती हैं?
0: नहीं
1: करना
0: वो
1: चाहिए,
0: नहीं
1: नहीं करना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: ये एक समान है
1: तो इसीलिए आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं,
0: जी
1: उन्हें बिना भेदभाव के पूरा
0: जी
1: कोशिश करती हैं कि बच्चे आपके आगे बढ़
0: आगे
1: जाएं।
0: बढ़ जाते हैं
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो सुबह उठने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं
0: नहीं
1: आती
0: कुछ नहीं होती,
1: कि कभी आलस से आता हो
0: नहीं
1: या
0: नहीं
1: कुछ?
0: नहीं
1: जो
0: नहीं नहीं
1: सुबह उठना फायदेमंद होता है,
0: बहुत अच्छा रहता है, सही रहते
1: जैसे
0: हैं, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलती है, हम थोड़ा अपनी छत पर टहलते हैं तो
1: अच्छा,
0: हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस करता है,
1: हाँ,
0: और शाम तक हमें बहुत अच्छा लगता
1: अच्छा
0: है
1: अविता
0: शाम।
1: जी, नाश्ता रोटी ये सब काम तो सभी कर लेते हैं,
0: जी
1: लेकिन एक उसमें हमें देखना होता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से पोषण युक्त नाश्ता दें, खाना दें।
0: जी
1: आप सुबह नाश्ता बनाती होंगी अपने बच्चों के लिए, तो
0: जी
1: किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि आपके बच्चे हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे?
0: उसमें हमें पौष्टिक नाश्ता बनाना पड़ता है,
1: अच्छा,
0: जैसे कि काले चने वे शाम को भिगो कर रखने पड़ते हैं, सुबह को उन्हें उबाल के और उन्हें तड़का लगा के बच्चों को नाश्ते में
1: हाँ,
0: दे देते हैं,
1: अच्छा
0: उससे हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उनका भी ध्यान रखती हैं कि
0: जी
1: भाई
0: हम सब
1: बच्चों को किसी को कुछ पसंद,
0: पूछ
1: किसी को कुछ पसंद,
0: शाम को पूछ लेते हैं सुबह को नाश्ते में क्या खाना है,
1: और जो बनाना है वो भी शाम को?
0: वो
1: हाँ
0: भी अगर वे बोलते हैं कि सुबह को आलू के पराठे बनने हैं तो
1: हाँ
0: व्यवस्था सुबह को पूरी नहीं कर पाएंगे, आलू के
1: अच्छा,
0: पराठों में टाइम लगता है, तो हमें वे आलू शाम को ही उबाल कर रखने पड़ते हैं।
1: अच्छा, नाश्ते के बाद आपके पास समय बच जाता है, उधर आपने पशु भी पाल रखे हैं,
0: जी
1: तो पशुओं में क्या पाल रखा
0: गाय
1: आपने? गाय पाल रखी, उसकी सेवा करती हैं,
0: जी
1: तो उसके लिए कैसे समय निकाल लेती हैं?
0: उसके लिए समय थोड़ा समय शुरू में निकालते हैं, फिर जब बच्चे अपना कार्य पर चले जाते हैं फिर हम बचते हैं अकेले, उसके बाद जो है हम अपने गाय में लगाते हैं अपना टाइम,
1: अच्छा, जैसे चारा
0: चारा
1: डालना,
0: डालना,
1: पानी,
0: उनका
1: दूध
0: गोबर
1: निकालना,
0: साफ करना
1: हाँ,
0: जी,
1: तो ये सब
0: उन्हें
1: समय निकाल लेती हैं आप,
0: सवेरे
1: नाश्ता बनाने के बाद कर लेती होंगी?
0: नाश्ता बनाने के बाद कर लेते हैं
1: अच्छा, जैसे
0: जी
1: बच्चे अपने अपने काम पर चले जाते हैं, आप
0: हाँ
1: अकेली घर में रहती हैं,
0: नहीं
1: पूरे दिन घर का काम करना, उसे
0: जी
1: समेटना, व्यवस्थित रूप से करना, कोई
0: करना,
1: दिक्कत नहीं आती?
0: उसके बाद सिलाई भी कर लेती हूँ
1: अरे वाह, अच्छा, सिलाई भी आप का
0: और
1: जानती
0: क्या,
1: हैं?
0: फिर सिलाई भी कर लेती हूँ, एक
1: अच्छा
0: आध
1: अच्छा
0: कपड़ा सिलाई में
1: कौन
0: भी
1: कौन
0: कर,
1: से कपड़े सिल लेती हैं आप?
0: लेडीज कपड़े सब सिल लेती हूँ
1: अच्छा, लेडीज कपड़े आप
0: हाँ,
1: सब सिल लेती
0: जेंट्स
1: हैं?
0: में शर्ट भी सिल देती हूँ,
1: अच्छा,
0: बाकी सब कपड़े सिल लेती
1: अरे
0: हूँ
1: वाह, आप तो बहुत जागरूक बहन है।
0: जी
1: और जैसे आप सिलाई भी कर लेती हैं, पशुपालन भी आप जानती
0: जी
1: हैं, और घर के जो और काम है वो भी आप अच्छे से कर लेती हैं। अच्छा, और कोई शौक आपको,
0: मुझे
1: गाना गाने
0: मैं
1: का या फिर
0: हाँ मुझे भजनों का बहुत शौक है, भजन बहुत गाती हूँ
1: अच्छा भजन गा लेती
0: मैं
1: हैं, जैसे कीर्तन वगैरह होता
0: जी
1: जाती हैं?
0: हाँ।

0: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज, बहुत मधुर आवाज, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया और हमारी श्रोता बहनों को भी पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं खेती बाड़ी की। देखिए, आपने कहा कि आपने चावल यानी धान लगा रखे हैं, सरबती चावल आपने बोया है, तो उसका भंडारण भी करना पड़ेगा जब वो घर पर आएगा। तो थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसका भंडारण कैसे करेंगे, जो हमारी श्रोता बहन भी सुन लें और जागरूक होकर के वो अच्छे से भंडारण करें।
1: जैसे कि हम उसे घर में लाते हैं तो सबसे पहले वो हमें छत पर डालनी पड़ती है सुखाने के लिए,
0: अच्छा,
1: और सुखा के फिर उसको उड़ाना पड़ता है, जो उसके अंदर जो वो होता है भूसी कूड़ा वो
0: हाँ,
1: उसको अलग करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: वो हमें उड़ाना पड़ता है पंखे से।
0: अच्छा
1: उसको उड़ा के फिर हमें उसे सेलर पे भेजते हैं उठा के, फिर हम उसको कुटवाते हैं, उसके चावल और भूसी अलग हो जाती है, फिर हम चावल अपने घर में ले आते हैं और सबसे पहले हम भगवान नाम के निकालते हैं,
0: अच्छा
1: उसके बाद में हम उसका सेवन करते हैं।
0: अच्छा उस दोपहर में भोजन में किस तरह से आप ध्यान रखती हैं पौष्टिकता का?
1: दोपहर में जैसे कि दाल चावल,
0: हाँ,
1: रोटियां,
0: अच्छा,
1: एक सब्जी, वो चाहे हरी सब्जी लौकी की हो या बैंगन की हो
0: हाँ,
1: गोभी हो, मतलब एक सब्जी और दाल चावल।
0: अच्छा, ये जरूर
1: हाँ
0: बनाती हैं आप, एक
1: जी
0: सब्जी और दाल चावल।
1: दाल
0: जो साफ सफाई का भी ध्यान रखती हैं,
1: जी,
0: साफ सफाई में किन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं?
1: सबसे पहले तो हम अपने घर की साफ सफाई,
0: अच्छा
1: अपना अच्छे से नहाना, कपड़े धोने, उन्हें समय सही से लगाना रखना,
0: अच्छा
1: ओढ़ने बिछाने के बिस्तरों को हमें कम से कम एक हफ्ते में एक बार धो लेना चाहिए
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा क्या आप ये मानती हैं कि अगर घर स्वच्छ होगा, अच्छे से सलीके से वहां पर जो सामान है वो लगा होगा, तो घर में बैठने की इच्छा होगी,
1: बैठने
0: सबका
1: की
0: मन
1: इच्छा,
0: करेगा
1: हाँ
0: कि हाँ भाई
1: स्वस्थ,
0: बड़ा अच्छा
1: हाँ जी
0: है। तो बहुत अच्छी बात, खाने की भी बात हो गई। अब रात्रि के भोजन की बात कर लेते हैं कि रात में आप किन किन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि रात में छाछ वगैरह या दही
1: हाँ
0: दही
1: दही
0: वगैरह
1: नहीं,
0: नहीं खानी
1: दही नहीं
0: चाहिए,
1: देनी चाहिए,
0: तो क्या
1: साथ
0: इन बातों का
1: छाछ
0: ध्यान रखती हैं
1: जी।
0: आप कैसे?
1: रात में हम जैसे दही नहीं लेते हैं, दही का
0: अच्छा
1: सेवन नहीं करते हैं, छाछ का सेवन नहीं करते हैं, और हल्का खाना बनाते हैं
0: अच्छा
1: जी,
0: जैसे
1: जैसे कि मूंग की दाल हुई,
0: हाँ
1: हल्की होती मूंग की
0: हाँ
1: दाल हुई, मूंग की दाल हुई, और
0: हरी
1: जैसे
0: सब्जियां
1: हरी
0: ले ली।
1: सब्जियां हुई, पालक हुआ, मूली की सब्जी हुई,
0: अच्छा
1: ये साग वाग हुआ
0: अच्छा इसके
1: जी,
0: साथ
1: इनके
0: रोटी से
1: इसके
0: सेक
1: साथ
0: लेते हैं।
1: रोटी बनाते हैं, चावल बहुत कम बनाते हैं, शाम को
0: अच्छा
1: चावल नहीं खाते,
0: अच्छा दोपहर में खा लेते हैं
1: दोपहर में
0: चावल।
1: चावल खाते
0: सोने से कितने देर पहले खाना खा लेते हैं आप?
1: 1 घंटा पहले
0: अच्छा
1: जी
0: 1 घंटा पहले आप भोजन कर लेते हैं, जिससे कि
1: जी
0: खाना पच भी जाए, रात
1: हाँ
0: में नींद भी अच्छी आ
1: अच्छी आ
0: जाए।
1: जाए
0: अच्छा जैसे हम रात में विश्राम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है या
1: जी।
0: नहीं?
1: हाँ
0: क्यों
1: हमारे
0: जरूरी
1: लिए
0: है?
1: बहुत जरूरी है,
0: क्यों?
1: क्योंकि हम विश्राम अगर करेंगे हमें नींद अच्छी आएगी तो सुबह को हमारे समय पर आँख भी खुल जाएंगी।
0: बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे आपने बताया कि हम सुबह इतने बजे उठते हैं, अपने पशुपालन का भी पूरा ध्यान रखते हैं और घर के काम काज भी बड़े आराम से कर लेते हैं, साथ में अपनी भोजन पौष्टिकता का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा और क्या काम काज आप करती हैं, हमारी श्रोता बहनों को बताइए, और साथ में ये भी बताइए हमारी श्रोता बहनों को कि किस तरह से एक व्यवस्थित दिनचर्या बना करके हम अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं।
1: इसके लिए मैं एक इसमें जॉब करती हूँ, अनार आलम से आजीविका मिशन है,
0: जी
1: इसमें भी मैं अभी फिलहाल तो मैं समूह सखी के पद पर हूँ,
0: अच्छा
1: वरना मैंने ICRP सीनियर CRP का कार्य भी किया है,
0: अच्छा अच्छा
1: उसमें जो है अपने जिलों से दूसरे जिलों में जॉब करने जाना पड़ता था।

0: हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में।
1: अच्छा, उसमें क्या कार्य था
0: उसमें
1: आपका?
0: कार्य था हमें कि महिलाओं को NRLM के आजीविका मिशन के बारे में समझाना
1: अच्छा
0: और 10-11 महिलाओं का एक समूह बनाना,
1: अच्छा
0: उन्हें सारी योजनाओं को विस्तार से बताना,
1: अच्छा जो सरकारी
0: जो
1: योजनाएं हैं।
0: सरकारी योजनाएं हैं,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उनका एक समूह बनाना। एक गांव में हमें कम से कम 8 से 10 समूह बनाने होते थे,
1: अच्छा
0: यानी कि हमें 80 महिलाएं जोड़नी होती थी।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो उसमें आपको क्या लाभ होता था?
0: उसमें मुझे ये लाभ था कि मुझे जो 500-600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुझे मिलता था, एक
1: अच्छा
0: ड्राइव 40 दिन की होती थी
1: हाँ हाँ
0: और 45 दिन की, तो
1: अच्छा
0: उसमें मुझे 20-22 हज़ार रुपए मिलते थे
1: अच्छा
0: एक
1: अब नहीं
0: ड्राइव।
1: करते आप ये काम?
0: अब मैं समूह के कार्य पर ही रह गई हूँ, क्योंकि
1: अच्छा
0: अब मैं बाहर नहीं जाना चाहती, घर में ही
1: अच्छा
0: काम इतना होता है,
1: अच्छा अच्छा
0: उधर लड़कियां जाती हैं पढ़ाई कर रही हैं, तो घर के काम बहुत होते हैं, तो इस वजह से अब मैं नहीं जा पाती। जब मेरी सास खत्म हो गई उसके बाद मैं नहीं गई।
1: अच्छा, तो
0: ठीक
1: आप बहुत ही सजग महिला हैं और बहुत अच्छी
0: जी,
1: दिनचर्या आपकी रहती है, साथ में आप अपने जो शौक है वो भी पूरे करते हैं, सिलाई कर लेती हैं, और साथ में आप देखिए भजन कीर्तन में भी चली जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अबिता जी, आप इस तरह अपनी दैनिक दिनचर्या चलाते रहिए और स्वस्थ रहिए, यही कामना है हमारी। हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो बहनों, हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक, आज के इस क्रम में अविता रानी जो महावतपुर जिला बिजनौर तहसील नजीबाबाद की रहने वाली थी, उनसे बात की थी अंजना ने। तो बहनों, कितना अच्छा लगा उनसे बात करके। सुना तुमने भी कितनी जिम्मेदारी जो बढ़िया तरह निभा रही अपने सारी वे अविता बहन जैसी महिलाओं ने दिखा दिया है कि मत समझो हमें नाजुक, प्रकृति धरती की बेटी हम हैं, समय पड़े तो दिखला देंगी, नहीं किसी से हम कम हैं। बहना सच्ची कह रहा है ना मैंने? हाँ, हमें पता अब थारा मन कर रहा है एक अच्छा सा लोकगीत सुनने का, तो लो आनंद लो इस प्यारे से लोकगीत का।

बैठूं तो मुझे तो घड़ी देखने की सुधी ना रहती। लो जी, कार्यक्रम का वक्त भी पूरा होने को आ गया, पर जाने से पहले थारे से कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अच्छा लगा हो जब भी और नाए पसंद आया हो जब भी, हमें चिट्ठी में लिख के जरूर भेजियो। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467-63। बहनों व्हाट्सएप चलाती हो तो अपनी चिट्ठी हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सको हो। हमारा नंबर है 9457078288। अब अपनी बहन कुमुद को दो कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति। बहनों राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उमा जोशी के गाए हुए कुमाऊनी लोकगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

0: is heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: India today stands as the fastest.
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
2: India-Canada bilateral relations have seen
3: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
5: हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR AIEEPG और AICEPHD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न

0: मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोठी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अपराह्न की 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। संदेश.com कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त हुमा परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि संदेश.com कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और सुनवाते हैं आपको गीत भी। और श्रोताओं, जो भी गीत हम आपको सुनवाते हैं तो हर एक गीत से संबंधित हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आप हमें लिख भेजते हैं व्हाट्सएप मैसेज में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम में अंत तक। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त हुमा परवीन। और जो कोई भी हमारे नए श्रोता, नए साथी कार्यक्रम में आज जुड़े हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो सुनते रहिए कार्यक्रम संदेश.com हुमा के साथ। और कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब अपने नाम और एड्रेस के साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए 9457078288 पर। श्रोताओं, पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आमिर जमाल के स्वर में फिल्म मर्डर से। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने, और आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसने दिया है। संगीतकार का नाम आप सभी को बताना है। और गीत से पहले आप सभी को आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक।

अभी आपने सुना आमिर जमाल के स्वर में मर्डर फिल्म का ये गीत। और इस गीत के लिए हमने आपसे सवाल पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से श्रोता ने हमें सही जवाब लिख भेजा है। हमें बहुत सारे मैसेज मिले हैं हमारे श्रोताओं के जिन्होंने सही जवाब लिख भेजा है। ये मैसेज हमें मिला है गांव फरांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी का। इन्होंने सही जवाब लिख भेजा है। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से सही जवाब भेजने वाले हैं रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रऊफ़ अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज़ रुशमान अहमद और इनका समस्त राही परिवार। शिवाला कला बिजनौर से मैसेज भेजने वाले हैं रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत। और ये सही जवाब हमें गांव झुंझेला थाना शिवाला कला से भी लिख भेजा है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, शायना महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर ने। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भी सही जवाब लिख भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से सही जवाब लिख भेजा है बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष और खलीफों की बावड़ी खुदा बख्श खलीफा से मैसेज लिखने वाले हैं रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल। तो बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है और इसका सही जवाब है कि मर्डर फिल्म के संगीतकार हैं अनु मलिक। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें लिख भेजा है। अब सुनाते हैं हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम आप सभी को बताना है। स्वर है अदनान सामी का,

शब्द रचना कौसर मुनीर की है और संगीत है प्रीतम का। तो आप सभी को बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने जवाब लिख भेज सकते हैं।

अभी आपने सुना अदनान सामी के स्वर में ये गीत। इस गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। श्रोताओं, हमने इस गीत के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस गीत को कौन सी फिल्म से लिया गया है, तो देखते हैं हमारे किन श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है। ये मैसेज हमें मिला है मीरपुर हरिद्वार से रवि जावलिया का, और भी हमें बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से जवाब लिख भेजा है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से सही जवाब भेजने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्मा

0: इस्माइल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदर और पूरा ही खुशदिल परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से सही जवाब लिख भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से सही जवाब भेजने वाले हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। शिवाला कला बिजनौर से सही जवाब लिख भेजा है रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, कुह राजपूत ने। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से सही जवाब लिख भेजा है रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशान अहमद राही और समस्त राही परिवार ने। मलकापुर महाराष्ट्र से सही जवाब लिख भेजा है नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुहेरकर ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से सही जवाब भेजने वाले हैं पीएस नेहवाकर, निर्मला और विशाल। कोली नांदेड़ से मैसेज भेजने वाले हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। और ग्राम झुंझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से सही जवाब लिख भेजा है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, साइना, महवश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से सही जवाब लिख भेजा है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से सही जवाब लिख भेजा है मोहम्मद फरमान ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, नैनी पंवार और मनीष पंवार ने भी सही जवाब लिख भेजा है। ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से सही जवाब लिख भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है और इन्होंने बताया है, आप सभी ने बताया है कि इस गीत को जो लिया गया था वो लिया गया था बजरंगी भाईजान से। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। अब सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865844।

मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त हुमा परवीन। श्रोताओं, आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कीजिए 9457078288 पर। सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है माय नेम इज खान। शब्द रचना है निरंजन अयंगर की और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। आपको बताना है इस गीत के गायक कलाकार का नाम। जी हाँ, इस गीत को अपनी आवाज़ किसने दी है ये आपको बताना है।

अभी आपने सुना माई नेम इज़ खान फिल्म का ये गीत, और इस गीत के लिए हमने पूछा था कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं। देखते हैं हमारे कौन सी श्रोता ने हमें सही जवाब लिख भेजा है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से सही जवाब भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रिशान अहमद, रुशेज रुशमान और समस्त राही परिवार ने सही जवाब लिख भेजा है। कोटरा से सही जवाब लिख भेजा है दामिनी और उनके छोटे भाई ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से सही जवाब लिख भेजा है लाल मोहम्मद अंसारी ने। तो आप सभी ने सही जवाब लिख भेजा है और गायक कलाकार का नाम बताया है राशिद खान। तो बिल्कुल सही जवाब है, इस गीत के गायक कलाकार राशिद खान है। और इसी के साथ कार्यक्रम संदेश.com अब संपन्न होता है। दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा अनुमति।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में, और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी राजवीर सिंह। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। श्रोताओं, पता है आपको कि एक समृद्ध राष्ट्र की सबसे पहली और बुनियादी शर्त क्या है? जी हाँ, वो है शुद्ध पेयजल। जल ही जीवन है और इसी जीवन को देश के कोने कोने तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 2 महाअभियान चलाए हुए हैं। नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना और दूसरा है हर घर जल योजना। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। चिलचिलाती धूप है, तापमान 45 डिग्री को छू रहा है और देश के किसी सुदूर गांव में हमारी माताएं और बहनें सिर पर 3-3 घड़े रखे मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। साथियों, ये दृश्य

सिर्फ थका देने वाला नहीं था बल्कि ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर भी एक बड़ा बोझ था। कुएं, तालाब, नदी या हैंडपंप ही पानी का जरिया हुआ करते थे। गर्मियों में जब ये सूख जाया करते थे तो पूरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाता था और ऊपर से प्रदूषित पानी की वजह से हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां मासूम बच्चों की जान ले लिया करती थी। इस गंभीर समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए साल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं था बल्कि ग्रामीण परिवारों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सुरक्षित और साफ पानी देना था। इसके तहत पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी की टंकियां बनाई गईं, पाइपलाइन बिछाई गई और सामुदायिक नल लगाए गए। इस योजना ने देश में पेयजल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। इसने एक तरह से आने वाली बड़ी क्रांतियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दी थी। लेकिन साथियों, भारत को अगर वाकई उन्नत भारत बनना था तो रफ्तार को और बढ़ाना था। हमें सामुदायिक नलों की लंबी कतारों से आगे बढ़ाना था और इसी दूरदर्शी सोच के साथ साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन का ऐलान किया, जिसे हम सब आज हर घर नल योजना के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, ये योजना कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक और स्वास्थ्य क्रांति है। जहां पहले लोग सार्वजनिक नलों पर पानी के लिए लड़ते थे, इस योजना ने सीधे रसोई और घर आंगन तक नल पहुँचा दिया है और जहां अभी तक नहीं पहुंचा है वहां भी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपने देखा भी होगा, हमारे यहां हर गांव में टंकी निर्माण का काम चल रहा है, गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और कई जगहों पर तो ये टंकियां चालू भी हो चुकी हैं। ये इसी योजना का हिस्सा है। इसका सीधा सा लक्ष्य है देश के हर ग्रामीण घर में चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। और इसका पैमाना देखिए, इस योजना के तहत हर ग्रामीण नागरिक को प्रतिदिन 55 लीटर साफ पीने का पानी देने का मानक तय किया गया है, यानी 55 लीटर हर रोज़, वो भी बिना किसी भेदभाव के। साथियों, अगर देखा जाए तो इस योजना ने सबसे बड़ा उपकार किया है हमारी ग्रामीण महिलाओं पर। अब उन्हें अंधेरे में उठकर पानी के लिए कोसों दूर नहीं भटकना पड़ता और जो समय उनका बचा वे उसे अपने बच्चों को पढ़ाने और सिलाई कढ़ाई में भी यूज़ कर सकती हैं। श्रोताओं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के लाखों गांव आज हर घर जल प्रमाणित हो चुके हैं। गोवा, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के गांवों में आज नल से जल तेजी से पहुंच रहा है। देखिए साथियों, यहाँ आकर सरकार की जिम्मेदारी तो पूरी हो जाती है पर हमारी जिम्मेदारियाँ अब शुरू होती हैं। सरकार पाइप बिछा सकती है, नल लगा सकती है, पानी पहुंचा सकती है, लेकिन उस पानी को सहेजना, उसे बचाना और उसका सही उपयोग करना किसकी जिम्मेदारी है? जी हाँ, हमारी और आपकी। साथियों, हमें पानी की बर्बादी को हर हाल में रोकना होगा। नल को खुला ना छोड़ें और यदि कहीं रास्ते में भी कोई नल अगर खुला दिखे तो उसे भी बंद कर दें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, ये सोचकर इसकी रक्षा करें। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से शुरू हुआ ये कारवां आज हर घर नल योजना के जरिए देश के करोड़ों घरों में खुशहाली की धार बनकर बह रहा है। साथियों, साफ पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि हमें एक स्वस्थ जीवन भी देता है, बच्चों को बेहतर भविष्य देता है और गाँव को आत्मनिर्भर बनाता है। तो इसलिए श्रोताओं, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ें कि पानी की हम एक एक बूंद बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि जल सुरक्षित रहेगा तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा और जब हर घर में शुद्ध जल होगा तभी हमारा भारत सचमुच उन्नत और आत्मनिर्भर होगा।

और अब इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5:10 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार, थाना कोतवाली शहर बिजनौर, उत्तर प्रदेश से मिली सूचना के आधार पर रवि कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी ग्राम बाखरपुर गढ़ी, थाना कोतवाली शहर बिजनौर, बीती 21 जुलाई 2026 को अपने घर से दिल्ली काम करने के लिए निकला था, जिसका काफ़ी खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर बिजनौर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। गुमशुदा रवि कुमार का हुलिया कुछ इस प्रकार है। कद 5 फुट 6 इंच, इकहरा बदन, रंग गेहुआ, उम्र 22 वर्ष तथा आंख, कान और नाक औसत हैं। इसके अलावा बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत इस्लामपुर दास रोड जीडी हॉस्पिटल के पास लक्ष्मीनगर की रहने वाली 31 वर्षीय भावना वर्मा भी लापता हैं। भावना वर्मा पुत्री राजेंद्र कुमार वर्मा बीती 26 जुलाई 2026 की सुबह करीब 7 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। काफ़ी तलाशने के बाद भी भावना का कोई पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर बिजनौर में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। भावना वर्मा का हुलिया कुछ इस प्रकार है। उम्र

31 वर्ष, कद 4 फुट 10 इंच, रंग साफ, आंख नाक और कान औसत हैं। उक्त दोनों गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया इन फोन नंबर्स पर सूचित करें। पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर का मोबाइल नंबर है 9454-01531। थाना प्रभारी का नंबर है 9454-03132 और उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार का नंबर है 7409042298। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर का नंबर है 9454-01531, थाना प्रभारी का नंबर है 9454-03132 और उपनिरीक्षक का नंबर है 7409042298। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा युगराज सिंह की गाई शब्द। कानून की बात हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:32 पर। विविधा के अंतर्गत शाम 6:45 पर जेरीन के थॉमस की वार्ता का विषय होगा मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा। शाम 6:05 पर कृषिगत कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वेश कुमार से नरेश पाल सिंह की बातचीत का विषय रहेगा सर्दियों में फूलों की बुआई। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर और रात 10 बजे सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कंट्री वाइड और इनसाइट्स, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। कल शाम 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे संदेश टू सोल्जर्स। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:50 पर और जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे सुनिएगा स्नेह दत्त द्वारा लिखित रेडियो नाटक अपराधी कौन। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वालियां। कृषिगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनिएगा एक नाटक, शीर्षक होगा उजाले की ओर। आलेख आलोक कुमार का है, निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। युवाणी कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 5:15 पर। कल शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में जानकारी आपको देंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आपको सुनवाए जाएंगे रुहेलखंडी लोकगीत विविध कलाकारों की आवाज़ों में। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 7:31 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर। और महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर निर्मल से प्रियंका त्यागी की बातचीत जिसका विषय रहेगा गर्भावस्था और संचारी रोग। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: रेडियो की धुन में जब आपका साथ मिलता है तो हर पल कुछ खास लगता है। आप सुनते रहें बस इसी तरह, क्योंकि आपके बिना ये सफर अधूरा लगता है।
1: जी हाँ दोस्तों, ये सफर आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। और कहते हैं ना, रेडियो सिर्फ आवाज सुनने का जरिया नहीं है, ये तो दिल तक पहुंचने वाला एक खूबसूरत रिश्ता है।

0: बिल्कुल, और इसी रिश्ते को निभाने के लिए हम हर रोज आपसे जुड़ जाते हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी के जरिए। और आज आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: हेलो दोस्तों, शिवानी और आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट रुमान परवीन। तो दोस्तों, आज आपके लिए प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं डेली की तरह एक सवाल। जी हाँ, बूझो तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत
0: और रहेगा कुछ खास है आज, और साथ ही होगा आज वेनेसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हम स्टूडियो से बाहर जाकर करेंगे अपने दोस्तों से बातचीत और जानेंगे उनसे उनके व्यूज।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले शिवानी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की अपने पूछो तो जाने सेगमेंट के सवाल के साथ में। जी हाँ, आज हमारा सवाल रहेगा आपसे दोस्तों, फ्री किक शब्द का संबंध किस खेल से है?
0: और इस सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: और दोस्तों, जब तक आप करते हैं ये छोटा सा काम, तब तक हम आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये पहला खूबसूरत सा गीत।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
9: पापा, पापा सुनो ना।
8: क्या हुआ बेटा?
9: पापा मुझे मच्छर काट रहे हैं।
8: बेटा कमरे की लाइट बंद कर दो, मच्छर नहीं काटेंगे फिर।
9: ठीक है पापा, कर दे लाइट बंद।
8: हाँ देखना, अब नहीं काटेंगे मच्छर।
9: पापा पापा पापा देखो, मच्छर बहुत चालाक है, वो टॉर्च लेके आ गए। देखो वो चमक रहा, वो चमकता हुआ उड़ कर आ रहा।
7: जी हाँ, मजा आ गया।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी, जिसमें अब वक्त है कुछ खास है आज का, जिसमें आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत शब्द की जो सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक सोच है। जी हाँ, समानता।
10: जी हाँ दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस। दोस्तों कहते हैं ना, एक महिला को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, वो सिर्फ खुद नहीं आगे बढ़ेगी बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे लेकर चलेगी।
8: दोस्तों एक बेटी को पढ़ने का मौका मिले, एक महिला को अपने करियर का फैसला खुद लेने का अधिकार मिले, घर में माँ के काम को भी काम समझा जाए और ऑफिस में महिला को उसकी मेहनत के मुताबिक समान अवसर मिले, यही तो है असली समानता।
10: जी हाँ दोस्तों, समानता का मतलब महिलाओं को पुरुषों से ऊपर करना नहीं है, समानता का मतलब दोनों को बराबर अवसर देना। क्योंकि याद रखिए, समानता किसी की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की होती है।
8: दोस्तों एक महिला सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाती है, वो बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, दोस्त है और सबसे बढ़कर वो अपने सपनों और अपनी पहचान बनाने वाली एक स्वतंत्र इंसान है। इसलिए महिला को सिर्फ समान और सम्मान देने की बात मत कीजिए बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने का समान अवसर भी दीजिए।
10: दोस्तों एक सबसे जरूरी बात कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सपने देखे हैं और उन सपनों से समझौता ना करना पड़े क्योंकि वो एक लड़की है। दोस्तों हम अक्सर बेटियों को किसी से कम नहीं कहते या फिर हम ये बात बोलते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है, लेकिन अक्सर हम इस बात पर पूरी तरह खड़े नहीं उतर पाते। तो अब वक्त आ गया है कि हमें इस सोच को अपने अंदर उतारना है।
8: और समानता की शुरुआत किसी बड़े मन से नहीं होती दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। कभी कभी एक बेटी से सिर्फ इतना कहना ही काफी होता है कि तुम कर सकती हो और हम तुम्हारे साथ हैं।
10: तो दोस्तों आज अपने आसपास की

हर एक महिला को सिर्फ हैप्पी वुमेन्स इक्वालिटी डे विश मत कीजिएगा, बल्कि उसके सपनों को समझिए, उसकी मेहनत को पहचानिए और हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करते रहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत यहीं तक है कुछ खास के अंदर। अब हम आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये खूबसूरत सा गीत।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स

0: लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: दोस्तों, अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है कहानी के उस पार सेगमेंट का, जिसमें आप सुन रहे हैं इस हफ्ते बड़े भाई साहब कहानी तौहीद की आवाज में। जी हाँ, जिसका आज हम सुनेंगे एपिसोड 3। तो चलिए सुनते हैं कहानी का ये भाग।

0: तो दोस्तों आज हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां आसमान में पतंगें उड़ रही हैं, और जब पतंग आसमान में उड़ती है तो उसे देखने वाला कौन होगा? बिल्कुल सही कहा, हमारा छोटा भाई। एक दिन छोटा भाई बाहर निकला। आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी, लाल, पीली, नीली, हरी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी और कुछ इतनी ऊंची कि लग रहा था जैसे बादलों को छू लेंगी। छोटे भाई की आंखें चमक उठी, वह पतंगों को देखने लगा। तभी एक पतंग कट गई, बच्चों की आवाज, वो कटा। छोटा भाई निकला बाहर भागते हुए पतंग के पीछे दौड़ने के लिए, लेकिन पीछे से आवाज आई, छोटे। छोटा भाई रुक गया, उसने पीछे देखा, बड़े भाई साहब खड़े थे। उसने कहा, जी भैया।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: जी पतंग देखने।
1: और पढ़ाई?
0: छोटा भाई फिर से चुप हो गया। बड़े भाई साहब फिर समझाने लगे। उन्होंने समझाया,
1: अगर तुम हर समय खेलोगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा कैसे पास करोगे? और अगर सिर्फ परीक्षा पास करना ही जिंदगी का लक्ष्य समझ लिया तो आगे क्या करोगे?
0: छोटा भाई चुपचाप सुनता रहा। बड़े भाई साहब की बातें लंबी थी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि अगर आप होते तो शायद बीच में ही जमवाई लेने लगते। लेकिन बड़े भाई साहब को लगता था कि वे छोटे भाई को जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। बड़े भाई साहब अक्सर अपनी उम्र का भी जिक्र करते थे। वे कहते,
1: मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं।
0: और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लगता था कि 5 साल ज्यादा उम्र होने का मतलब है 5 साल ज्यादा समझदारी, 5 साल ज्यादा अनुभव और हर बात में सही होना। छोटा भाई मन में सोचता था, लेकिन भैया भी तो कभी कभी गलत हो सकते हैं। लेकिन वह यह बात बोलता नहीं था क्योंकि उसे डर था कि कहीं एक और लंबा भाषण सुनने को ना पड़ जाए। और फिर ऐसे ही समय बीत गया। फिर परीक्षा आई और नतीजा आया, छोटा भाई पास हो गया। और बड़े भाई साहब इस बार भी सफल नहीं हो पाए। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि भैया ने इतनी मेहनत की थी फिर भी वे पास नहीं हुए। अब छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसे लगा शायद मेहनत हमेशा एकदम रिजल्ट नहीं देती। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। एक दिन छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई साहब खुद आसमान की तरफ देख रहे हैं। वहां पतंग उड़ रही थी। बड़े भाई साहब कुछ देर उसे देखते रहे। छोटे भाई ने उन्हें देखा और उसके मन में एक छोटी सी मुस्कान आई। वह समझ गया था, अच्छा तो भैया को भी पतंग अच्छी लगती है। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा छिपा रहता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। बड़े भाई साहब भी कभी छोटे रहे होंगे, उन्होंने भी खेला होगा, उन्होंने भी पतंगे देखी होंगी। लेकिन अब वे अपने छोटे भाई को जिम्मेदार बनाना चाहते थे। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बड़े भाई साहब के दिल में अपने छोटे भाई के लिए कितना प्यार था।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: पप्पू
4: जी। मैम।
3: पप्पू, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम बातें करने में लगे हो।
4: मैम।
3: हाँ बोलो, क्यों कर रहे हो बातें?
4: मैम, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं और आप हमें पढ़ाने में लगी हो
0: है? जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं और कुछ चीजों की तलाश हमें उम्र भर रहती है।
3: दोस्त, अब आप सोच रहे होंगे कि शिवानी क्या कहे जा रही है।

0: बात है ऐसी, आज शुरू हो रही है हमारी रहस्य सीरीज। जी हाँ, रहस्य सीरीज का सीजन 2 और कहानी का नाम होगा तलाश, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड 1।
1: जी हाँ, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथी आदिल सैफी। तो दोस्तों, देखते हैं आखिर ये तलाश हमें कहाँ ले जाती है। क्या हर तलाश का कोई मुकाम होता है या कुछ राज हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं? तो जानने के लिए सुनिए एपिसोड नंबर 1।
2: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है तलाश और यह है रहस्य सीरीज की पहली कड़ी यानी एपिसोड नंबर 1।

कहानी शुरू होती है 23 नवंबर सन 2011 में पुणे शहर की भीड़भाड़ से दूर, जहां सन्नाटे को सिर्फ बच्चों के शोर और बैट से टकराती हुई गेंद की आवाज तोड़ रही थी। खेल अपने पूरे शवा पर था, हवा में उड़ती धूल और जीत का जुनून हर बच्चे के सिर पर सवार था। तभी एक लड़के ने अपना पूरा जोर लगाकर बल्ला घुमाया और एक जोरदार टक की आवाज के साथ पुरानी लेदर की गेंद हवा को चीरती हुई सीधे मैदान के आखिरी छोर पर होगी घनी और कंटीली झाड़ियों के पार जा गिरी। खेल अचानक रुक गया। हार मानते हुए एक छोटे और मासूम बच्चे को वो गेंद ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया। जैसे जैसे वो बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से उन कंटीली झाड़ियों के करीब पहुंचा, पीछे मैदान पर शोर रहस्यमय ढंग से धीमा पड़ने लगा। मुशली के उस सुनसान हिस्से में झाड़ियों के पास एक अजीब सी और डरावनी सी खामोशी पसरी हुई थी। बच्चा डंडे से सूखी हुई घास हटाते हुए अपनी लेदर की गेंद तलाश रहा था। सहाद्री की पहाड़ियों की तरफ से आ रही हवा में यूं तो हल्की सी ठंडक थी, लेकिन वहां उस झाड़ी के पास हवा में लोहे के जंग और खून की एक अजीब सी गंध तैर रही थी। सूरज की किरणें भी उन घनी झाड़ियों को कोई तरह भेद नहीं पा रही थी। तभी उस बच्चे की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी। झाड़ियों के ठीक बीचों बीच सूखी मिट्टी पर कोई गेंद नहीं थी, बल्कि एक इंसान का शरीर औंधे मुंह पड़ा था। वो शरीर कबीर का था। कबीर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटर था, या आम शब्दों में कहें तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसकी जैकेट पूरी तरह कट फट चुकी थी और जमीन उसके खून से सनकर लाल की जड़ में बदल चुकी थी। कबीर की सांसें इतनी खामोश और धीमी थी कि वो महज एक बेजान लाश लग रहा था। उस खौफनाक मंजर को देखकर बच्चे का दिमाग सुन हो गया। कुछ पल तक वो बस उस खून से सने शरीर को देखता रहा और फिर उस शांत दोपहर का सीना चीरते हुए उस बच्चे के हलक से दहशत से भरी एक जोरदार चीख निकली, जिसने मुशली के उस इलाके को दहलाकर रख दिया। अब आपके मन में भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर वहां क्या चल रहा था और कबीर को किसने मारा और क्यों। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारे युवाणी प्रोग्राम को। हम मिलेंगे आपसे कल इस कहानी के अगले एपिसोड में।

0: दोस्तों, अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए आपको कल जरूर सुनना पड़ेगा रहस्य सीरीज को। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में थोड़ी से आगे, और अब वक्त हो चला है हमारे वेंसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट का। तो चलिए सुनते हैं यूथ कनेक्ट।
1: तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी साथी शिवानी, और मेरे साथ हैं बहुत प्यारी सी साथी रुमान, और हम दोनों आए हैं स्टूडियो से बाहर अपने युवा साथियों से बातचीत करने, उनसे कनेक्ट करने के लिए अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत।
0: जी हाँ दोस्तों, उसमें होने वाले हमारे चार सब सेगमेंट। जी हाँ, हमारा पहला सब सेगमेंट होगा समय की सैर, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड। वहीं दूसरा सब सेगमेंट होगा हूबहू, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर हमारे दोस्त किसको आइडियलाइज करते हैं और किसकी तरह हूबहू बनना चाहते हैं।
1: और तीसरा सब सेगमेंट होगा हमारा गलत है तो सही है। जी हाँ, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम अपने दोस्तों से करेंगे सही सवाल और उनको देना होगा उसका गलत जवाब। और हमारा चौथा सब सेगमेंट है अरे दीवानो मुझे पहचानो, जिसमें हम जानेंगे अपने दोस्तों से उनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत।
0: तो दोस्तों, चलते हैं मिलने अपने दोस्तों से। तो शिवानी आ गए हम स्टूडियो से बाहर अपने साथियों से करने बातें, और हमारे

0: तो साथ ही भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्यों ना जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
1: मनु।
0: मनु कैसी हैं आप?
1: सही हो।
0: सही हो। तो मनु, हम आपको बता दें कि हम आपसे जुड़े हैं आज हमारे सेगमेंट समय की सैर में, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में। बेसिकली हम आपसे पूछेंगे, अगर आप अपने पास्ट लाइफ में जाके कुछ चेंज करना चाहें, उस टाइम पे ये ना करके मैं ये डिसीजन लेती तो आज शायद कहीं और होती, तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का?
1: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी जो है ठीक है।
0: तो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना चाहती?
1: नहीं।
0: ये भी सही है शिवानी वैसे।
2: हाँ बिल्कुल। और ऐसे पता है रुमान, बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हमें कोई चेंज ही नहीं करना अपनी लाइफ में, अगर हमें मौका भी मिले।
0: बिल्कुल सही। वैसे मनु, चलो पास्ट लाइफ में तो नहीं करना चाहते, इन फ्यूचर आप कुछ हासिल करना चाहती हैं?
1: हाँ, मींस कि आगे के फ्यूचर के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आई विश कि मैं वो बन जाऊँ।
0: शिवानी देख रही हो तो हमारे साथ ही कितने ज्यादा पैशनेट है अपने करियर को लेकर। आई होप कि आपकी ये कामना जरूर पूरी हो और आप अपने फ्यूचर में जो हासिल करना चाहती हैं वो जरूर बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: तो रुमान, अब हम चलते हैं अपने दूसरे साथी की ओर जो कि हमें मिल गई हैं। हेलो साथी, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम कुमकुम है।
2: कुमकुम, कैसी हैं आप?
3: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुमकुम, हम आपसे जुड़े हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत। हमारा सेगमेंट है कुमकुम हूबहू, और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हूबहू मतलब ठीक उसी के जैसे बनना। तो जिंदगी में अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी को किसी से एक्सचेंज करना चाहें तो किसके साथ करेंगे?
3: मेरा इंटरेस्ट रिसेंटली अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया है। मैं अभी, मेरा रिसेंटली MBBS कम्प्लीट हुआ है। मैं अभी फिलहाल नोएडा इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो मेरा है इन फ्यूचर में कि मैं MBA वाले फील्ड में अपना अच्छा ग्रोथ करूं या फिर मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकूं।
0: कि आप हूबहू किसकी तरह बनना चाहती हैं? किसी एक शख्स की तरह, कोई एक बॉलीवुड स्टार, या फिर कोई एक आपका फैमिली मेंबर, या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। तो जरा आप अपने आइडियल के बारे में तो हमारे दोस्तों को बताइए।
3: आइडियल अगर कहना चाहें तो मैं अपनी मम्मी के काफी अच्छी, मतलब एक दोस्त की तरह हूँ। मेरी मम्मी एक टीचर है तो मैं उनके जैसा भी बनना चाहती हूँ।
0: बहुत खूब। वैसे शिवानी, देखा जाता है अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं,
2: और वो ज्यादातर लड़कियां अपनी मम्मी की तरह ही बनना चाहती हैं, है ना। तो अच्छा लगा सुन के कुमकुम,
0: थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू आपका भी।
0: तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने अगले साथी की और, सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
4: संजना।
0: संजना कैसी हैं आप?
4: अच्छी हूँ।
0: तो संजना, हम आपको बता दें कि हम आपसे जुड़े हैं हमारे सेगमेंट यूथ कनेक्ट के सब सेगमेंट गलत है तो सही है, जिसमें हम सवाल पूछेंगे आपसे बिल्कुल सही और आपको जवाब देना होगा बिल्कुल गलत। तैयार हैं आप?
4: हाँ।
0: ठीक है, तो हमारा आपसे सवाल रहेगा, गाय क्या पीती है?
4: दूध।
0: हमें बताइए आसमान का रंग कैसा होता है?
4: ब्लैक।
0: ओके, आप हमें बताइए कि शॉपकीपर में कितने ई आते हैं?
4: 5।
0: और आप हमें बताइए जनवरी से पहले क्या आता है?
4: दिसंबर।
0: आप हार गई हैं क्योंकि जनवरी से पहले दिसंबर ही आता है। आपको गलत जवाब देना था। हमें आपके साथ ये गेम खेल के बहुत मजा आया, थैंक यू।
2: तो रुमान, हमें एक और प्यारी सी साथी मिल गई है। हेलो दोस्त, आपका नाम क्या है?
5: रिया।
2: रिया, तो रिया, हम आपसे जुड़े हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमारा सब सेगमेंट होता है गलत है तो सही है, यानी हम आपसे पूछेंगे सही सवाल और उसके आपको देने हैं गलत जवाब। तो आप तैयार हैं?
5: जी।
2: तो आप हमें बताइए सूरज किस दिशा से निकलता है?
5: पश्चिम।
2: ओके, पानी का रंग कैसा होता है?
5: लाल।
2: घास का रंग बताइए कैसा होता है?
5: ब्लैक।
2: 2 के बाद क्या आता है?
5: 8।
2: आपका नाम क्या है?
5: सोनम।
2: बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं आप। अच्छा ये बताइए, कुत्ते की 4 टांगे होती हैं तो पैरट की कितनी होती है?
5: 8।
2: अरे वाह।
0: अच्छा तो अब आप हमें बताइए कि तीनों खानों में से, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में से आपकी फेवरेट कौन से है?
5: आमिर खान।
0: और आप गेम हार गई हैं, आपको खान नहीं बताने थे, आपको किसी भी और एक्टर का नाम लेना था। वैसे हमें ये गेम खेल के बहुत मजा आया, और शिवानी देख रही हो आज हमारी दोनों ही साथ ही हार गई हैं गेम। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
5: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, आ गए हम अपने अगले साथी के पास, सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
6: सौरभ सिसोदिया जी।
0: तो सौरभ, आज हम आपसे मिले हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के सब सेगमेंट अरे दीवानों मुझे पहचानो में, जिसमें हम आपसे जानेंगे आपकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। तो जरा हमारे लिसनर्स को बताइए अपनी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। पहले आप अपनी अच्छी आदत बताइए।
6: किसी पर भी विश्वास करना।
0: ओके, और एक बुरी आदत?
6: बुरी आदत यह है किसी की एडवाइस को एक्सेप्ट ना करना।
0: तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक बुरी आदत है? या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में कि आपने किसी की एडवाइस ना मानी हो और आपको नुकसान हुआ हो?
6: मैंने किसी की एडवाइस ना मानने पर मुझे नुकसान हुआ है ना, तभी तो मैं बोला वो मेरी एक गंदी आदत है।
0: अच्छा ठीक है, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का यूथ कनेक्ट सेगमेंट। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही मजेदार सेगमेंट के साथ आपसे

0: तो दोस्तों अब वक्त है, हमने आपसे जो बूझो तो जाने के अंतर्गत सवाल पूछा था उसका सही जवाब हमें किन किन साथियों ने लिखकर भेजा है। तो हम आज का हमारा सवाल था आपसे, फ्री किक शब्द का संबंध किस खेल से है?
1: और दोस्तों इसका सही जवाब है फुटबॉल। अब देखते हैं सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। पुनराजी नाहवकर, विष्णु टेलर, वीरेंद्र भयान, विठल सुरु शेव, फानिश कुमार, दोमन ठाकुर, नानक खन्ना, साथ ही अनिल विनोचा, दिनेश ताज अंसारी। तो दोस्तों ये तो थे सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। अब हम चलते चलते सुन देते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए, और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763,
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है @आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले, कहानियां और आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। इसी के साथ दीजिए अनुमति मुझे रुमाल
0: और शिवानी को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779831316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फर

0: गोरखपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। कहिए किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके? भैया आपके हाल चाल बढ़िया होंगे और आपका काम धाम भी बढ़िया चल रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और भाई देखिए, अब जो है हमारे किसान भाइयों की फसल खेतों में लहला रही हैं, चाहे आप धान की फसल की बात करें या गन्ने की फसल की बात करें। और भाई गत वर्षों की अपेक्षा इस बार हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं उनकी फसल में रोग अपेक्षाकृत कम लगा है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान भाई अपने गन्ने की फसल को देखकर खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि भाई गत वर्षों में बहुत ही गन्ने की फसल में हानि हुई थी। और जब अगस्त का महीना आता था तो हमारे किसान भाइयों की फसलें पली पलाई चौपट हो जाती थी। गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाता था, कुछ में टॉप बोरर लग जाता था जिसको हम चोटी बेधक कहते हैं। तो चोटी बेधक कीट भी इस बार कुछ कम है, और या फिर भैया हमें ये कहना चाहिए कि हमारे किसान भाई इनसे बचाव के तरीके बहुत बेहतर तरीके से अपना रहे हैं। खैर भैया, किसान भाई भाई वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला है वो भी मट्टा फूंक फूंक कर पीता है, फूंक मार के।

0: तो भाई किसान भाई अब चौकस हैं कि अपनी फसल में कोई रोग और कीट ना आए। और भाई अब हम बात करते हैं अपने खेत की मिट्टी की ताकत के लिए। तो खेत की मिट्टी की ताकत होती है भैया कार्बनिक पदार्थ से, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी भी ज़्यादा हमारी मिट्टी में होती है उतनी भी मिट्टी हमारी स्वस्थ कहलाती है। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम में यदि हम कंपोस्ट खाद की बात करें, तो कंपोस्ट की खाद कुछ किसान भाई बरसात के मौसम में बनाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में कंपोस्ट खाद बनाने में जो है कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, और खाद में अत्यधिक जिससे नमी न बढ़े या वर्षा का पानी न आए या कहीं से बहकर वर्षा का पानी न आए, इसलिए खाद को अधिक गीला होने से बचाएं और उसमें पानी जमा न होने दें ताकि पानी अपने साथ खाद के पोषक तत्व घोलकर ले जाने न पाए। और जिस ढेर या गड्ढे में खाद बना रहे हैं उसे तिरपाल से ढक दें और हवा के आवागमन का रास्ता रखें ताकि बदबू ना आए। और सड़े नहीं तो भैया उसमें लाभदायक जीव जो भी हैं वो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हवा अंदर आती जाती रहती है। और अच्छा खाद बनाने के लिए ये जरूरी है कि ऊंची जगह का हम चुनाव करें जहां पानी का जमाव न होता हो, और तिरपाल या छावा करके हम वर्षा का या अतिरिक्त जल पानी को रोकें। साथ में किसान भाइयों ये इस बात का ध्यान रखें कि धूप से जो नुकसान पोषक तत्वों का होता है वह भी रुक जाए। और कंपोस्ट खाद के ढेर में बीच में हम सूखी लकड़ियां या बांस लगाएं ताकि हवा अंदर जाती रहे। नमी को बैलेंस करने के लिए सूखे पत्ते, भूसा या गत्ता ज्यादा मात्रा में मिलाएं। किसान भाइयों, बरसात में जो है हम हर सप्ताह 2 बार खाद के ढेर को ऊपर नीचे करें ताकि खाद जल्दी और सही बने। इस प्रकार लगभग 2 महीने में कंपोस्ट खाद अपघटित होकर तैयार हो जाती है। यदि किसान भाइयों के पास समय है तो इसे 3 से 6 महीने तक सड़ने दें और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें तो हमें अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसान भाइयों, अब यदि हम इस खाद के फायदे बताएं तो इसके बहुत ही अप्रत्याशित फायदे हैं। जैसे कंपोस्ट खाद से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होती है और लाभदायक जीवाणु या सूक्ष्म जीवों की संख्या में इजाफा होता है। मिट्टी में रंध्रावकाश बढ़ता है जिससे पौधों को जड़ विकास के लिए अच्छी कंडीशन पैदा होती है। साथियों, ऐसी मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों के कारण फसल में कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, और भैया फसलों की जलमांग कम होती है जिससे हमारी लागत घटती है और मृदा का ताप नियंत्रित रहता है। हमारी फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और जो हमारा उत्पाद मिलता है उसकी कीमत भी हमें अच्छी मिलती है। तो कंपोस्ट खाद के ऐसे ही अनेक लाभ होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और भाई देखिए, हम अब कार्यक्रम में यहाँ पर एक विराम लेते हैं और आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद भैया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और भाई देखिए, अब हम कार्यक्रम में बात करते हैं अपनी खेती किसानी की। और आने वाला सीजन भैया देखिए इस खरीफ के बाद रबी का होता है, और रबी सीजन में यानी कि जाड़ों के सीजन में कुछ किसान भाई फूलों की खेती करते हैं। तो फूलों की खेती करने के लिए भैया हम अभी से ही यानी कि आने वाला जो हमारा समय है सितंबर का, और कुछ किसान भाई तो इस समय से ही फूलों की जो बुआई है वो शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसी के संदर्भ में अपने किसान भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है सर्दियों में फूलों की बुआई, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। तो भैया आइए करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत और सुनते हैं ये जानकारी।
3: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार जी, जो कि संयुक्त निदेशक हैं उद्यान विभाग में, और

0: प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, और आज आपसे बातचीत का विषय है सर्दियों में उगाने वाले जो फूल हैं उनकी खेती कैसे करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले मौसम में जब सर्दी होंगी तो अभी से ही जब हम किसी फूलों की खेती करेंगे तो कौन कौन से फूलों की हम बुआई करेंगे।
1: देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में जो बहुत सी ऐसी फूलों की खेती है जिनको किसान भाई कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन मुख्यतः जो किसान भाई खेती करते हैं उसमें गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, इनकी मुख्यतः पारंपरिक खेती किसान भाई करते हैं।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसकी जो बीज होता है तो किसान भाई इसका बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे प्रारंभिक अवस्था में?
1: बीज किसी सरकारी संस्थान से, जैसे आप जो किसान भाई अगर इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनके कोई नजदीक में कोई सरकारी संस्थान है,
0: जी
1: जैसे पूसा में, पूसा दिल्ली से बीज परचेज कर सकते हैं, और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतरगढ़ से बीज खरीद सकते हैं,
0: जी
1: और कुछ बीज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से भी
0: खरीद
1: मिल
0: सकते।
1: सकता है।
0: जी जी तो डॉक्टर साहब यदि हम गेंदे की बात करें तो
1: जी
0: गेंदे की कितनी प्रजातियां होती हैं और कौन सा गेंदा व्यावसायिक रूप से अच्छा होता है?
1: गेंदे की अगर हम बात करते हैं तो गेंदे की खेती के लिए जो अफ्रीकन गेंदा है, जिसको हम फ्रेंच गेंदा, पूसा, इसमें जो वेराइटी है पूसा नारंगी और पूसा बसंती,
0: जी
1: दो वेराइटी, ये प्रजाति दोनों ही व्यवसाय के स्तर पर बहुत अच्छी होती हैं, और वो व्यवसायिक खेती के रूप में पूसा नारंगी और पूसा बसंती दोनों प्रजाति ही बहुत अच्छी है किसान भाइयों के दृष्टिकोण से।
0: जी तो डॉक्टर साहब इसकी बुआई करते हैं हम या पहले नर्सरी तैयार करते हैं?
1: कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ किसान भाई हो सकता है कि बीज की बुआई सीधे ही अपने खेत में कर देते हों,
0: जी जी
1: लेकिन अच्छा वही रहता है कि किसान भाई अगर फूलों की खेती की सबसे पहले पौधशाला में पौध तैयार करें, और जैसे ही पौध लगभग 25 से 35 दिन के बीच में हो जाए, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 इंची के बराबर हो जाए और जिस पर 4 से 5 पत्तियां आ जाएं, वो पौध हमारी मुख्य खेत में रोपाई योग्य हो जाती है।
0: अच्छा अच्छा
1: और पौध लगाने का जो उपयुक्त समय होता है सर्दियों के सीजन में,
0: जी
1: उसको हम सितंबर अक्टूबर में, बहुत अच्छा समय होता है किसी भी फूल की खेती के लिए और पौधशाला में पौध डालने के लिए।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे हमने गेंदे की तो बात करी और गुलदाउदी और जो दूसरे पुष्प आप बता रहे थे अभी, तो उनकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो उन्नतशील प्रजातियां हैं?
1: जैसे अगर हम गुलदाउदी की बात करते हैं तो गुलदाउदी में दो व्यवसायिक जो हमारी किस्में हैं, जिसमें पूसा अनमोल और
0: जी
1: पूसा सेंटिनी, ये दोनों ही प्रजाति व्यवसाय के स्तर पर बहुत अच्छी उपज देती हैं।
0: जी
1: और इसका भी जो खेती करने का तरीका है, सबसे पहले इसकी पौध तैयार करें,
0: जी
1: और वो पौध तैयार करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो पौधशाला है वो पौधशाला हमारी जमीन के लेवल से थोड़ा सा करीब 15-20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई हो
0: जी
1: तो बहुत अच्छा रहता है।
0: अच्छा,
1: और उसमें हम पौधों को बीज की जो बुआई है लाइनों में बुआई करके, और एक जो दूरी है उसको मेंटेन करके उसकी बुआई बीजों की हम करें।
0: जी तो डॉक्टर साहब जब हम बीज बोएंगे तो किस तरीके से हम बीज बोएंगे, बीज की क्या हम थोड़ी बीज को कितनी गहराई पे बोएंगे?
1: बीज की जो गहराई है हम लगभग 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बीज को बोएंगे।
0: जी
1: और बीज जब बुवाई करते हैं तो ये किसान भाइयों को ध्यान देना है कि बीज जब बुवाई हम लाइन में करते हैं तो उसके पास वाली मिट्टी से बीज को बिल्कुल भी न ढके।
0: अच्छा,
1: उसके लिए आप हमेशा अलग से मिश्रण तैयार करें। उसमें आप अच्छा होगा कि आप ट्राइकोडर्मा,
0: जी
1: सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू ले लें, और उन तीनों का बराबर रेशियो में मिश्रण तैयार करके अलग से,
0: जी
1: उसमें बीज की बुवाई के बाद उसके ऊपर पतली लेयर सी उसकी बिछा दें
0: जी
1: मिट्टी।
0: जी अच्छा, क्या डॉक्टर साहब इसके बाद हम उसमें कोई पलवार वगैरह भी कर सकते हैं क्या?
1: पलवार भी कर सकते हैं, लेकिन पलवार को हम

0: बेसिकली हम गर्मियों के सीजन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो
1: अच्छा
0: गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है तो उस समय थोड़ा सा जो हमारा पानी है वो बाष्पीकरण के द्वारा
1: उड़ जाता है
0: जल्दी उड़ जाता है और उसकी वजह से हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सर्दियों के मौसम में फिर भी हम अगर चाहें तो उसके 4-5 दिन के लिए, जैसे जब तक अंकुरण न हो,
1: जी।
0: जब तक हम उसकी पलवार से ढक सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और डॉक्टर साहब, क्या सर्दियों के लिए इस समय जो आने वाला टाइम है सितंबर अक्टूबर का, उस समय हम जो गुलाब की खेती वो भी कर सकते हैं?
0: गुलाब की खेती कर सकते हैं। गुलाब की खेती तो बहुत अच्छी है, और
1: जी
0: गुलाब की खेती में जैसे आपकी ताजमहल वैरायटी है, रक्त
1: जी
0: गंदा है, मिरेकल है, गोल्डन सेवरस है,
1: जी
0: इन प्रजातियों का किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर
0: और
1: साहब,
0: नूर
1: एक एक प्रजाति पुरानी है, नूर जहां।
0: जहां बहुत अच्छी प्रजाति है, आपने बिल्कुल सही कहा। नूर जहां जो प्रजाति है, इस प्रजाति में हमारा जो तेल का परसेंट होता है, जिसको हम परफ्यूम बनाते हैं, जिसका इत्र बनाते हैं,
1: जी
0: उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नूर जहां वैरायटी बहुत अच्छी प्रजाति है
1: जी जी
0: गुलाब की।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये आपने बताया गुलाब, बताया गुलदावरी, गेंदा, इसके अलावा और कौन कौन से?
0: ग्लेडियोलस कर सकते हैं, ग्लेडियोलस की खेती भी सर्दियों के मौसम में, इसकी खेती भी बहुतायत से किसान भाई करते हैं।
1: अच्छा
0: और अगर जो किसान भाई जिनके पास इसकी मार्केट की व्यवस्था हो, जहां पर इसको अच्छी तरीके से वो बिक्री कर सकते हैं, तो
1: जी,
0: ग्लेडियोलस की खेती भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि
1: अच्छा,
0: जब सर्दियों का मौसम होता है, उस समय विवाह या कोई इस तरीके के समारोह होते हैं, उसमें ग्लेडियोलस, हमारी जो एक फूलों की एक खेती है, इसकी बहुत ही ज्यादा मांग होती है।
1: जी, इसके फूल भी बड़े होते हैं।
0: फूल भी बड़े होते हैं और इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है
1: जी
0: वो भी बहुत ज्यादा होती है।
1: जी जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फूलों की खेती करने से पहले क्या किसान भाइयों को इसका प्रशिक्षण करना चाहिए? नहीं,
0: अच्छा रहेगा किसान भाइयों को अगर थोड़ा सा 1-2 दिन की ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण इस तरीके का प्राप्त कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें हमारी जितनी भी इसकी खेती से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं होती है,
1: जी
0: उसकी उनको तकनीकी जानकारी मिल जाती है, तो खेती में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। कई बार समस्या के अभाव में किसान भाई उसको थोड़ा सा गलत कर लेते हैं, तो
1: जी
0: अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें तो ज्यादा अच्छा है। प्रशिक्षण
1: ऐसा प्रशिक्षण इसका कहाँ पे हो सकता है?
0: किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर, अगर कोई जो भी किसान भाई उनके पास कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के फूलों की खेती से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगर
1: जी
0: उनके पास में कोई कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और कोई प्रशिक्षण नहीं भी चल रहा है, तो किसी भी उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ के पास जाएंगे, तो उनको फूलों की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी
1: मिल
0: मुहैया
1: जाएगी।
0: कराएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यदि हम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बात करें,
0: जी,
1: तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि हम गेंदे की बात करें, तो कितना बीज पर्याप्त होता है?
0: गेंदे का 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों को प्रजाति के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता
1: होती
0: पड़ेगी।
1: है। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे हम अन्य फसलों में खाद और उर्वरक डालते हैं, तो क्या हम फूलों की खेती के लिए भी अपने खेत में खाद और उर्वरक डालेंगे?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को एक खाद एवं उर्वरक डालने से पहले मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा।
1: जी
0: यदि किसान भाई उनके नजदीक में कोई कृषि विभाग का ऑफिस है, जहां पर उनका मृदा का परीक्षण हो सकता है, तो
1: जी जी
0: मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं खाद एवं उर्वरक डालने से पहले।
1: जी
0: अगर उनके खेत में ये पता चल जाए कि उनके जो मिट्टी है, उसमें उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, और जो पहले फसल ली थी कौन सी फसल ली थी, और उस फसल की कटाई के उपरांत तो उस मिट्टी में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, और कितने परसेंट उसमें पोटाश की मात्रा शेष है,
1: जी
0: उस मात्रा को घटाते हुए किसान भाई देंगे तो एक तो पैसे की बचत होगी।
1: जी
0: तो किसान भाइयों को ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और इसमें अगर किसान भाई इसे कराने में असमर्थ हैं, उनके
1: जी
0: पास कोई असुविधा है या नहीं करा सकते, तो
1: जी

0: पर इसकी खाद एवं उर्वरक की बात करी जाती है तो हम लगभग 150 से और 250 कुंटल पर हेक्टेयर हम इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद देंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग हमारी करीब 1-1.5 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए।
1: अच्छा
0: और नत्रजन की बात करें तो नत्रजन हम 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
1: जी।
0: फॉस्फोरस 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
1: जी
0: पोटाश भी 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
1: जी
0: इसमें से फॉस्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय, मतलब उसकी जब हम पौध की मुख्य खेत में रोपाई करेंगे उस समय मुख्य खेत में हमें रोपाई से पूर्व डाल देनी है।
1: जी
0: नत्रजन की हमें 1/3 मात्रा बुवाई के उसमें रोपाई के समय, और जो दो शेष मात्रा बचेगी उसको हम लगभग 40 दिन 35 दिन के अंतर पर दो स्प्लिट डोजों में
1: जी
0: और दे देंगे। तो हमारी जो फूलों की खेती है उसमें खाद एवं उर्वरक की समस्या नहीं रहेगी।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अब हमने खेत में रोपाई भी कर दी है, तो रोपाई के बाद क्या निराई गुड़ाई और सिंचाई पर हमें ध्यान देना पड़ेगा?
0: बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम सिंचाई की बात करते हैं रोपाई के बाद, तो सर्दियों के मौसम में सामान्यतः हम लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते हैं,
1: जी
0: और अचानक बरसात हो जाती है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी
0: और नहीं, सामान्यतः हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। और एक चीज और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो भी हम खेती फूलों की करें तो हमें पौधे की जो सामान्य जो दूरी होती है पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी,
1: जी
0: उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी इन फूलों में कितनी होनी चाहिए?
0: जैसे हम गेंदे की बात करते हैं, जो हमारी पारंपरिक खेती हम किसान भाई जो करते हैं पारंपरिक खेती में, जैसे गेंदा है तो गेंदे की हम सामान्यतः जो दूरी है 45x45 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर
1: और लाइन से लाइन।
0: और लाइन से लाइन की दूरी भी 45 सेंटीमीटर।
1: जी
0: इसी तरीके से गुलदाउदी में भी हम पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और
1: जी
0: लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर।
1: जी
0: और अगर हम ग्लेडियोलस की बात करते हैं तो ग्लेडियोलस में पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको दूरी को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यदि हम गुलाब की बात करें तो गुलाब में ये किस तरह से होगा दूरी?
0: गुलाब में वो प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी प्रजाति बहुत ज्यादा फैलने वाली है या प्रजाति कम फैलने वाली है,
1: जी
0: उसमें उसकी प्रजाति के आधार पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी को हम रखेंगे।
1: जी जी तो सामान्यतः औसत कितनी हम उसकी अंतरण रखेंगे लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी गुलाब की विषय में?
0: गुलाब के विषय में लगभग हम 75 सेंटीमीटर से और एक से एक 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में दूरी को मेंटेन करेंगे।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, गुलाब में हमने सुना है कि कटाई छटाई भी होती है।
0: हाँ, गुलाब में देखिए, एक हम जब गुलाब की खेती करते हैं तो गुलाब की खेती में हम अक्टूबर के महीने में उसकी रूट की जो हम एक तरीके से होती है छटाई करते हैं, जो उसकी जड़ों की छटाई है।
1: जी
0: अक्टूबर में हम जब गड्ढा खोद के उसकी जड़ों की, उसको हम रूट प्रूनिंग बोलते हैं, और रूट प्रूनिंग करने के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। थोड़ी थोड़ी जड़ें उसकी जो प्राइमरी रूट होती हैं उनको हम उसमें से निकाल देते हैं, और
1: अच्छा
0: प्राइमरी रूट को निकालने के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें हम 10 से 15 दिन बाद सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके उस गड्ढे को भर देंगे। उसके
1: जी
0: बाद उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है उस पर बहुत अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होगी, और
1: अच्छा
0: साथ ही साथ उस पर जो फूल की गुणवत्ता है, फूल की गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा सुधार होगा।
1: अच्छा और डॉक्टर साहब, जो ऊपर हमारा पेड़ बड़ा हो जाता है, ऊपर से हम कोई कटाई छटाई नहीं करते? जी
0: ऊपर से भी हम पौधे की बढ़वार के ऊपर अगर कोई डाली सूख रही है या फिर उसकी बहुत ज्यादा बढ़वार ऐसी हो रही है कि जिस पर फूल हमें लग रहा है कि फूल इस साइड में नहीं आएगा, तो हम उनकी भी एक तरीके से ट्रेनिंग कर देते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं बीमारी और कीटों की।
0: जी
1: तो क्या फूलों की खेती करते समय हमारे किसान भाइयों की फसल में, फूलों की जो फसल उनकी होती है, उसमें कोई कीट या बीमारी भी लगती है?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों के लिए। जैसा

0: अभी आपने कहा कि फूलों की खेती में कुछ कीट एवं बीमारियां भी लगती हैं। देखिए किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं बताऊं जो हमारी फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती में मुख्यतः जो कीट है हमारा, जो एफिड होता है जिसको माहू बोलते हैं किसान भाई, उस माहू का प्रकोप होता है। और ये माहू का काम है जो नई पत्तियां होती हैं, जो कोमल पत्ती होती हैं, और वो जो कोमल तना होता है उससे रस चूसता है, और रस चूसने के बाद उसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, और पौधे की जो वृद्धि होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो प्रभावित होती है। मुख्यतः
1: तो आमतौर पर सभी फूलों के पौधे में होता है माऊ।
0: ये कोमल पत्तियों में सभी फूलों में लगभग ये इसका प्रकोप देखा जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इसका हम नियंत्रण किस प्रकार करें?
0: इसका प्रबंधन हम अगर दवाइयों से, आज के दौर में अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो थोड़ा सा किसान भाइयों को ये लगती है कि सही नहीं होगा, तो हम
1: अच्छा
0: अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें पीले चिपचिपे जो ट्रैप होते हैं वो लगाए जाते हैं,
1: जी,
0: वो फेरोमोन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, और ये संक्रमित भाग इसमें से हम हटा देते हैं, और आवश्यकता होने पर इसमें जो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कोई कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीटनाशक इसके लिए एफिड के लिए है, माहू के लिए, उस कीटनाशक का 2 ml पर लीटर में सॉल्यूशन बना के उसका स्प्रे, इसके शुरुआती लक्षण जैसे ही दिखाई दे, इस कीट के प्रकोप जैसे ही दिखाई दे, उसी अवस्था में इसका प्रबंधन करना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा कीड़ा थ्रिप्स भी एक लगने की संभावना, और एक सफेद मक्खी, कई बार कुछ फूलों की खेती में लाल मकड़ी भी आ जाती है, तो ये कीड़े और रहते हैं, तो इनका प्रबंधन भी लगभग हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने माहू का किया है। और ये जो कीट हैं ये भी हमारी जो कोमल पत्ती होती हैं उनको नुकसान करते हैं, उनका रस चूसते हैं। और जो हम सफेद मक्खी की बात करते हैं तो एक तरीका ये का एक वायरस होता है, जैसे ये पौधे से रस चूस के पत्ती से और दूसरे पौधे पर बैठेगी, और उस पौधे पर बैठेगी तो जो वायरस होती है वो दूसरे उस पौधे से उस पौधे पर दूसरे पौधे पर फैला देती है, और एक के बाद एक पौधे की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ती जाती हैं और पौधा मुरझाने लगता है। तो इसका शुरुआती अवस्था में ही किसान भाई अगर प्रबंधन कर लेंगे तो उनकी जो खेती है वो प्रभावित नहीं होगी, उनकी उपज प्रभावित नहीं होगी, और किसान भाइयों को जैसे ही इसका शुरुआती अवस्था दिखाई देती है कीड़ों की, इनको तुरंत किसान भाइयों को इसका नियंत्रण करना चाहिए किसी विशेषज्ञ की सलाह से। इसमें जो हमारा उकता रोग होता है जिसको हम मुरझान भी बोलते हैं, इसको
1: जी
0: हम डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं, इसमें हम मुख्यतः देखते हैं जब हम पौधशाला में पौध डालते हैं तो कई बार पौधे जमीन के पास से गिरना शुरू हो जाते हैं,
1: जी
0: और ये जो बीमारी है ये एक तरीके से हमारी पौधशाला की बीमारी है,
1: अच्छा
0: और इसका नियंत्रण अगर सही से नहीं किया गया तो हमारी पौधशाला में पौध जो स्वस्थ पौध होनी चाहिए, स्वस्थ पौध तैयार नहीं होगी, और ऐसी जब हमारी स्वस्थ पौध नहीं होगी तो हमारी पैदावार और हमारी जो फूल की क्वालिटी है जो हम कुछ बात करते हैं वो अच्छी नहीं होगी।
1: जी
0: इसीलिए हमें अगर इस तरीके का जो उकता रोग है, इस तरीके की हमारी पौधशाला में अगर ये आता है तो
1: जी
0: उसका हमें ध्यान रखना है, और पौधशाला में कभी भी निचले स्थान पर पौध नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू में बताया था पौधशाला में पौध थोड़ी ऊंची होनी चाहिए,
1: जी
0: उसमें जल जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर उसको मृदा को जो जिसमें हम पौधशाला में पौध लगाएंगे वो अगर हमारी ट्राइकोडर्मा से हम उसको उपचारित कर लेंगे,
1: जी
0: और उसमें जो हम बीज बोएंगे बीज को भी हम अगर किसी फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेंगे तो हमारी ये बहुत सी समस्या उकता रोग से संबंधित समाप्त हो जाएगी।
1: जी तो
0: और
1: डॉक्टर साहब,
0: उसके साथ इसमें फसल चक्र और थोड़ा सा किसान भाई ध्यान रखें, फसल
1: जी
0: चक्र भी अगर अपने खेत में अपनाते हैं तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये बात जानना चाहूंगा कि हमारी जो ये फसलें हैं फूलों की, तो
0: जी
1: इन पौधों पर कितने दिनों में फूल आने लगते हैं रोपाई के बाद?
0: रोपाई के बाद लगभग, अब फूलों की खेती, जैसे फूलों की खेती की बात हो रही है तो इसमें लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच में हमारा फूल, अब वो फसल के ऊपर निर्भर करता है, तो
1: जी
0: लगभग आना शुरू हो जाता है। और हमें फूलों की क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम
1: जी
0: गेंदा है, गुलदावरी है, डहेलिया है,

0: इसमें हम एक पिंचिंग की क्रिया और करते हैं, जो
1: जी
0: ऊपर वाली उसका जो पोर्शन होता है उसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को,
1: जी चोटी
0: तो
1: वाले
0: वो
1: को
0: चोटी वाले पोर्शन को हम उसको तोड़ देते हैं, तो
1: जी
0: उससे हमारी ऊपर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, और जो हमारी पौधे की जो मुख्य ब्रांच होती है
1: जी
0: वो पौधे की अच्छी ग्रोथ करती है और उन पर अच्छा हेल्दी फूल आना शुरू हो जाता है।
1: जी जी तो ये पिंचिंग की बात आपने बहुत अच्छी बताई कि
0: जी
1: यदि हम ऊपर की चोटी तोड़ देते हैं तो शाखाएं साइड से निकल के हमें जो है अधिक संख्या में फूल मिलते हैं।
0: अधिक संख्या में फूल मिलते हैं।
1: तो डॉक्टर सर्वेश कुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे किसान भाइयों को आने वाली सर्दियों में फूलों की बुआई पर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये बातचीत सुनी और भैया आपने जाना कि डॉक्टर सर्वेश कुमार ने किस प्रकार से फूलों की खेती करना हमारे किसान भाइयों को बताया और जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। और भैया जब हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ती है तो मन होता है प्रसन्न और प्रसन्नता में मन करता है मनोरंजन को। जी हाँ, ये चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ब्रह्मदेव आर्य की ये प्यारी सी रागनी।

अभी भाइयों ने ब्रह्मदेव आर्य की आवाज में ये उपदेश परक रागनी सुनी। और भैया देखिए, रागनी में बिल्कुल सही बात निकल के सामने आई। और भैया मनोरंजन के बाद अब चलते हैं, आइए अपने कार्यक्रम में, खेती किसानी की ओर। किसान भाइयों देखिए, हम इस समय खरीफ की फसलों की निगरानी कर रहे हैं और ये बड़ी ही क्रांतिक अवस्था होती है, क्योंकि ये हमारी फसल इस समय उसका प्रतिफल आने को तैयार होता है। और जैसे हम यदि धान्य फसल की बात करें, तो जो हमारी धान की फसल है उसमें इस समय गर्भावस्था शुरू हो गई है। तो इस समय कुछ धान में यदि हमारे किसान भाई कीट और बीमारियों की निगरानी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और बीमारी की अपेक्षा हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जो धान की फसल में इस समय कीट होते हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसमें भैया जो गन्ने में हमारे, आपने सुना होगा, एक पुराना कीट है पायरीला, तो ये पायरीला नाम का कीट जो

धान की फसल की पत्तियों से भी रस चूसता है, जिस प्रकार से गन्ने की फसल से चूसता है। तो आप इसकी निगरानी रखें, और यदि इसकी तितलियां आपको दिखाई दें तो एक हल्का कीटनाशी होता है जिसको हम मिथाइल पैराथियन के नाम से जानते हैं। तो मिथाइल पैराथियन की आप 0.2% का घोल बना लें, तो इससे आप अपनी फसल में छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें, तो ये कीट भाग जाएगा या मर जाएगा और हमारी धान की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे किसान भाई अपने गन्ने की फसल का भी ध्यान रखें कि भाई देखिए, हमारे किसान भाई लगभग मार्च से और अब तक अक्टूबर तक अपनी गन्ने की फसल को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, और उसमें इतनी लागत लगाते हैं कि भाई सब कुछ दारमदार वेस्ट यूपी में गन्ने की फसल के ऊपर हमारे किसान भाई निर्भर होते हैं। तो भैया, गन्ने की फसल में आप जल भराव होने की समस्या जो होती है वो न होने दें, और ऐसी दशा हो तो अपने खेत का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि जल भराव से भी बहुत से रोग हमारी गन्ने की फसल में लग जाते हैं, और उसमें मुख्य रूप से फंगस का जो रोग है वो लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जो अगोला बेधक होता है, अगोला बेधक कीट भी इस समय अपना प्रकोप फिर से दिखा सकता है, तो उसकी भी आप जो है निगरानी रखें और उसके नियंत्रण की बात भी करें। आप चाहे आप बड़ा प्रकाश प्रपंच लगाएं या भाई अपना कोई ऐसा ड्रोन वगैरह से आप स्प्रे की व्यवस्था करें कि आपका जो कीट है वो समाप्त हो जाए। और भैया, अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले आपको हम अपने कार्यक्रम का पता बताते हैं ताकि आप हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से अवगत करा सकें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो पहले हमारा पता नोट करें कि हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467-63। और किसान भाई, यदि हमें अपना व्हाट्सएप संदेश भेजें तो और भी अच्छा है, और ज़्यादातर किसान भाई अब व्हाट्सएप संदेश ही भेजते हैं। तो जो किसान भाई व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहें वो हमारा नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर वही है, जाना पहचाना, 94-57-07-82-88। तो किसान भाई, इस नंबर पर हमें अपने व्हाट्सएप संदेश भेजकर अपनी हमें समीक्षा लिखकर भेज सकते हैं। और भाई, अब कार्यक्रम कृषि जगत यहीं पर संपन्न करने की अपने भाई नरेश पाल सिंह को अनुमति दें। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं। विविधा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए ये पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय है मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा। वार्ताकार हैं जेरीन के थॉमस।
1: मदर तेरेसा, जिन्हें पूरी दुनिया सेंट तेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जानती है, न केवल गरीबों और असहायों की सेविका थी बल्कि सच्चे अर्थ में मानवता की मिसाल भी थी। मदर तेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपचे नामक नगर में हुआ, जो उस समय युगोस्लोविया का हिस्सा था और आज उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है। उनका वास्तविक नाम था आग्नेस। उनके पिता का नाम निकोल, जो एक व्यापारी और समाजसेवी व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम था द्राना, जो बहुत ही धार्मिक और सेवा भावना से भरी महिला थी। परिवार में 3 भाई बहन थे। आग्नेस सबसे छोटी थी। उनकी माँ उन्हें अक्सर सिखाती थी, बिना प्रेम के कोई भी कार्य मूल्यवान नहीं होता। बचपन से ही एग्नेस में धार्मिक प्रवृत्ति दिखाई देती थी। वे चर्च की गतिविधियों में सक्रिय रहती, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती। जब वे मात्र 12

साल की थी, तभी उन्होंने पहली बार गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने का गहरा आह्वान महसूस किया। उन्हें विश्वास था कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। यहीं से शुरू हुई वह अद्भुत यात्रा जिसने उन्हें आगे चलकर मदर टेरेसा बनाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कोपचे के कैथोलिक स्कूल में प्राप्त की। वे पढ़ाई में तेज और अनुशासित छात्रा थी। इतिहास और भूगोल उनके प्रिय विषय थे। इसके साथ ही वे चर्च की प्रार्थनाओं और गरीबों की सेवा में गहरी रुचि लेती थी। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनके मन में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने की लालसा और गहरी होती गई। केवल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन को ईश्वर और सेवा के मार्ग पर समर्पित करने का निर्णय लिया। इसी बुलावे को स्वीकार करते हुए वे आयरलैंड गई और वहां लोरेटो नन्नों की संस्था में शामिल हुई। 1929 में वे भारत आई और दार्जिलिंग में अपनी धार्मिक प्रशिक्षण पूरा किया। यहीं पर उन्होंने सिस्टर तेरेसा का नाम धारण किया। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें कोलकाता भेजा गया, जहां वे लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुई। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने वहां बच्चों को पढ़ाया। वे अनुशासित किंतु स्नेही शिक्षिका थी। बच्चे उन्हें बहुत प्रेम करते थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को केवल किताबों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि करुणा, ईमानदारी और दूसरों की सेवा करने के संस्कार भी दिए। लेकिन श्रोताओं, जब वे स्कूल की खिड़कियों से बाहर कोलकाता की गलियों को देखती तो उनका हृदय द्रवित हो उठता। झुग्गियों में रहने वाले गरीब, भूखे और बीमार लोग उन्हें पुकारते प्रतीत होते। 1946 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने गहरे रूप में ईश्वर का बुलावा सुना, सबसे गरीब की सेवा करो। इसके बाद उन्होंने साहसिक निर्णय लिया। 1948 में उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ दिया और सीधे कोलकाता की झुग्गियों में उतरकर गरीबों और रोगियों की सेवा शुरू कर दी। सफेद साड़ी नीली किनारी के साथ पहनना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। 2 वर्ष कठिन संघर्ष में बीते। उन्होंने अकेले ही भूखों को भोजन कराना, रोगियों का देखभाल करना और अनाथ बच्चों को सहारा देना शुरू किया। 1950 में उनकी इस सेवा भावना को औपचारिक रूप देते हुए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई। इस नई संस्था का उद्देश्य स्पष्ट था, सबसे गरीबों में सबसे गरीब की सेवा करना। प्रारंभ में केवल 12 सहयोगी बहनें उनके साथ जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन गया। आज यह संस्था पूरी दुनिया में गरीबों, अनाथों, रोगियों और निराश्रितों की सेवा कर रही है। इस तरह श्रोताओं, एक साधारण सा अध्यापिका से वे पूरी मानवता की मां बन गई, हमारी मदर तेरेसा। मदर तेरेसा हमेशा कहती थी, मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकती, मैं केवल छोटे छोटे काम कर सकती हूं, लेकिन बहुत प्यार से। इसी भावना से उन्होंने गरीबों और असहायों की सेवा शुरू की। 1952 में उन्होंने कोलकाता में निर्मल हृदय आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम उन लोगों के लिए था जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, बीमार, मरते हुए, सड़क पर लावारिस पड़े लोग। यहां उन्हें भोजन, दवा, देखभाल और सबसे बढ़कर मानवता का सम्मान मिला। मदर तेरेसा स्वयं उनके घाव धोती और उन्हें गोद में लेकर दुलार देती और वे कहती थी, हर व्यक्ति को मरने से पहले यह महसूस करने का अधिकार है कि वह प्रिय है। भारत में कुष्ठ रोगियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मदर तेरेसा ने

0: उनके लिए शांति नगर की स्थापना की। वहां उन्हें चिकित्सा सुविधा, भोजन और पुनर्वास मिला। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ बैठकर भोजन किया और उनके घाव साफ किए। इससे लोगों में यह संदेश गया कि कुष्ठ रोगी भी सम्मान और प्रेम के पात्र हैं। उन्होंने निर्मल शिशु भवन खोला, जहां अनाथ, लावारिस और परित्यक्त बच्चों को आश्रय मिला। वहां उन्हें शिक्षा, भोजन और परिवार का स्नेह मिला। कई बच्चों को गोद लेकर नया जीवन देने की व्यवस्था की गई। मदर तेरेसा और उनकी बहनें रोजाना झुग्गियों में और गलियों में जाती, भूखों को भोजन कराती, बेघर लोगों को कपड़े और आश्रय देती। वे कहती थी, यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को कराइए। धीरे धीरे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं पूरे भारत और विश्व में फैल गई। आज 130 से अधिक देशों में हजारों बहनें और स्वयंसेवक गरीबों, रोगियों, कुष्ठ रोगियों, एचआईवी व एड्स से पीड़ित और बेघर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार मदर तेरेसा ने न केवल गरीबों को भोजन और दवा दी, बल्कि उन्हें सम्मान और प्यार भी दिया। उन्होंने सिखाया कि दया केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मदर तेरेसा के महान कार्यों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा और सम्मानित किया। उनकी करुणा, निस्वार्थ सेवा और गरीबों के प्रति समर्पण ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 1962 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। नॉर्वे की सांसद में जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, यह सम्मान मेरे लिए नहीं बल्कि उन गरीबों और असहायों के लिए है जिनकी मैं सेवा करती हूं। 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। वे हमेशा कहती थी, पुरस्कार मेरे लिए महत्व नहीं रखते, असली पुरस्कार है जब कोई भूखा भोजन पाकर मुस्कुराता है। मदर तेरेसा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, रोगियों और असहायों की सेवा में समर्पित किया, 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में 87 साल की आयु में इस संसार से विदा हो गई।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय था मानवता की सेवा को समर्पित मदर टेरेसा की जीवन यात्रा। वार्ताकार थे जेरीन के थॉमस। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, वक्त हो चला है 6:55 का। दिन ढल चुका है और रात अपनी मखमली चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो रही है, और ऐसे में यादों के झरोकों से कुछ बेहद खूबसूरत नगमे सीधे आपके दिल को छूने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले नगमे से। श्रोताओं, जब कोई शख्स हमारी ज़िंदगी का इस कदर हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना हर लम्हा अधूरा लगने लगे, तो दिल से बस यही एहसास जागता है, यही आवाज़ निकलती है, धड़कन में तुम हो, मेरी सांसों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी यादों में तुम हो, इस कदर रच गए हो मेरी बंदगी में, जैसे तुम ही तुम शामिल हो मेरी ज़िंदगी में।

0: तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे। निदा फाजली के लिखे बोल और संगीत उषा खन्ना का। श्रोताओं, चलिए अब यादों के सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हुस्न और अदाओं की जब बात चलती है तो सावन की फुहारें और जुल्फों से गिरती बूंदें एक अलग ही समा बांध देती हैं। इसी खूबसूरत मंजर को समेटे पेश है ये चंद लाइनें। शर्म से झुक गई निगाहें जब वो सामने आए, जुल्फों से गिरी बूंदें जैसे सावन का पैगाम लाए। ज़रा संभल कर ए हुस्न वाले, ये अदाएँ क़यामत हैं, कहीं ये भीगा बदन महफिल में आग न लगा जाए। सुनिए ये बेहद खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में फिल्म शहनाई से।
1: न झटको जुल्फ से पा

न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। श्रोताओं, पुराने दौर के गानों की यही बात तो सबसे जुदा है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के आखिरी नगमे का। श्रोताओं, दिल का मामला भी ये बड़ा अजीब होता है। जब ये किसी की मासूमियत पर आ जाए तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। तो प्यार के इसी मासूम इकरार को बयां करती हुई ये चंद लाइनें पेश हैं। धड़कता है दिल जब उनका दीदार होता है, बातों ही बातों में चाहत का इकरार होता है। हाय, ये दिल अब मेरे बस में कहाँ रहता है, जब से इस दिल

0: तो किसी से सच्चा प्यार होता है। फिल्म पराया धन का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और संगीत है आर डी बर्मन साहब का।
1: दिल

किशोर कुमार के गाए फिल्म पराया धन के इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 7:45 पर आप सुनेंगे युगराज सिंह की गाई शब्द। कानून की बात हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे 7:32 पर। और 10:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और अब एक नज़र डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कंट्री वाइड और इनसाइट्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी 6:50 पर। और जिले की हलचल कल प्रातः 9:15 पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल 10:00 सुनिएगा स्नेह दत्त द्वारा लिखित रेडियो नाटक, शीर्षक होगा अपराधी कौन। प्रतिभागी होंगे कृष्ण भूटानी, विष्णु नारायण शर्मा, क्रिस्टोफर सिंह, मीना दास, स्वर्ण मल्होत्रा, अनिल शर्मा और पूरन चंद जोशी। कल 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गायिका वालियां। कृषिगत कार्यक्रम में कल 6:05 पर आप सुनेंगे नाटक, शीर्षक होगा उजाले की ओर। आलेख आलोक कुमार का है, निर्देशक हैं अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर। कल 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल अपराह्न 1:45 पर सुनेगा विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। और विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 9:25 पर कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल प्रातः 7:31 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 11:30 पर।

0: और महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा गर्भावस्था और संचारी रोग। डॉक्टर निर्मल से प्रियंका त्यागी की होगी बातचीत। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं कल प्रातः 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रपट संगीत में प्रातः 11:00, दिन में 12:05 पर सैनिकों के लिए, 12:30 पर मिड डे मेलोडी, कल दिन में 2:30 पर एक ही संगीतकार, शाम 6:55 पर छाया गीत कार्यक्रम में, रात 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम में, एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत कल रात 8:30 पर और आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा कल रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
3: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित

0: कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में, कपिल देव अग्रवाल हापुड़ में, अनिल राजभर कौशाम्बी में, सुनील शर्मा गौतमबुद्ध नगर में, राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में और कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अम्बेडकर नगर, अयोध्या और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिले में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात कर दी गई है। नेपाल में बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों से प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज मेरठ के पुलिस लाइन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री वाजपेयी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका एम्स झज्जर से टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEE PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन कल रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अगले दिन 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन कल रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 6:30 लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाए।

0: रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया। जगह जगह मिलाद जुलूस भी निकाले गए। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर जुलूस ए मोहम्मदी और जुलूस ए मदहे सहाबा निकाले गए। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में मोहम्मदी मिशन द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जो कि चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर एक जलसे में परिवर्तित हो गया। वहीं जुलूस ए मदहे सहाबा अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडा वाला पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक गया। जुलूस में विभिन्न अंजुमन नाद पढ़ते हुए चल रही थी। इससे पहले कल रात भर शहर के विभिन्न स्थानों पर जलसों और मुशायरों का आयोजन किया गया, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। जुलूस के रास्तों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सबील और भंडारों का आयोजन भी किया गया। मुमताज अली, आकाशवाणी लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सुल्तानपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और अमरोहा में भी मिलाद उन नबी का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर अमरोहा में भी आज जुलूस ए मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाद पड़ी गयी। जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गयी। सुरक्षा के चलते जुलूस के साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं दिव्यांगों के अधिकार में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश चंद्रा और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं आपने देखा होगा समाज में बहुत से दिव्यांग रहते हैं, किसी के पैर में समस्या है, किसी के हाथ में समस्या है, किसी तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन के जीवन यापन में कठिनाई होती है। कानून इस संबंध में क्या कहता है, दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारा कानून किस तरह से काम करता है, तो इसी विषय पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को, जो पूर्व आईएएस हैं। राकेश जी आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि दिव्यांग कहते किसे हैं और क्या परसेंटेज होता है कि किसको हम दिव्यांग माने।
2: देखिए दिव्यांग ये अभी तक ये माना जाता था कि ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से जुड़ी हुई एक समस्या है, इसका जो सामाजिक सरोकार हैं या इनको कोई अधिकार मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ये मूल धारा से जुड़ने चाहिए नहीं जुड़ने चाहिए, इस पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस दृष्टि से

0: सोचना शुरू किया है कि ये भी ये एक सामाजिक समस्या भी है दिव्यांगता की, और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समानता के अधिकार इनको भी मिले, इसलिए इनके लिए कोई कानून होना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो वर्ष 1995 में सबसे पहले अच्छा। भारत सरकार ने एक समग्र कानून बनाया जिसे दिव्यांगता कह सकते हैं अधिनियम था। तो इस अधिनियम को काफी साल तक चलते हुए जब बीत गए तो वर्ष 2016 में
1: अच्छा।
0: भारत सरकार ने तमाम अध्ययन कराने के पश्चात एक और इसमें व्यापक संशोधन किए जिससे ये इसका दायरा भी बढ़ गया और लोगों तक ये ज्यादा ये अब फायदेमंद भी हो रहा है।
1: सुगम हो गया
0: कानून। सुगम हो गया। तो इसकी जो कुछ विशेष बातें जो जोड़ी गई वो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा।
1: जी बताएं।
0: कि पहले दिव्यांगों की 1995 के कानून में केवल 7 श्रेणियां थीं।
1: जी।
0: इसे बढ़ाकर 21 श्रेणियां कर दी गई हैं। यानी विकलांग किसी प्रकार का भी हो, आंख से, नाक से, कान से, हाथों से, पैरों से, या और यहाँ तक कि आप समझिए कि जो एसिड अटैक है इसको भी जोड़ दिया गया इसमें।
1: अच्छा अच्छा।
0: और थैलेसेमिया है या जो पार्किंसन रोग होता है जो आजकल काफी कॉमन है वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब 21 श्रेणियों में अब लोग दिव्यांग कहलाते। किसको हम दिव्यांग माने उसका एक पैमाना होना चाहिए। तो अब ये मान लिया कि अगर न्यूनतम 40% आपके अंदर विकलांगता है या उसका असर है तभी आप दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे,
1: चाहे पैर में हो, हाथ में
0: कहीं
1: हो,
0: पर भी हो,
1: आंख में
0: भी कहीं पर भी हो, लेकिन 40% उसका होना चाहिए तभी आपको सरकारी कानून का लाभ मिल सकेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
1: तो इसके लिए प्रमाण पत्र कौन?
0: हाँ, इसके लिए प्रमाण पत्र देने के लिए जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देते हैं इसको, वो विकलांगता प्रमाण पत्र देते हैं, कई प्रकार की जांचों के बाद सब करना पड़ता है, उसके बाद वो जारी होता है जिलों में, प्रदेश के सारे जिलों में। और जैसे हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद होता है
1: जी, जी।
0: जो जिले का सर्वोच्च मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसका कार्यालय होता है, वहां पर इसकी जांच पड़ताल होकर जारी होता है।
1: अच्छा, कई श्रेणियां होती हैं, कैसे जांच?
0: हाँ, तो ये अभी है कि जो वहां पे जो लोग संबंधित चिकित्सक हैं जो उसकी जांच करते हैं उनके उनके पास वो मानक रहते हैं कि किस मानकों से हम चेक करेंगे विकलांगता को, और वो प्रतिशत भी वही निकालते हैं कि कितने प्रतिशत है। तो अगर 40% न्यूनतम है तो फिर वो विकलांगता की श्रेणी में माना जाता है और उसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है।
1: अच्छा राकेश जी, हमने देखा है अक्सर नौकरियों में भी दिव्यांगों के लिए कुछ पद होते हैं, इसका क्या नियम है?
0: ये 2016 में जो परिवर्तन हुआ कानून में उसमें ये भी आया कि न्यूनतम 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई दिव्यांगों के लिए, और न्यूनतम 5% जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
1: अच्छा।
0: ऐसा है कि पहले जैसे कुछ साल पहले तक तो जैसे एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि सरकारी कलेक्ट्रेट जैसे हैं सरकारी कार्यालयों में एक बुनकर रखा जाता था जिसके दृष्टिहीन होता था।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
0: वो सर कुर्सियों को बिनते थे,
1: बिना करते थे जी।
0: लेकिन अब ऐसे नई नई चूंकि चिकित्सा विज्ञान भी अब बढ़ गया है, बहुत चीजें आ गई हैं आपके पास, तकनीकी चीजें जिनकी मदद से आप और भी काम कर सकते हैं, तो अब उनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है।
1: तो इसमें हमारा कानून क्या मदद करता है हमारे देश
0: में? देखिए, ये तीन परिवर्तन से चौथा एक जो कानून की जो सबसे बड़ा फायदा हुआ आम जीवन में कि अब एक कानून है इसलिए सबको पालन करना है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, प्राइवेट कार्यालय हैं, उनमें विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए हम ऊपर ओसीडी नहीं चढ़ सकते।
1: अच्छा।
0: तो उनके लिए एक रैंप बनाने की व्यवस्था की गई सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट में, कि वो रैंप से चढ़कर जाएंगे। ये हो गया। बसों में चढ़ने के लिए रैंप हो गई ताकि व्हील चेयर से जा सके। ऐसे ट्रेनों में भी की जा रही है, मतलब कुछ हो गया है, कुछ और हो रहा है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी आपको ये सहूलियत के लिए कम से कम उनका आवागमन के साधन अच्छे से हो जाए इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। ये इसी कानून के बदौलत हुआ 2016 में जो परिवर्तन आया है।
1: जी जी।
0: हालांकि अभी इसमें और भी काम होना है पर एक अच्छी शुरुआत हो गई है। और अब तो मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके डिजिटल साधन हैं जैसे इंटरनेट वाले जो काम हैं इसमें भी करने के लिए अब मान ली कोई अंधा है नहीं देख सकता तो कैसे काम करेगा। तो अब ये हो रहा है कि जैसे ब्रेल लिपि होती है जो जिसे दृष्टिहीन लोग को पढ़ सकते हैं, तो अब ब्रेल लिपि में उनके कीबोर्ड तैयार हो रहे हैं।

0: कर लिए गए हैं कि वह ब्रेल लिपि में, ताकि वो जो ये जो नया मीडियम आया है इसका भी उपयोग कर सके, वो तकनीकी का लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, इन सब का भी उपयोग कर सकें तकनीक के माध्यम से।
1: हाँ, हमने देखा राकेश जी, जो कभी कभी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी दृष्टिबाधित हैं जो, वो भी ब्रेल लिपि से अपना आंसर देते हैं।
0: जी हाँ, ब्रेल लिपि तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ब्रेल लिपि में तो कोई भी चीज जिसमें पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, मतलब वो सब काम उसी पे हो रहे हैं और बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो उसका प्रशिक्षण होता है, कई जिलों में उसके लिए ट्रेनिंग से वो हैं, विद्यालय भी हैं और कई जिलों में उसकी ट्रेनिंग की अलग से व्यवस्था की जाती है। तो वो उसके बाद लोग आराम से काम करते हैं, किसी कोई भी काम उनको लिखत पढ़ कर दे दीजिए, वो ब्रेल लिपि में कर लेंगे आराम से। तो ये पहले जो था कि जो कानून बनने के बाद अब एक बाध्यता जैसी हो गई कि आपको
1: करना है।
0: वरना पहले लोग जो चाहते थे करते थे, जो चाहते थे हटा देते थे कि इनको ये कैसे करेंगे। ये कानून का फायदा हुआ है।
1: और हमने देखा है कि टीवी पे अक्सर जो है मूक बधिर लोगों के लिए समाचार प्रसारित किया जाता है, इशारों से कुछ संकेत होते हैं उनसे किए जाते हैं,
0: जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए जो इशारों वाली भाषा जिसे आप साइन लैंग्वेज कहते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और हाँ, तो दूरदर्शन पे प्रयोग भारत सरकार ने किया है कि मूक बधिर का ये अलग से बुलेटिन भी आने लगे हैं अब तो। और नहीं तो कोई बोलता है तो साथ साथ एक रहता है इंटरप्रेटर जो इशारों की भाषा में समझाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है, ताकि पढ़ भी लिख भी गए लेकिन वो क्या बोल रहा है, कोई बड़ी अथॉरिटी है, कोई नेता है, कोई और लोग हैं, विद्वान हैं, तो अब वो आसानी से समझ सकते हैं इस भाषा में, साइन लैंग्वेज में।
1: तो डॉक्टर राकेश, तो 2016 में कानून को भी 10 साल हो चुके हैं, तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है क्या?
0: जी हाँ, देखिए सुधार की आवश्यकता इसलिए है कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है सरकार की सोच में, कि अब वो स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्या नहीं मानते इसे।
1: अच्छा।
0: ये एक सामाजिक अभिशाप है और इसको दूर होना चाहिए, ये सोच से अब सरकार चल रही है। और इनको अधिकार भी मिलने चाहिए, तो ये सामाजिक अधिकारिता का भी एक लिए बढ़ाने का भी प्रयास है। और इसी दृष्टिगत जो कानून बन रहे हैं वो इसी को दृष्टिगत इसमें प्रावधान रखे गए हैं। और आगे भी यही, जैसे उदाहरण के लिए अब एक जो सुझाव आए हैं 2016 कानून में, चूंकि अब 10 साल हो गए हैं तो अब तमाम एक्सपर्ट के सुझाव भी आए हैं। तो पहला तो ये है कि एक समय सीमा निर्धारित कर जाए कि सारे बसों में, सारी ट्रेन्स में, सब स्कूलों में, सब कॉलेजों में, बिल्डिंग्स में रैंप की व्यवस्था एक समय बद्ध तरीके से,
1: हाँ,
0: कि 5 साल में आपको बना देने हैं। 2016 कानून में ये कह दिया कि बनाने हैं, लेकिन समय सीमा ना होने से अब वो चीज बढ़ती जा रही है। तो एक तो एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको हम लाभ दे सके, तो आप 5 साल कर दिए, 3 साल कर दीजिए, ताकि सब जगह तेजी से निर्माण कार्य हो सके। दूसरा ये है कि ये अभी जो दिक्कत सबसे बड़ी आती है इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से, कि इतने उनको दौड़ना पड़ता है सीएमओ ऑफिस और तरह तरह के कि उनके वो लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं तमाम सूचनाएं और ये सब, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ये भी सुझाव है कि इसे हम पीएससी लेवल पर ले आए, वहां पर एक तैनात कर दें विशेषज्ञ को, ताकि पीएससी लेवल पर ही उनका वो
1: वही
0: जाँच हो जाए और उनका प्रमाण पत्र बना सके। और प्रमाण पत्र बनाने में इनको बार बार दौड़ना ना पड़े, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है,
1: दुखदायी
0: होता है, कोई बताने वाला भी नहीं होता है। और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन माने मानकीकरण हो जाए कि पीएससी लेवल पे भी रहे, ऊपर भी रहे, ताकि जैसे ही वो पहुंचे वो फटाफट मानकों को देखकर उनका परीक्षण कर सके और कोशिश करें कि उसी दिन हो सके तो उसी दिन प्रमाण पत्र जारी कर दें। ये ब्रेल लिपि, ये अब तो पढ़े लिखे भी बहुत लोग हो रहे हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अभी कुछ साल पहले दिव्यांग लड़की जिसने आईएएस में टॉप किया था,
1: अच्छा,
0: हाँ, वो इस समय अच्छे पद पर है, वहाँ पे शायद हरियाणा में भारत सरकार में कहीं पर है। तो और हर साल अब काफी दिव्यांग लड़के लड़कियां आईएएस की परीक्षा, जो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, उसमें लोग आ रहे हैं।
1: अरे वाह,
0: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो उनके संग अगर हम तकनीक का भी और सहारा दे दें, जो नए नए गैजेट्स आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, उनसे भी हम उनको रूबरू कराते रहे, तो वो वैसी परफॉर्मेंस देते हैं जैसे कि सामान्य जन देता है। तो इसको भी दायरा और बढ़ाना चाहिए, ताकि वो उनमें ये अपने काम को करने में और सहूलियत हो सके, अपने को उस धारा मुख्य धारा में
1: जोड़ सकें।
0: परिणाम ये मिला है कि आप देखिए हर पैरा ओलंपिक्स में या पैरा के जो विश्व कप होते हैं या और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में आप देखेंगे कि भारत के

0: इतने लोग, न केवल पुरुष बल्कि महिला है, वो
1: पदक जीत रहे हैं,
0: पदक जीत रहे हैं, स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, और एथलेटिक्स जैसी चीजों में भी
1: विश्व रिकॉर्ड भी बना रहे,
0: रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जो पिछले कुछ सालों में ये जो प्रयास हुआ है कि हमें दिव्यांगजनों को भी खेल के क्षेत्र में, क्योंकि और क्षेत्र में तो कुछ प्रगति कर रहे थे लेकिन खेल में
1: भी जुट गए हैं,
0: पिछड़े थे, तो इन्होंने उसको पकड़ा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम है। हर आप देखिए, हर कुछ समय पे अभी पैरालंपिक्स हुए हैं, उसमें हमारे कई 12-13 कितने गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते, सिल्वर मेडल जीते, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि ये जो सुझाव हैं एक्सपर्ट्स के, और इनको एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2016 के जो कानून बना, इसमें जो परिवर्तन आया, इसमें एक बहुत अच्छी बात की कि इसमें आपराधिक प्राविधान भी डाल दिए गए।
1: अच्छा,
0: अगर आप नहीं करेंगे तो न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 5 साल की सजा का प्राविधान है और जुर्माना भी है।
1: अच्छा, जो अवॉइड करेगा,
0: जो अवॉइड करेगा
1: जी,
0: या उनको प्रताड़ित करेगा इस तरीके से, तो ये इसको बरकरार रखना चाहिए। जबकि एक तरफ से एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉरपोरेट जगत इसको हटाने के लिए,
1: अच्छा हम लोगों ने बात की स्पोर्ट्स के बारे में और कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में, तो क्या जो हमारी फिल्म जगत है या जो टीवी जगत है उसमें भी इनका योगदान माना जाता है?
0: जी हाँ बिल्कुल। और अब तो मैंने बताया ना कि जैसे जब वो ये ब्रेल लिपि सीख जाते हैं तो वो जो गानों की भाषा होती है ना,
1: हाँ?
0: उसको भी ब्रेल में कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वो उससे वो छू कर वो उसके धुने बनाना, ये सब करना अभी सब कर रहे हैं लोग, काफी लोग।
1: अच्छा, अच्छा।
0: ऐसे वो जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो भी ब्रेल में लिख के वो कर सकते हैं। तो एक शुरुआत तो हो गई है, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ तो दिव्यता होती है, मतलब जो आम आदमी में नहीं होती है।
1: जी जी जी।
0: तो उसको उन्होंने पकड़ा है और अच्छे से प्रयास यही है कि दिव्यांग समान मुख्य धारा में जुड़ सके, आ सके।
1: तो डॉक्टर राकेश जी, आप ने हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी दिव्यांगों के सुधार के लिए, दिव्यांगों की सुविधा के लिए जो भारत सरकार कर रही है उसका भी आपने जिक्र किया है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दिव्यांगों के अधिकारों में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश चंद्रा और भेंटकर्ता थे अतिश श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 और 40 सेकंड हो रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए युगराज सिंह की गाई चंद शब्द।

सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं युगराज सिंह की गाई शबद।

युवराज सिंह की गाई शब्द आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये अंतिम शब्द, आवाज़ है युवराज सिंह की।

इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या में। और आज का यह कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, राजवीर। श्रोताओं, खिड़की के बाहर का मौसम देखिए और जरा अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या कह रहा है आपका दिल? यही ना कि दुनिया की परवाह छोड़ो और बस किसी की यादों में खो जाओ। वैसे भी जवानी 4 दिन की है बॉस, अगर आज दिल दीवाना ना हुआ तो फिर कब होगा। साल 1972 की फिल्म आंख मिचोली का ऐसा ही एक मस्ताना गीत आज आपके लिए लेकर आया हूं। आनंद बख्शी के लिखे इस क्षमा कीजिएगा राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज दी है किशोर कुमार ने।

जी हाँ, आंख मिचोली फिल्म का गीत किशोर कुमार की मस्त आवाज में भी आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब आपको ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा और सुनाने वाले हैं फिल्म अंदर बाहर से। आवाजें हैं आशा भोसले और शैलेंद्र की। गुलशन बाबरा का ये गीत है और आर डी बर्मन का संगीत।

0: ओहो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ।
1: देश परदेश, प्यार में कैसा देश परदेश।

0: पुलिस अफसर हो।
1: मौसम बड़ा सुहाना है।
0: अच्छा जी,
1: आपको समझो किसका एक अफसाना है।
0: अरे बाबा, कितनी बार कहोगे? हाँ,

मौसम बड़ा सुहाना है, फिल्म अंदर बाहर, आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र सिंह का गीत, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ और गुलशन बाबरा का गीत और आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, गीत हमें जीवन को जिंदा दिली से जीना सिखाते हैं, आने वाले कल की चिंता न करने और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। इसी खूबसूरत सोच, सफ़र और ज़िंदगी के फ़लसफे को बयां करता है हमारा कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म अंदाज से। आवाज़ है किशोर कुमार की, हसरत जयपुरी का ये गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत है। हंसकर गुजारो जो भी पल मिला है यहाँ, हंसकर गुजारो जो भी पल मिला है यहाँ, सफ़र छोटा ही सही पर यादगार होना चाहिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अंदाज का यह खूबसूरत सा नगमा, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान से। शहरयार का लिखा यह गीत है और संगीत है खयाम का। जाम तो यूं ही बदनाम है महफिल में, जाम तो यूं ही बदनाम है महफिल में, असली नशा तो तेरी इन नशीली आंखों में है।

इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। उमराव जान फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म वारंट से। आवाज़ है किशोर कुमार की, आनंद बख्शी का गीत है और संगीत है आर डी बर्मन का। जरा ठहरो कि अभी रात का ढलना बाकी है, जरा ठहरो कि अभी रात का ढलना बाकी है, तुम्हारी आँखों से दिल का संभलना बाकी है।

जी हाँ, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म वारंट का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। और फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म मेरे हुजूर से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। हटा लो चेहरे से ये नकाब मेरे हुजूर, हटा लो चेहरे से ये नकाब मेरे हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हुस्न छुपाते छुपाते ये रात ही गुजर जाए।

0: रुख से जरा
1: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म मेरे हुजूर के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है।
0: फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है रात के 8:30 और यह समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो श्रोताओं, आज के सफर में हम रुख कर रहे हैं साल 1973 की एक ऐसी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म का जिसके गानों ने हर दिल पर राज किया। संजीव कुमार और जया भादुरी की बेहतरीन अदाकारी से सजी ये फिल्म थी अनामिका। आर डी बर्मन साहब का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की मखमली आवाज से सजे इस चुलबुले और रोमांटिक गीत से।

वाह क्या बात है, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। श्रोताओं, इस गाने में जो सादगी और शरारत है ना, वो आज के गानों में कहाँ। श्रोताओं, फिल्म अनामिका की कहानी जितनी रहस्यमयी थी, इसके गाने उतने ही जज्बाती थे। जब फिल्म में नायक को नायिका से धोखा मिलता है, तो दिल का वो दर्द किशोर कुमार की आवाज़ में बह निकलता है। आरडी बर्मन ने इस दर्द को संगीत के ऐसे सांचे में ढाला कि ये गाना अमर हो गया। तो आइए सुनते हैं उदासी और कसक से भरा ये सुरीला नगमा।

श्रोताओं, किशोरदा की आवाज का यह जादू सीधे दिल को छू जाता है। चलिए उदासी के साए से थोड़ा बाहर निकलते हैं। फिल्म अनामिका का अगला गीत एक क्लब सॉन्ग है, लेकिन आर डी बर्मन साहब की खासियत देखिए, उन्होंने इसे एक आम डांस नंबर नहीं बनाया, बल्कि इसमें गजब का सस्पेंस और थ्रिल भर दिया। आशा भोसले की थिरकती हुई आवाज और पर्दे पर जया भादुरी का वो अंदाज, आइए सुनते हैं आज का ये आखिरी और धमाकेदार गीत।

0: आजा, अब तो आजा ना, आजा।
1: आशा भोसले के गाए फिल्म अनामिका के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनामिका के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। कुछ क्षणों में समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है।

0: है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का

0: सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खुसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी।

0: innings. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jorel and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the two-match series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम के तहत अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलाद उन नबी जोशो खरोश के साथ मनाए गए और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। अब खबरें तफसील से। नेपाल में आज सुबह भोटेकोशी दरिया में अचानक सैलाब आने से तिब्बत सरहद के नजदीक रसुवा खित्ता इसकी जद में आ गया। तकरीबन 500 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। इनमें 100 से ज्यादा भारतीय शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया है कि सैलाब से मुतासर इलाकों से अब तक 46 लाशें मिली हैं। इन एहलकारों ने बताया कि मुतासर इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज कम 93 अफराद को बचाया गया है। नेपाल के सियाहती बोर्ड के मुताबिक लापता अफराद में गैर मुल्की सयाह और नेपाली शहरी शामिल हैं। हुक्काम ने कहा है कि लापता अफराद में कम अज कम 105 भारतीय शहरी और 37 गैर मुकीम भारतीय अफराद शामिल हैं। इनमें से बेशतर लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक लापता गैर मुल्की शहरियों में कई मुल्कों के अफराद हैं। इनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालिंदर शाह ने मुतासरा जिलों के हुक्काम और विफाकी अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में सूरत हाल और बचाव और राहत कार्रवाई का जायजा लिया। मुतासरा लोगों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी इमदाद की खातिर टोल फ्री नंबर 1234 जारी किया गया है। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9815289445 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने नेपाल में अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि इमदाद हासिल करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर +9779815131 और 6807 और +9779701705000 पर सिफारतखाने से राबता कायम कर सकते हैं। भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि वो अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के लिए जल्द बचाव और राहत की खातिर नेपाल सरकार के मुतालिका हुक्काम के साथ राबता कायम किए हुए है। इधर सरकारी जराये के मुताबिक भारत जितना जल्द मुमकिन हो सके नेपाल के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت

विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को पहली इनिंग्स में 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथर ने तीन तीन विकेट लिए, जबकि सारांश जैन ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम के तहत अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलादुन नबी जोश व खरोश के साथ मनाए गए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डीएक्सेलेरेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
3: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है

0: उसकी तरह बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बारामती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हड़ताल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं, उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी, तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी, क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो भी कुछ दूर दिख रहा, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन

0: रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटिजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटिजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल क्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है

0: हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना, ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं।
1: जी
0: लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में वो विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं, और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है
1: जी
0: कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पायरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनिएट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत, चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो धर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इश्यू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी

0: तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पॉलिटिकल समिट्री की बात करें, तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
2: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है, तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी, चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो। टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं,

0: इससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
2: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है, और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है, तो चीन दाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
2: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जो बात।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोता

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

जी नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया मैं। और आज ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच उपस्थित हूं मैं राजवीर सिंह। श्रोताओं, सावन का पावन महीना चल रहा है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते ये काले बादल, मिट्टी की वो सौंधी सी महक और बागों में पड़े झूले, ये सब गवाही दे रहे हैं कि भाई बहन के अटूट निश्चल और पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन बस आ ही गया है। रक्षाबंधन यानी राखी, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें पुरानी यादों के गलियारों में दौड़ने लगती हैं। आज के इस एक घंटे के सफर में हम और आप मिलकर यादों के कुछ पन्ने पलटेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब राखी का मतलब होता था हफ्तों पहले से शुरू होने वाली तैयारियां, और तुलना करेंगे आज के उस दौर से जहां तकनीक ने त्योहार को एक नया रंग दे दिया है। पुराने जमाने की वो सादगी और आज के इस डिजिटल दौर की रफ्तार, इन्हीं सब खट्टी मीठी यादों पर आज हम गुफ्तगु करेंगे। हमारी इस महफिल में आपकी यादें सबसे खास मेहमान हैं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आपके संदेशों का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो फिर श्रोताओं, बिना देरी किए यादों के इस सुरीले सफर का आगाज करते हैं सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की आवाज में सजे इस अमर और सदाबहार गीत के साथ। सुनिए और खो जाइए अपनी यादों में, और लिख भेजिए हमें अपनी खट्टी मीठी कुछ पुरानी यादें रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। तब तक आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। लेकिन नंबर हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म छोटी बहन का ये लाजवाब गीत, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सचमुच इस गीत का एक एक शब्द दिल को छू जाता है। पुराने जमाने की राखी की बात ही कुछ और थी श्रोताओं, तब बाजार में आज की तरह फैंसी और चमकीली राखियां नहीं हुआ करती थी। सूत के धागे या फिर रेशम की एक साधारण सी डोरी होती थी, लेकिन उसमें जो स्नेह और दुआएं पिरोई होती थी उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो श्रोताओं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे हैं, तो देखते हैं ये पहला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है। ये मैसेज हमें मिला है रविंद्र कुमार राणा की ओर से। लिखते हैं, पता इन्होंने अपना इसमें नहीं लिखा है। आप लिखते हैं, रक्षाबंधन परस्पर स्नेह का पावन त्यौहार, भाई बहनों में बढ़ाए अपार विश्वास प्यार, अटूट प्रेम की धोतक रक्षाबंधन पर्व आई, बहनों ने पूजा थाल अक्षत रोली सजाई, बहने मिष्ठान खिलाकर राखी बांधती भाई, रक्षाबंधन पर्व की गहराई सब समझे मेरे भाई, भाई बहन के रिश्ते अपने कर्तव्य निभाते, विषम समय में रक्षा पर्व ये मर्यादा निभाते, रक्षाबंधन निश्चल प्रेम विश्वास का है पर्व, बहन करती सदैव अपने भाई पर है गर्व, ऊंच नीच जात पात भेदभाव पर्व मिटाए, भाई बहन में स्नेह की नवज्योति जलाए, नेह स्नेह की ये डोरी बनाती जीवन धन्य, रक्षाबंधन दिलाए जग में सर्वाधिक पुण्य, बहन मांगे ये वचन कभी नहीं जाना भूल, भाई बहन के रिश्ते से महके बगिया फूल। तो क्या खूबसूरत कविता भाई बहन के रिश्ते पर लिख करके हमें भेजी है रविंद्र कुमार राणा जी ने। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी पंक्तियाँ लिख करके जो है आपने हमें भेजी हैं। तमाम श्रोताओं ने भी इसको सुना होगा। और एक और मैसेज भी हमारे पास जो आया है, ये मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें मिला है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार की ओर से। आपने भी कुछ पंक्तियां लिख करके भेजी हैं। शिकवा न कीजिए बस एहतराम से जिंदगी जीते जाइए, मरेंगे तो एक रोज सभी बस जिंदा रहते जाइए, खाक न हो जाइए पैबंद न रखिए इन मुस्कुराहटों पर और किसी की मुस्कुराहटों की वजह भी बन जाइए। क्या खूब बहुत सुंदर पंक्तियां जो है आपने लिख करके भेजी हैं। और आगे आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, आपने पुराने जमाने की याद दिला दी। 70 के दशक में जब मेरी बहन बुआ के घर से मुझे डाक से राखी भेजती थी तो उस लिफाफे में रखी राखी से चंदन और कस्तूरी की महक आती थी। डाकी का इंतजार करना और कलाई पर वो धागा बंधवाना आज भी याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका हमारे पास पहुंचा।

है और आगे भी कुछ मैसेज हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से। लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, सायना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। आपने लिखा है, पुराने ज़माने में बहन भाई के हाथ में राखी बांधकर बहुत खुश होती थी, लेकिन अब डिजिटल दौर में मोबाइल पर राखी का मैसेज भेजकर इतिश्री हो जाती है या डाक से राखी भेज दी जाती है। काश वही पुराना दौर लौट आए। राशिद अंसारी जी, हाँ, बहुत सुंदर मैसेज आपने भेजा है। देखिएगा, ज़माना बदल रहा है और हम भी यही जिक्र करने के लिए आज इस टॉपिक को हमने लिया है कि पुराने ज़माने में और आज के इस आधुनिक दौर में रक्षाबंधन के पर्व पर जो है क्या परिवर्तन आए हैं। इन्हीं सब बातों को हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं और मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और एक और मैसेज अभी अभी हमारे पास आया है गाँव दुल्हापुर, ज़िला मुरादाबाद से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान। आप लिख रहे हैं, बांध रही हूं राखी में भैया, पर एक वचन देना होगा, कभी नहीं भी बेटी से जीवन में घृणा करना होगा। बाप बनोगे कल तुम, लेकिन बेटी को भी अपनाओगे, करके जांच गर्भ में उसकी हत्या नहीं कराओगे। माँ बुआ चाची भाभी सब किसी ना किसी की बेटी हैं, ये जो तेरी बहना है ये भी तो पापा की बेटी है। बेटी अगर नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, अपने बेटे के हाथों में राखी किससे बंधवाओगे। क्या खूब मैसेज, बहुत ही सुंदर मैसेज फरमान भाई आपका। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम श्रोताओं ने भी इसे सुना होगा, ज़रूर सराहा भी होगा। और एक और मैसेज इसी बीच हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें मिला है मदनगिरी, विमलागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, भारतगिरी और सोनिया गिरी की ओर से, ग्राम गधरोना, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। आप लिखते हैं, राजवीर जी, जैसी आपसे अपेक्षा थी आपने ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जो आपने रखा है, रक्षाबंधन करीब आ रहा है, विषय बहुत अच्छा है। आप आगे लिखते हैं, आज मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, जब हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ राखी का त्यौहार मनाया करते थे। सगी बहन तो क्या आस पड़ोस की लड़कियों से भी राखी बंधवाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी माँ की एक मौसी की लड़की गांव में ही रहती थी। उनके रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता था, हम उनके घर जाकर जाते थे और राखी बंधवाया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। जी हाँ, बहुत अच्छा। और आगे आप लिखते हैं, जहाँ घर में भीड़ हो जाया करती थी, लेटर बॉक्स रखियो के लिफाफे से ज़्यादा करते थे। उस समय उन राखी के धागों में प्रेम छिपा हुआ हुआ करता था, अब वो बात कहाँ। अब तो मोबाइल का युग है, सभी काम मोबाइल के द्वारा हो जाते हैं। काश वो समय फिर वापस आ जाए और हम राखी का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। जी हाँ, मदन गिरी जी, बहुत अच्छी, आपने जो अपनी पुरानी यादें हमारे साथ में ताज़ा कर दी हैं, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ करके और बहुत सुंदर संदेश जो है आपने यहाँ पर भेजा है। और एक और मैसेज हम आगे पढ़ते हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव जाखोद, राजस्थान से, शंभुदयाल खटक और परिवार के सदस्यों की ओर से। आप रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। और एक और मैसेज अभी हमें मिला है, ये मैसेज हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं जो है भेज रहे हैं। एक और मैसेज अभी आया है, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मनवी, तन्वी और परिवार के बहुत सारे सदस्यों की ओर से। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ आप लिखते हैं कि इस पावन पर्व रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। बड़ा ही अच्छा त्यौहार है ये, पूरा परिवार एक साथ होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा मैसेज आपका भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश कश्यप जी, और इस खूबसूरत याद को हमारे साथ बांटने के लिए। वाकई वो लिफाफा जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, वो कागज़ नहीं बल्कि जज्बातों का समंदर हुआ करता था। चलिए, इसी रेशम की डोरी के नाम समर्पित करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म रेशम की डोरी का, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। श्रोताओं, आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राजवीर सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं राखी के बदलते स्वरूप की। तो हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और राखी के बदलते स्वरूप विषय पर अपनी जो भी राय रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, शो में। वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। श्रोताओं, जहाँ कल सादगी थी वहीं आज आधुनिकता है। आज का दौर डिजिटल दौर है। भाई बहन भले ही काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए सात समंदर पार बैठे हों, लेकिन राखी की डोर कमज़ोर नहीं पड़ती। ऑनलाइन राखी बुक होती है, सीधे भाई के घर पहुंचती है, और त्यौहार वाले दिन वीडियो कॉल पर ही आरती उतार दी जाती है। तो एक और मैसेज अभी अभी हमारे पास आया है, ये मिला है हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से। चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल की ओर से आप रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ लिखते हैं, रक्षाबंधन भारत का एक पवित्र और प्रेमपूर्ण त्यौहार है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना किया करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है और उसे उपहार देता है। ये पर्व हमें प्रेम, अपनापन, कर्तव्य और पारिवारिक एकता का संदेश देता है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने वाला पर्व है। इसलिए इसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन के विषय पर आपने इतनी विस्तारित जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा की, इसके लिए चंदूलाल सिंगरौल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मैसेज अभी हमारे पास आया है, और ये मैसेज हमें मिला है गांव उगाला, ज़िला अंबाला, हरियाणा से। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमान और परिवार के अन्य सदस्यगणों की ओर से, और आप भी सभी को, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अगला मैसेज है कस्बा बराड़ा, ज़िला अंबाला से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद सिंह और राहुल की ओर से, आप भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं रक्षाबंधन की। और जो मैसेज अभी हमारे पास आया है, गांव नंगला उबन, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जयपाल सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों का, आपने भी बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं। आप लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारी बहन घर पर ही हमें राखी बांध दिया करती थी, लेकिन हम बड़ी ही बेसब्री से बैठकर घर के दरवाजे पर बुआ के आने का इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि बुआ जी पापा को राखी बांधने के लिए आती थीं, तो वो हमारे लिए भी राखी लेकर के आया करती थी। तो बड़ा इंतज़ार रहता था हमें। अब बुआ जी नहीं रही हैं तो वहाँ से कोई आता भी नहीं है। रहा सवाल बहन का, तो उम्र बहन की भी काफ़ी हो गई है। कभी जो है भांजे आ जाते हैं, तो कभी जो है हमारे जीजा जी भी आ जाते हैं राखी बांधने के लिए। तो देखिए, पुरानी यादें आपने ताज़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, ठाकुर विजयपाल सिंह जी। और ये मैसेज हमें मिला है ग्राम नजीमपुर से, योगेश, और ग्राम नजीमपुर, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से, योगेश कुमार और उमेश रानी की ओर से, आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और याद कर रहे हैं उन पुराने दिनों को। आप लिखते हैं कि जब वो राखी हुआ करती थी, हमारे हाथ में हमारी बहना राखी बांधा करती थी, तो बड़ी ही चमकीली सी राखी हुआ करती थी, और उसके अंदर एक बहुत मोटा जो है गद्दा सा हुआ करता था, चमकीली चमकीली पन्नी लगा हुआ करती थी। लेकिन अब उस तरह की राखियां नहीं हैं, मेटल्स की राखियां आ रही हैं और बड़ी ही सुंदर खूबसूरत प्लास्टिक की राखियां आ रही हैं, तो वो वाली राखियां अब देखने को नहीं मिला करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए योगेश जी। और एक और मैसेज जो हमें मिला है, ये मैसेज हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, ज़िला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और निधि निखिल वर्मा। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, चाहे बहन कहीं भी रहे, भाई के हाथों में राखी बांधने ज़रूर पहुँचती हैं। तो ये मैसेज है आपका, बहुत सुंदर सा मैसेज आपने लिख करके भेजा है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम को बिल्कुल दर्शा रहा है।
एक और मैसेज अभी जो हमें मिला है, ये मिला है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से, इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान की ओर से। आप भी तमाम श्रोताओं को रक्षाबंधन की जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और लिखते हैं, लगता है आप हमसे नाराज़ हैं, तभी तो हमारी फरमाइश शामिल नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, ये फरमाइश ही प्रोग्राम नहीं है, ये कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है, दिल ने फिर याद किया। तो इसमें और भी कुछ अगर रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में, तो आपका स्वागत है। आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। और इसी क्रम में एक और मैसेज जो अभी हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें मिला है राही नगर गंज डुंडवारा से, शमसुल कमर राही और परिवार के सदस्यों की ओर से। आप लिखते हैं, यूं तो दुनिया में सैकड़ों फूल हैं, पर उस फूल की क्या मिसाल जो कीचड़ में खिलता है। इसी तरह उस रिश्ते की

क्या मिसाल जो एक धागे में बंध कर बनता है। बात उस वक्त की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और उस वक्त मैंने किसी को अपनी बहन बनाया था। नाम था शीतल, जो हर वर्ष मुझे राखी बांधा करती थी। कुछ समय बाद उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और वो चली गई। लेकिन जब ये माह आता है, मुझे मेरी बहन बहुत याद आती है। क्या बात है शमशुल कमर राही जी, बहुत शुक्रिया आपने पुरानी यादों को हमारे और हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और मैसेज हमारे पास ये आया है। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई तहसील सिल्लोड ज़िला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं। अनिल कुमार घोड़के और परिवार के सदस्य, आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में प्रेषित करते हैं। और एक और मैसेज जो ये हमें मिला है, ये मैसेज आया है लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से। मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज़, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब, कहकशा और पूरे ही परिवार की ओर से आप लिखते हैं। आप एक गीत की फरमाइश लिख रहे हैं और साथ ही साथ आप शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं रक्षाबंधन की। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हम अपने तमाम श्रोताओं से चाहेंगे कि हमें इस विषय से जुड़ते हुए, रक्षाबंधन पर्व से जुड़े हुए मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें, अपनी पुरानी यादें हमारे साथ में शेयर करें। और जब तक आपके मैसेजेज हमारे पास आते हैं, तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म में भी आपने सुना किशोर कुमार को। श्रोताओं, हर भाई के लिए उसकी बहन अनमोल होती है। अच्छा दोस्तों, राखी का जिक्र हो और घर के पकवानों और लेन देन की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पुराने ज़माने में माँ और बहनें सुबह से ही रसोई में जुट जाया करती थीं। कढ़ाई में पूड़ियाँ छनती थी, खीर बनती थी और बाजार से ताज़ा घेवर या बर्फी आया करती थी। भाई अपनी जेब टटोल कर 10-20 या बहुत हुआ तो 50 रुपये का नोट लिफाफे में रखकर बहन को देते थे। आज का ज़माना थोड़ा बदल गया है। आज चॉकलेट, हैम्पर्स, गैजेट्स और कस्टमाइज्ड गिफ्ट का चलन है। श्रोताओं, इसी से संबंधित एक मैसेज अभी हमारे पास आया है और ये मैसेज हमारे पास आया है गांव और पोस्ट राहु नंगली से। आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान की ओर से। और आप लिख रहे हैं, पहले क्या होता था, महीनों पहले से चिट्ठियों का इंतज़ार होता था। बहनें हाथ से रेशम का धागा बनाती थी, भाई मीलों का सफ़र तय करके सिर्फ एक दिन के लिए घर आता था। माँ के हाथ की बनी वो देसी मिठाई और शगुन का 1 रुपया, सब कुछ कितना सादगी से भरा होता था। और अब डिजिटल ज़माना है, भाई दूर है तो वीडियो कॉल पर आरती हो जाती है, राखी ऑनलाइन कोरियर हो जाती है और शगुन जो है वो फ़ोन पे के द्वारा या दूसरे डिजिटल माध्यम से पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, धागे भले ही अब रेशम से डिज़ाइन हो गए हों और मिठाई अब चॉकलेट में बदल गई हो, पर भाई बहन की वो नोकझोंक, वो प्यार और एक दूसरे की रक्षा का जो वादा है, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। बदला सिर्फ तरीका है, दिल का रिश्ता नहीं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आचार्य सत्यवीर सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरत जो है मैसेज लिख करके हमें भेजा है और हमारे तमाम श्रोताओं तक जो है आपका ये मैसेज पहुंच चुका है, आपका संदेश पहुंच चुका है। और श्रोताओं, एक और मैसेज अभी हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की ओर से, और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं रक्षाबंधन की। इसी क्रम में एक और मैसेज हमारे पास आया है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, एम फारूक शेख और परिवार के सदस्यों की ओर से, आप भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस तरह से बहुत सारे मैसेज शुभकामनाओं वाले हमारे पास आ रहे हैं और श्रोताओं, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कुछ पुरानी यादें अपनी, जो भी आपके दिल को याद आ रहा हो, वो ज़माना जब आप छोटे हुआ

करते थे और किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व जो है मनाया जाता था, कुछ उस तरह की बातें भी हमारे साथ में शेयर कीजिए। बहुत सारे श्रोता हमें लिख करके भेज रहे हैं और बहुत सारे श्रोता सिर्फ शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मारहरा दरवाज़ा एटा से है नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और परिवार के तमाम सदस्य, आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में प्रेषित कर रहे हैं। और बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग, आप भी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की प्रेषित कर रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट की ओर से, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में प्रेषित करते हैं। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हैं। तो श्रोताओं, हम अभी भी आपसे वही कह रहे हैं कि कुछ रक्षाबंधन से जुड़ी पुरानी यादें जो भी आपको याद आ रही हैं वो हमारे साथ में शेयर कीजिए। जब तक आपका मैसेज पहुँचता है हमारे पास, तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत फिल्म अंधा कानून से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना भी आपने फिल्म अंधा कानून में। श्रोताओं, वक्त बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं और जीने का अंदाज भी बदल जाता है, लेकिन धागे का वो कच्चा बंधन जो भाई बहन को एक अटूट रिश्ते में बांधता है, उसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। चाहे वो पुराने जमाने की डाक से आई रेशम की डोरी हो या फिर आज के जमाने की ऑनलाइन भेजी गई फैंसी राखी, दोनों में भावनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। भाई का रक्षा का संकल्प और बहन की मंगल कामना। एक और मैसेज अभी हमारे पास आया छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल की ओर से। आप लिखते हैं, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। समय के साथ इस पर्व का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले बहनें अपने भाई के घर जाकर राखी बांधती थीं, लेकिन आज दूरी के कारण डाक, कुरियर और ऑनलाइन माध्यमों से राखियां भेजी जाती हैं। बाजार में आकर्षक और आधुनिक डिजाइन की राखियों का प्रचलन बढ़ा है। आज रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि समाज में प्रेम, सुरक्षा और सद्भाव का संदेश देने वाला पर्व बन गया है। लोग सैनिकों, मित्रों और प्रकृति की रक्षा के संकल्प के साथ पेड़ों को भी राखी बांधते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बदलते समय के बावजूद इस पर्व की मूल भावना, प्रेम, विश्वास और रक्षा का संकल्प आज भी अमूल्य और जीवंत है। जी, बहुत सुंदर मैसेज एक बार फिर चंदूलाल सिंगरौल जी का हमारे पास आया है। और बहुत सारे मैसेज हम देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो है फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं, ये मैसेज आया है हमारे पास नगीना से अनिल विनोचा जी का। साथ में है शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा। आप लिखते हैं, आप का जो मैसेज है आप लिखते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वह भाई बहन के मार्मिक प्यार का रिश्ता है। सच, इस प्यार को व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये वो रिश्ता है, बंधन है जो रग रग में समाया होता है। ये राखी बांधने का पराय नहीं है, ये बांधने का, ये दिल की आत्मा से जुड़ा है। राखी और पैसे का रिवाज है। इस रिश्ते में जो पवित्रता है या जो दिल की भावनाएं जुड़ी हैं, अनमोल हैं। और मैं खुश नसीब हूँ, मेरी बहन मुझसे 30 बड़ी है, 30 मिनट बड़ी है। सच सच मानिए। जी हाँ, बहुत सुंदर मैसेज आपका अनिल विनोचा जी। अब चाहे वो 30 मिनट बड़ी हैं या 30 सेकंड बड़ी हैं, आपसे बड़ी हैं तो बड़ी ही रहेंगी। और बहुत सुंदर मैसेज आपने हमारे पास लिख करके भेजा है। और इसी तरह से एक और मैसेज हमारे पास ये आया है, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और परिवार के सदस्यों की ओर से। लिखते हैं, आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए आपको

बधाई और शुभकामना संदेश आपने और शुभकामनाएं आप दे रहे हैं तमाम श्रोताओं को। और ये मैसेज जो हमें मिला है, ये मैसेज मिला है राही नगर गंज डुंडवारा से, शमसुल कमर राही की ओर से। आप लिखते हैं, तो दुनिया में सैकड़ों फूल हैं, पर उस फूल की क्या मिसाल जो कीचड़ में खिलता है। ये रिपीट मैसेज आपका दोबारा से आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आगे लिखते हैं, एक छोटा सा वाक्य भी आपने लिख करके हमें भेजा है, और चलिए ये हम पढ़ लेते हैं आपका मैसेज। आप लिखते हैं, उस रिश्ते की क्या मिसाल जो एक धागा बांध कर बनता है। बात उस वक्त की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और उस वक्त मैंने किसी को अपनी बहन बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल वही मैसेज आपका फिर से रिपीट हो रहा है। कुछ और विशेष अगर आप लिख करके भेजना चाहते हैं तो आपका फिर से स्वागत है। और ये अगला मैसेज हमें मिला है गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर की ओर से। और आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं को प्रेषित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये मैसेज हमारे पास आया है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिल्लाम गेट कासगंज से, एम इस्लम साफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान की ओर से। श्रोताओं, हम आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपको मैसेज हमें भेजना ही है तो फरमाइश करने के लिए हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, गीत तुम्हारे हैं या आपकी फरमाइश है, वहाँ पर आप मैसेज फरमाइश के ज़रिए अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में अगर आपको कोई हमें मैसेज भेजना ही है तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मैसेज हमें भेजेंगे तो वाकई हमें बहुत अच्छा लगेगा। और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयेश नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आप लिखते हैं, रखिया त्योहार है भाई बहनों का, राखियाँ त्योहार है भाई बहनों का, बहुत तेरा प्यार है लेकिन मैं साइकिल का स्किन हूँ, और 75 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, लेकिन मैं साइकिल द्वारा ही अपने बाजार में कहीं जाता हूँ दोस्तों को मिलने, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन मैं अपनी साइकिल में राखी बांधता हूँ ताकि मेरी माँ सुरक्षा और दुर्घटना ना आए। जी हाँ, कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, आपने साइकिल को ही अपनी साथी समझ लिया है। और बहुत सुंदर मैसेज आपका। और इसी बीच एक और मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट से। लिखने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सीताराम बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आपने लिखा है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का पवित्र प्यार का बंधन है रक्षाबंधन। मुझे ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। बहन भाई के कलाई या हाथ पर जो राखी बांधती है उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है। बहुत सुंदर मोहम्मद वक्कार फरीदी जी आपका मैसेज। और इसी क्रम में है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, आप भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और कुछ मैसेजेस जो हमने श्रोताओं के शुभकामनाओं के भी पढ़ लिए हैं, वो बार बार रिपीट मैसेज हमें वही भेज रहे हैं। अगर कुछ लिख करके भेजना है तो आप हमारे टॉपिक से संबंधित भेजेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे तमाम श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। और जितने सारे मैसेजेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और उस चक्कर में जो लोग कुछ मैसेजेस लिख करके हमें भेज रहे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है आप सभी से, अगर कुछ भेजना है तो लिख करके टॉपिक से रिलेटेड भेजिए। और एक और मैसेज ये हमें जो मिला है, ये मैसेज हमारे पास आया है आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का, शाही मार्केट जिला बिजनौर से। सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लिखते हैं। आगे लिखते हैं, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है भाई बहन के प्यार का पता चलता है। बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए कसम खाता है कि किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मुझे भी राखी बंधन का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा ये त्यौहार है। तो बहुत शुक्रिया आपका आसिफ चौधरी साहब। और बहुत सारे मैसेज हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड बात हो तो अच्छा लगे। और एक और मैसेज जो हमें मिला है, ये मिला है हमें ये मैसेज हमें मिला है तेलंगाना से। मैसेज हमारे पास आया है राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना और

परिवार के सदस्यों का। आप भी रक्षाबंधन के त्यौहार की जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जब तक आप हमें मैसेज और भेजते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में भी आपने सुना फिल्म रक्षाबंधन का यह खूबसूरत सा गीत। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। और अब हम हैं अपने कार्यक्रम में बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर, और कुछ मैसेजेस हमारे सामने हैं, तो आइए देखते हैं मैसेज कहाँ से आए। मैसेज आया तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और परिवार के सदस्यों का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। आप लिखते हैं, होस्ट सर जी, हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहन का ये अटूट बंधन सभी बहन भाइयों का बना रहे। मैं अपनी बेटी से भी राखी बंधवाता हूँ, वो मुझे जान से भी प्यारी है। किसी भी प्यारे से राखी गीत में संदेश जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, संदेश जो है आपका शामिल हमने कर लिया है। और ये अगला मैसेज जो हमें मिला है भोपाल राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा और परिवार के सदस्यों का, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और ये एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज आया है हमारे पास परिमहल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, आरफा आफरीन और परिवार के सदस्यों की ओर से। आप लिखते हैं, भाई बहन का मतलब बहन की का ख्याल रखना है, बहन को कोई परेशानी तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, भाई बहन का जो रिश्ता है वाकई एक दूसरे की परवाह करने के लिए है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, अगर है तो उसका समाधान मिल बांट कर करें। और जो बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई वैसे भी संकल्प लेता है कि बहन, अगर तुझे कभी भी कोई भी समस्या परेशानी पूरे जीवन में आती है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वेल, एक और मैसेज अभी भी हमारे पास आया है, ग्राम प्रतापपुर, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से, पवन कुमार की ओर से। और पवन कुमार जी लिखते हैं, राजवीर जी, आपके नंबर पर अपना दुखड़ा रो रहा हूँ। पहले बहन को 50 रुपये का लिफाफा देकर काम चल जाया करता था, इस बार मेरी छोटी बहन ने मुझे सीधे इंस्टाग्राम का एक लिंक भेजा है और कहा है कि भाई राखी पर मुझे यही स्मार्ट वॉच चाहिए। डिजिटल इंडिया का ये असर सीधा जेब पर पड़ रहा है। पवन भाई, ये तो हर घर की कहानी है, बहनें तो हक से मांगती हैं और भाइयों का दिल भी तो बहनों के लिए धड़कता है। चलिए, इसी प्यारी सी नोकझोंक के बीच अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज अब हमारे पास और नहीं रहे हैं, जो मैसेजेस हमारे पास आए थे हमने सभी को शामिल कर लिया है। और ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत, तो उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा।

तो श्रोताओं, आज दिल ने फिर याद किया कि इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर को अपनी यादों से सजाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से आभार। अब आपका दोस्त राजवीर सिंह आपसे इजाज़त चाहेगा। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों से प्यार बांटते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। और कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिएगा अब अनुमति।

0: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे, अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरल वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकल।

रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हमारी अगली प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा अनुमति। जय हिंद।